मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 जुलाई 2026, प्रातः के 5:57:50 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी दोस्त आशी राठौर। आप सभी को हमारा नमस्कार, शुभ प्रभात।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, जिसे दोहरा अंशदान समझौता DCC कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। कल नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ब्रिटेन CETA और DCC का लागू होना वैश्विक स्तर पर एकीकृत, लचीली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर

0: करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में हॉर्मुज जलडमरू मथे से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष 771 मिलियन डॉलर से अधिक का था। उससे पहले वर्ष ये 679 मिलियन डॉलर था। इसमें 13.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन है। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल है। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। सरकार ने कहा है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयरज़ाबाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वहीं क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंगम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनते हैं समूह स्वर में ये देशगान।

0: लता मंगेशकर के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। कार्यक्रम में आज हम सुनवा रहे हैं सद्वृत्ति विषय पर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा का ये आलेख। वाचक हैं यतिंद्र चतुर्वेदी।
1: यदि सद्वृत्ति शब्द का विवेचन किया जाए तो हम पाते हैं वृत्ति शब्द के पूर्व सद उपसर्ग लगाने से सद्वृत्ति शब्द का सृजन होता है, जिसका मूल अर्थ है अच्छी प्रकृति, अच्छा स्वभाव, अच्छी आदत। सद्वृत्ति मानसिक और भौतिक दोनों रूपों में पाई जाती है। पहले मन में सद्भाव उत्पन्न होना चाहिए। उस भाव का कारण जितना प्रबल होगा, सद्वृत्ति की भावना भी उतनी ही प्रबल होगी। जब तक किसी व्यक्ति के मन में सात्विक भाव उत्पन्न नहीं होंगे, तब तक अच्छे संस्कार और गुणों की परिणति नहीं हो पाएगी। सद्वृत्ति

0: व्यावहारिक रूप समीकरण भी औचित्यपूर्ण ही होना चाहिए। बिना औचित्यपूर्णता के सद्वृत्ति विकसित नहीं हो पाती है। सद्वृत्ति के ये घटक जितने निस्वार्थ और सात्विक होंगे, सद्वृत्ति उतनी ही प्रभावकारी होगी। महात्मा गांधी का स्वभाव सहज था, इसीलिए वे सहज ढंग से अपनी सारी बातों को जनता के सामने रख देते थे। इस निश्चल स्वभाव से न केवल व्यक्ति की महत्ता प्रतिपादित होती है, वरन समाज व देश विदेश में भी इस व्यक्तित्व के कारण सम्मान मिलता है। सद्वृत्ति अपने लिए एवं दूसरों के लिए भी हितकारी होती है। जैसे उसने अपनी सद्वृत्ति के कारण मन की संकीर्णताओं का परिहार कर दिया, तथा दूसरा ये कि उसने अपनी सद्वृत्ति के कारण दूसरों की गलतियों को क्षमा कर दिया। इस प्रकार जब व्यक्ति अनासक्त भाव से फल की आकांक्षा किए बिना सत्कर्मों को करता रहता है, तो उससे सद्वृत्ति का निर्माण होता है। ये उच्च कोटि के स्वभाव का प्रतीक है, जिसमें लोक कल्याण एवं परहित का भाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विद्यमान रहता है। किंतु जब शारीरिक भय या अन्य कारणों से व्यक्ति अपना कर्म करता है, तो वो राजसी वृत्ति बन जाती है। लेकिन जब व्यक्ति अज्ञान, आलस्य एवं मोह आदि कारणों से अपने कर्मों का संचालन करता है, तो उससे तामसी वृत्ति बन जाती है, अर्थात सात्विक से सद्वृत्ति, राजसी स्वभाव से राजसी वृत्ति एवं तामसी स्वभाव से तामसी वृत्ति निर्मित होती है। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसमें सोचने, समझने, विवेक, क्षमा, विनय और कर्तव्य बोध आदि गुण विद्यमान हैं। कुछ विकार भी मनुष्य जीवन से जुड़े हुए हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि। इन विकारों पर अंकुश लगाना मानव का प्रमुख कर्तव्य है। अपने आसपास के परिवेश को कल्याणकारी बनाने के लिए इन पर विजय पाना जरूरी है। विकारों को त्यागने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, आस्था और स्वयं पर विश्वास का बड़ा महत्व है। हम जीवन पर्यंत सुख दुख का आकलन करते रहते हैं, तथा अपने भीतर तृष्णा की इतनी परतें बना लेते हैं कि जीवन की वास्तविकता खो देते हैं। यदि वास्तविक जीवन जीना है, तो सर्वप्रथम स्वार्थ का त्याग करना आवश्यक है। मन आत्मा का महत्वपूर्ण उपकरण है। ये हमारे संकल्प और विकल्प का समुच्चय है। मन चंचल होता है। मन की इसी वृत्ति के कारण इसे मनुष्य का शत्रु कहा गया है। अर्थात सद्वृत्ति के लिए मन पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। मनुष्य की वृत्ति अर्थात स्वभाव के दो रूप देखने को मिलते हैं, एक कोमल अथवा मृद वृत्ति, दूसरी कठोर अथवा पुरुष वृत्ति। कोमल वृत्ति का उदाहरण नारियल हो सकता है, जो ऊपर से कठोर किंतु भीतर से कोमल। इसी प्रकार कठोर वृत्ति का उदाहरण बेर फल हो सकता है, जो ऊपर से कोमल किंतु भीतर से कठोर होता है। कोमल वृत्ति का व्यक्ति लोक हितकारी एवं परोपकारी होता है, किंतु कठोर वृत्ति वाला व्यक्ति अकर्मण्य, आलसी व अहंकारी होता है। अच्छे साहित्य के अध्ययन, महापुरुषों का सत्संग एवं सहृदयता से कठोर वृत्ति का त्याग किया जा सकता है। जैसे सम्राट अशोक की वृत्ति सर्वप्रथम हिंसा एवं युद्ध परक थी, किंतु बाद में महात्मा बुद्ध के शांत स्वभाव एवं प्रभाव के कारण उन्होंने हिंसा का त्याग कर दिया। सद्वृत्ति के निर्वहन में औचित्य बोध का महत्व है। इसके बिना सद्वृत्ति गरिमा अक्षुण नहीं रह सकती, अर्थात दुष्ट व्यक्ति के साथ विनयशीलता औचित्यपूर्ण नहीं है। इस प्रकार मानव के जागरण और उत्कर्ष का आधार है सद्वृत्ति। इसे मानव जीवन का साध्य भी कहा जा सकता है।
1: कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे सद्वृत्ति विषय पर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा का ये आलेख। वाचक थे यतेंद्र चतुर्वेदी। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

विश्व मोहिनी के स्वयंवर में अपने को कपि के रूप में पाकर नारद मुनि के क्रोध की सीमा ना रही। वो उपहास के पात्र बन गए थे। ब्राह्मणों के वेश में वहां उपस्थित शिव के गणों ने उनकी खिल्ली उड़ाई थी। नारद मुनि का आक्रोश श्री हरि के प्रति उमड़ा, जिन्होंने सुंदर रूप का वरदान मांगने पर उन्हें बंदर का समूह और भयंकर शरीर दे दिया। अतः मुनिवर ने उन्हें जी भरकर कोसा, कहा, जो शरीर धारण कर तुमने मुझे ठगा है तुम्हें वही शरीर मिलेगा, ये मेरा शाप है। तुमने मेरा रूप बंदर का सा बना दिया, अतः बंदरों की ही सहायता से तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। प्रभु ने नारद जी का शाप शिरोधार्य किया और अपनी माया लीला वापस ले ली। नारद मुनि अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़कर आक्रोश में शाप देने के लिए क्षमा मांगी। प्रभु ने उन्हें शांति प्राप्त करने के लिए शिवजी का शतनाम जपने का परामर्श दिया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज की जानकारी का विषय है उन्नत विधि से सब्जियों की पौध कैसे तैयार करें। जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, शुरुआत से ही जब से बीज बोनी करते हैं वहाँ से लेकर के फसल की कटाई तक हमें विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। इसके लिए सब्जी बीज नर्सरी में बोनी करते हैं कि मिट्टी में कई तरह की बीमारियां और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, तो शुरुआत में हमें जो है नर्सरी की देखभाल, नर्सरी कैसे तैयार करना है, कौन सी दवाई डालना है जिससे बीमारियाँ नष्ट हो जाएँ, कीड़े नष्ट हो जाएँ और हमारी पौध स्वस्थ हो। बैंगन, टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इन सब्जियों की खासकर जो है पौध तैयार की जाती है सावधानी से। तो इसमें मात्र 10 ग्राम बीज के लिए हमें कम से कम 3.5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी और 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनानी पड़ती है। नमी न जाए जा अधिक थोड़ा ऊंची बनानी पड़ती है। इसको नर्सरी को तैयार करने के बाद उसमें फिर हम कई तरह की दवाइयाँ डालते हैं। जो नर्सरी अपन तैयार कर रहे हैं उसमें स्वच्छ सादा पानी डाल दें उस नर्सरी में, और उसको चारों तरफ से 200 से 300 गेज की एक पॉलीथीन आती है, उस पॉलीथीन से उस क्यारी को ढक देते हैं। ढकने के बाद उस पॉलीथीन के चारों तरफ मिट्टी चढ़ा देते हैं जिससे बाहर की हवा अंदर प्रवेश न करे, और ये 8-10 दिन तक इसको क्यारी को ढक के रखते हैं। अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन होता है उससे जितनी भी फंगस और कीड़े मकोड़े होते हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। ये तो देसी उपचार हो गया, ये अपन कर सकते हैं। जहाँ दवा का उपयोग नहीं करना चाहते किसान भाई तो वो ये कर सकते हैं। रासायनिक उपचार भी होता है इसमें। इसी साइज़ की क्यारी में 40% फॉर्मल्डिहाइड होती है। 250 ml फॉर्मल्डिहाइड को लेकर के 10 लीटर पानी में मिलाते हैं। अब जितनी पानी की आवश्यकता हो उतना घोल तैयार कर लें और उस नर्सरी को फॉर्मल्डिहाइड का जो दवा मिलाए हैं उससे तर कर देते हैं। तर करने के बाद उसको पॉलीथीन से ढक देते हैं और चारों तरफ से मिट्टी चढ़ा देते हैं जिससे बाहर से हवा प्रवेश न कर पाए, एयर टाइट कर देते हैं। 8-10 दिन तक अगर पॉलीथीन उसमें बंद रहेगी क्यारी तो इससे जितने भी हानिकारक कीड़े मकोड़े और जो फंगस रोग होते हैं वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये दूसरा उपचार हुआ दवाई का। तीसरा उपचार और है जिसको अपन पॉलीथीन से भी न ढकें तो भी अपन जो है ऊपर से इसी तरह की क्यारी तैयार करके उसमें जो है बावस्टीन दवा से उपचार कर सकते हैं, थायरम से उपचार कर सकते हैं। और नेमेटोड ज़्यादा है वहाँ जो है फॉरेट 10G दवा आती है, बाजार में मिलती है आसानी से। उस दवा को जो है 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में मिला करके आवश्यकता अनुसार घोल तैयार करके उसको तर करते हैं 3-4 दिन तक इसको इस तरह से रखते हैं, नमी बनाए रखते हैं। और उसके बाद जब बीज बोना होता है तो 2 दिन पहले उसमें थायरम और जो है बावस्टीन दवा का 1 ग्राम दवा बावस्टीन 1 लीटर पानी में मिलाएं और आवश्यकता उसको छिड़काव कर दें उस पर, और 2 दिन बाद उसमें फिर बीज बोनी करते हैं। इस तरह से हमारी नर्सरी का ट्रीटमेंट होता है, नर्सरी उपचार हो गई। जहाँ हमारी नर्सरी उपचार हो गई तो हम निश्चिंत हो गए कि अब हम बीज बोएंगे उसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी। उसके बाद जो है उस क्यारी में आड़ी लाइनें करते हैं। ये ध्यान रहे कि लाइनें 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें और अधिक गहरी लाइनें न करें, 0.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर की लाइनें गहरी करें। और उसमें जो है 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक एक करके बीज डालें। बीज डालने के बाद रेत और बारीक मिट्टी जो छनी हुई रहती है उससे कवर कर दें। कवर करने के बाद और उसको धान की पुआल है या घास की पत्ती है या खजूर के पत्ते हैं उससे उसको क्यारी को ढक दें। तो 8-10 दिन में इस तरह से बीज आपका अंकुरित हो जाएगा। जो नर्सरी जब तैयार करते हैं उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है अपन, गोबर की सड़ी हुई सूखी बारीक खाद और मिट्टी और उतना ही रेत बराबर बराबर मात्रा में मिला करके उस क्यारी को तैयार करते हैं। इस तरह से हमारी ये पौध तैयार हो जाती है।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा। जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। विषय था उन्नत विधि से सब्जियों की पौध कैसे तैयार करें। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।

0: अरे क्या बात है, आज तो तुम बड़ो ही नोनो गीत गा रही हो। और जो तो वही गीत है जाकी हम फरमाइश की चिट्ठी लिखकर भेजा था थे, और हमारी पसंद को लोक गीत हमारी जिज्जी हमें लोक माधुरी में भी सुनवा देती थी।
1: हाँ, खूब ही सही चीज ना तुमने, जो वही लोक गीत है और आज हम जी को जासे गा रहे कि आज हमारा मन बहुत ही उल्लास में है।
0: काय ऐसो का होगा जिज्जी?
1: अपना जो पसंदीदा कार्यक्रम लोक माधुरी को हम सभी सुन सकते हैं हर सोमवार शाम 7:21 से 8 बजे के बीच।
0: जिज्जी जाके लाने अपने को चिट्ठी कैसे भेजनी होगी?
1: अरे चिट्ठी विट्ठी छोड़ो, अब हम हो गए डिजिटल, सो अब हम लिख के भेजेंगे अपनी फरमाइश व्हाट्सएप पे।
0: तो जीजी जाको व्हाट्सएप नंबर का है?
1: डायरी तनक खोलो और जल्दी से लिख लो 9425702768। तो याद भाओ कि नहीं, तनक बताओ तो जल्दी से
0: 9425702768।
1: तो आप अपनी पसंद को

0: लोकगीत के बोल और कलाकार को नाम हमें जा नंबर पर व्हाट्सएप करो। को आपकी पसंद को लोकगीत लोकमाधुरी कार्यक्रम में जरूर ही सुनवाएं।
1: तो सुनना न भूलें हर सोमवार शाम को 7:21 से 8 बजे के बीच लोकमाधुरी।
2: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
3: याद रखो हमारी बात,
4: पेड़ पौधे धरती की सौगात,
3: जंगल है धरती का गहना,
4: सदा इसकी रक्षा करना,
3: होगी जो धरती पर हरियाली,
4: चहुं ओर फैलेगी खुशहाली।
5: सूचना परक कार्यक्रम दर्पण अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे केंद्र का प्रसारण आप अपने मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुनते हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:55 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार लिए होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। भारत ब्रिटेन देशयोः मध्ये व्यापक आर्थिक व्यापार सन्धिः अद्य प्रवर्तते। तेन सह सामाजिक सुरक्षा सन्धिरपि या DCC इति द्विगुण अंशदान सन्धिः नाम्ना प्रसिद्धः क्रियान्वितो जातः। अनेन ब्रिटेन देशे कार्यरतेभ्यः भारतीय व्यावसायिकेभ्यः कार्यावसराः प्रतिस्पर्धा सामर्थ्यं च वर्धिष्यन्ते। एषः सन्धिः तावत् ब्रिटेन देशस्य विपण्यां 99% यावत् शुल्कश्रेणीषु भारतीय वस्तूनां शून्यसीमाशुल्कं सुनिश्चीकरोति, येन भारतीय निर्यातस्य संवर्धनं भविष्यति। नवदिल्ल्यां ह्यः वार्ताहरान् सम्बोधयन् वाणिज्य सचिवः राजेश अग्रवालः इतं सन्धिं भारतस्य व्यापार विकासे महत्वपूर्णं सोपानम् इति अवर्णयत्। प्रशासनेन निगदितं यत् तैः पश्चिमेशिया क्षेत्रस्य घटनाक्रमस्य सूक्ष्मावलोकनं विधीयते। भारतेन होमोर् जलसन्धि मध्यस्थात् सुरक्षित अबाधित नौवहनस्य अथ वाणिज्य प्रवाहस्य आह्वानं पुनः विहितम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः प्रावोचत् यद् वैश्विकस्तरे जनानाम् आर्थिक ऊर्जा सुरक्षां सुनिश्चेतुम् एतत् परमावश्यकं वर्तते। मन्त्रालयेन ईरान् देशस्य उपाभियान प्रमुखं समाहूय एकं वक्तव्यं प्रकाशितम्। श्रीजयसवालः प्रोक्तवान् यत् प्रशासनेन तेहरान् प्रशासनाय स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटय्य तत्र दुरापन्नानां घटनाक्रमाणां तीव्रा निन्दा विहिता। अस्मिन् आक्रमणे एकस्य भारतीयस्य अमूल्यं जीवनं विनष्टं, बहवः भारतीय नागरिकाः च व्रणिताः सञ्जाताः, येषु केचन गंभीराः सन्ति। प्रवक्ता अवोचत् यत् भारतेन ईरानं विरुध्य स्वकीयः दृढविरोधः प्रकटितः, सहैव एतादृशानाम् आक्रमणानां सद्यः रोधनाय बलं च प्रदत्तम्। अनेनैव सः तेनोदीरितं यत् क्लेशशमनाय उभयपक्षाभ्यां वार्तामञ्चे समागत्य संवादराजनययोः मार्गम् अनुसरणीयम्, येन पश्चिमेशियाक्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च सम्भवेत्। वित्तीयापराधनिरोधकेन प्रवर्तननिदेशालयेन महादेव आभासीयद्युततन्त्रांशसम्बद्धे कथितधनशोधनप्रकरणे एकस्याः प्रशासनेतरतन्त्रांश वित्तीय प्रौद्योगिकी संस्थायाः अध्यक्षः निगृहीतः। केन्द्रीयाभिकरणेन अचिरमेव तस्य अध्यक्षस्य तस्य कुटुम्बीनाम् अथ तेन स्वयं सञ्चालितानां नियन्त्रितानां च विभिन्नानां व्यावसायिकप्रतिष्ठानां 44,900,000,000,000 रूप्यकाणां स्थावरजङ्गमसम्पत्तिः विधिवत् कुण्ठिता। असमराज्ये विनाशकारिणः जलाप्लावनस्य स्थितिः अद्यापि नितरां सङ्कटमयी वर्तते, येन राज्यस्य 600 अपि जनपदेषु 37,000+ जनाः अत्यन्तं दुष्प्रभाविताः। शोकाकुले अस्मिन् सङ्कटावधौ शोणितपुरजनपदस्य चारिद्वार मण्डले जले निमज्जनात् एकः जनः पञ्चत्वं गतः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य बिहार ओडिशा राज्ययोः अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रकटिता। ऋतुवैज्ञानिकैः इदमपि संसूचितं यत् ईदृशीव सङ्कटस्थितिः उत्तरपूर्वभारते छत्तीसगढ़ झारखण्ड पश्चिमबङ्गाल राज्येषु च श्वः यावत् अश्रान्तं प्रवर्तयिष्यते। पुरुषाणाम् एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ त्रिस्पर्धानां श्रृङ्खलायाः प्रथमे द्वन्द्वे बर्मिंघम नगरस्य एस्बेस्टन क्रीडाङ्गणे भारतेन इंग्लैण्डदलं 6 स्तोभैः पराजितम्। अक्षरपटेलः स्वस्य उत्तमप्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठक्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, इसे दोहरा अंशदान समझौता भी कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धा को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शुल्क लाइनों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
2: ये समझौता वैश्विक स्तर पर एकीकृत, सुगम और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक

0: कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर भी श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्पेन यात्रा के बाद कल बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पहुंचे। यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। श्री गोयल ने बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और रोजगार, आर्थिक तथा कृषि मंत्री डेविड क्लारिन वाल से मुलाकात कर भारत बेल्जियम के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, तार्किक और कार्यबल गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट क्षमता वाले 24 परमाणु रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और इकाइयां निर्माणाधीन हैं। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल हैं। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारी पानी का रिएक्टरों को संचालन करने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। स्पेन के लिए मिकेल ओयार जाबल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर में यानी 7:20 पर हम आपको सुनवाएंगे कहानी चोरी। कहानीकार होंगी तरुण भटनागर। इससे पहले आप सुनेंगे 7:10 पर भोपाल से प्रादेशिक समाचार। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं 7:30 से 8 के बीच। फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम आप सुनते हैं व्हाट्सएप फरमाइश 10:05 से 11 के बीच। इस कार्यक्रम में हम श्रोताओं को उनके पसंद के फिल्मी गीत सुनवाते हैं।

8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, ये दोनों ही समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाते हैं। सुबह 8:30 आप सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत का एक और कार्यक्रम आप सुनिए दिन में 1:45 पर। सुनिए इस घंटे की खास खबरें। इसे भोपाल से अनुप्रसारित किया जाता है। इस घंटे की खास खबरें आप सुबह 10:58 पर, 11:58 पर, दिन में 12:58 पर और दिन में 2:58 पर सुन सकेंगे। सुबह 9 बजे इस घंटे की खास खबरों के ठीक बाद आप सुनेंगे सूचना और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। आज गुड मॉर्निंग ग्वालियर में सुनिए विश्व युवा दिवस कौशल दिवस पर भेंट वार्ता।

दिन में 1 बजे आप सुन सकते हैं महिला कार्यक्रम। इसमें चर्चा के विषय होंगे युवाओं को नवाचार की प्रेरणा, अपने अधिकारों को जाने और कार्यस्थल पर योग की तकनीक। साथ ही सुनेंगे कहानी बोनसाई की बगावत। शाम 5 बजे युवाणी कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे विश्व युवा कौशल दिवस और डिजिटल इंडिया। साथ ही 6 बजे सुनिए NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

7:20 पर हमारी केंद्र से चौपाल कार्यक्रम सुना जा सकता है। इसमें चर्चा के विषय होंगे विश्व युवा कौशल दिवस और जैविक खेती टिकाऊ खेती। साथ ही साथ भेंटवार्ता में सुनिए जैव उर्वरकों की उपयोगिता, कुलदीप सिंह से सोहन सिंह की बातचीत। रात 8 बजे से सभा की समाप्ति तक के सारे कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की करेगा मेजबानी। बलराम कृषि महोत्सव 2026 का आज इंदौर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। इंदौर से अबूधाबी के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा का आगाज आज से। और भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में कल 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आयुष संस्थान में 3 दिवसीय सेमिनार सौश्रुतम का उद्घाटन करेंगी। ये सेमिनार आचार्य सुश्रुत की जयंती के मौके पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के एकीकरण पर देश विदेश के विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है, जिससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर 0% शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि
1: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।

0: रिवर्स फार्मिंग एजेंडा।
1: प्रदेश में बलराम कृषि महोत्सव की शुरुआत आज से होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस महोत्सव का शुभारंभ इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी परिसर में करेंगे। वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन प्रदेश भर में किया जाएगा। इंदौर के अलावा 17 जुलाई को धार, 19 जुलाई को झाबुआ, 21 जुलाई को अलीराजपुर, 23 जुलाई को बड़वानी, 25 जुलाई को खरगोन, 27 जुलाई को बुरहानपुर और 30 जुलाई को खंडवा में बलराव महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी, उन्नत बीजों, नवीन कृषि यंत्रों, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, फसल विविधीकरण, जल संरक्षण तथा शासन की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। महोत्सव में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले उत्कृष्ट किसानों का सम्मान भी किया जाएगा। प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जनकल्याण के लिए सरकार ने 10,800 करोड़ रुपये के अलग अलग विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नगरीय अधोसंरचना विकास मद में 8,445 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने किसानों के हित में मूंग उपार्जन के लिए 1,587 करोड़ रुपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति पर मोहर लगाई है। मंत्रिपरिषद ने कुंडलिया वृहद सिंचाई परियोजना 31 मार्च 2031 तक संचालन के लिए 245 करोड़ 45 लाख रुपये की मंजूरी दी है। इसे राजगढ़ और आगरमालवा जिले के 1,39,600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश भर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दूसरे दिन आज आगरमालवा और खंडवा सहित प्रदेश के कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल में इस अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।
3: हमारे लिए अब एक प्रकार का नशा नहीं रह गया, कितने प्रकार की चुनौतियां आ गई, लेकिन आज हम जब सामाजिक रूप से इस बात को महसूस करते हुए सरकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये बात सही है कि चुनौतियां तो अभी भी है, लेकिन फिर भी सभी प्रकार के नशे के लिए हमारी सरकार किसी भी तरह से कोई भी कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं रहने वाली है।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति 2025 से वित्त पोषित प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा इंदौर से अबुधाबी का आज शुभारंभ करेंगे। ये उड़ान प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को संयुक्त अरब अमीरात UAE की राजधानी अबुधाबी से सीधे जोड़ेगी। टाटा समूह की विमानन इकाई एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित यह सेवा सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी। इंदौर से अबुधाबी हवाई सेवा प्रारंभ होने से मालवा निमाड़ क्षेत्र की बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। यह द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये वार्ता पिछले सप्ताह वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान दोनों पक्षों ने सभी पहलुओं पर ठोस प्रगति की और कई मुख्य मुद्दों पर व्यापक सहमति बनी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8,000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन हैं। इनमें रिएक्टर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, बॉयलिंग वाटर रिएक्टर और लाइट वाटर रिएक्टर शामिल हैं। देश मुख्य रूप से प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में तेज बारिश का दौर थमने के बाद भोपाल समेत कुछ शहरों में दिन का तापमान बढ़ गया है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार प्रदेश में पिछले 6 दिन से भारी या अति भारी बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 241.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य बारिश से 260 मिलीमीटर कम है। वहीं पश्चिमी हिस्से यानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर तथा चंबल में औसत से 6% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र ने आज अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, रीवा, मऊगंज और सतना समेत प्रदेश के 20 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। अब रुक करते हैं क्रिकेट की खबर का। क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए, जिसके जवाब में

भारत ने 45 ओवर और दो गेंदों में चार विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। तीन मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल कार्डिफ में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिला कोषालय में 16 और 17 जुलाई को तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए IFM IS केयर्स कैंप लगाया जाएगा। अशोकनगर में शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों को सिविल जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। ओमान में होने वाली यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2026 के लिए मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी के चार खिलाड़ियों आयुष, करण, महक और नौशीन का चयन भारतीय टीम में किया गया है। डिंडौरी में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर से बाइक रैली निकाली गई और इंदौर में बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जिलों में 14 जुलाई से 31 अगस्त तक दस्तक सेड स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ई करेगा मेजबानी। बलराम कृषि महोत्सव 2026 का आज इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। इंदौर से अबूधाबी के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा का आगाज आज से। और भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कहानी चोरी। कहानीकार हैं तरुण भटनागर।
2: गांव में रोड बन रही थी। बस्तर के उस गांव में एक पुरानी कच्ची पक्की कुठरिया थी जिसे रोड बनाते समय ठीक ठाक किया गया था। उस कुठरिया में ट्रकों में भरकर आया सीमेंट रखा गया था। जब रोड बननी चालू हुई तो रोज बैलगाड़ी में लादकर सीमेंट के बोरे रोड की तरफ ले जाए जाते। कुछ पुराने धुराने पुल ठीक किए जा रहे थे, सीमेंट रोज भेजा जाता था। ठेकेदार का मुलाजिम कभी कभी आता, कुठरिया के भीतर कमर पर हाथ रख खड़ा होता। वह एक ठिगना काला आदमी था, लस्त और मोटा, आलसी और ठस। चलते समय वह बहुत छोटे कदम लेता था, थोड़ी थोड़ी देर में रुकता मानो थक गया हो। हाथ तो उसके हिलते ही नहीं थे। वह बहुत कम बोलता, सारा काम आँखों से करता, आँखों से ही गोदाम के हालात जांच लेता, देखकर ही सीमेंट की बोरियां गिन लेता। वह देखकर जानता था, उसकी चेतना नज़रों की चेतना थी। मुलाजिम को बस्तर के जंगल का पता नहीं था, बुज़ुर्ग आदमी को जंगल के बाहर की दुनिया का ठीक ठीक पता न था। बुज़ुर्ग आदमी मुलाजिम के साथ काम करता था। बुज़ुर्ग बस्तर के जंगल का बुज़ुर्ग था। वह कृशकाय था, वह सचेत रहता, उसके चेहरे की झुर्रियाँ हमेशा तनी रहती। उसका डील लौल थकान भरा था, मानो अभी अभी कोई कठिन काम किया हो। उसके सफ़ेद किचड़ी बाल कंधे तक थे, गर्दन और माथे की झुर्रियों में पसीने की सफ़ेद लकीरें दिखती। उसके पास से ताड़ी की बू आती, ऐसी ज़बरदस्त बू कि मुलाजिम उस बू से ही उसके होने को तस्दीक कर लेता था। बुज़ुर्ग ने मुलाजिम को बताया कि कुठरिया में रखे बोरे गिनना समय की बर्बादी है। वह बताता कि इस जंगल में कभी चोरी नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। मुलाजिम को भी बुज़ुर्ग की बात सही लगी। बस्तर के इस इलाके में उसने कभी चोरी की खबर नहीं सुनी। उसने कुठरिया की बोरियाँ गिनना बंद कर दिया, फिर उसने कुठरिया आना भी बंद कर दिया। कुठरिया पूरी तरह से बुज़ुर्ग के जिम्मे थी। गांव में जो एकमात्र दुकान थी, वह जंगल के लोगों को मुफ्त में कपड़े बांटती थी। वह दुकान हर चीज़ की दुकान थी, नून तेल लकड़ी से लेकर कपड़े तक। दुकान के बोर्ड में छोटे छोटे अक्षरों में बहुत कुछ लिखा था। वह एक अनमना बेतुका सा बोर्ड था, क्योंकि उसे पढ़ने वाला वहाँ कोई नहीं था। वह बोर्ड उन लोगों के बीच था जिनकी भाषा में वर्णाक्षर नहीं थे। वर्णाक्षर ही क्या, वहाँ तो लिखना भी नहीं था। आप बस्तर के पूरे जंगल घूम लें, वहाँ आपको लिखे हुए चित्र मिलेंगे, लिखे हुए रंग मिलेंगे, पर वहाँ लिखे हुए शब्द नहीं मिल सकते। तो वह एक अलिखित भाषा की दुनिया थी। अलिखित भाषा की दुनिया में दुकान का वह बोर्ड था जिस पर कुछ लिखा था। जंगल के लोग बोर्ड को देखते, ताकते, टुकुरते। औरतें मुँह पर हाथ रख गौर से बोर्ड को घूरती, कुछ अधखुले मुँह वाले चेहरे उस बोर्ड को ताकते अवसन्न। उन्हें बोर्ड और दुकान में कोई सूत्र समझना आता था। बोर्ड खराब होता रहा, शब्द उखड़ते रहे, सीमेंट और जंगल में हिंदी के शब्द खत्म होते गए, दुकान चलती रही, शब्द खत्म हो गए और पूरे जंगल को पता चल गया कि दुकान में क्या क्या मिलता है। उन दिनों इसी दुकान में एक मुलाजिम अक्सर आता था, हफ्ते में 3 से 4 बार। वह मुलाजिम किराने वाले को उन कपड़ों की कीमत अदा करता था जो वह जंगल के लोगों को दे देता था। सरकार का हुक्म था कि जंगल के लोगों को कपड़े बांटे जाएं, सरकार पैसे देगी, जंगल के लोगों को कपड़ा मुफ्त में दिया जाए। कहते हैं एक दिन उसने किराने वाले को हड़का कर कहा था कि अगर एक भी फटेहाल आदमी दिखा तो वह उसे जेल में डाल देगा। किराने वाला डर गया। जंगल में इतने कपड़े दिए जाने के बाद भी फटेहाल शरीर कभी कभी दिख जाते थे। जब भी कोई फटेहाल आदमी दिखता तो वह उसे अपनी दुकान ले आता और 2-4 जोड़ी कपड़े थमा देता। इस तरह जंगल के आदमी को अब ठंड लगने लगी थी। जैसे जैसे कपड़े आते गए उसको लगने वाली ठंड बढ़ती गई। वही आकाश, वही जंगल, वही सूरज, वही चांद, जाने कहाँ से तो यह ठंड आ रही थी। जंगल का आदमी अब कपड़े बिछाता, कपड़े ओढ़ता, कपड़े पहनता, तब जाकर ठंड खत्म होती। कपड़े ठंड बढ़ा रहे थे, कपड़ों के कारण जंगल की ठंड विकट होती जा रही थी। किराना वाला तेलंगाना से आया था। एक दिन किराने वाले के तेलंगाना के गाँव में बड़ी भयानक दुर्घटना घटी। वह अपनी दुकान बंद कर अपने गाँव चला गया। कहते हैं उस दुर्घटना में उसके परिवार के लोग मारे गए। तो कोई और कुछ बताता, किराने वाला फिर नहीं लौटा। किराने की दुकान पुरानी होकर जार जार होने लगी। जिन बैलगाड़ियों से लदकर सीमेंट जाता था उसमें जंगल के एक किशोर को काम पर लगाया गया था। जंगल के किशोर का काम था गोदाम के बोरे उठाकर बैलगाड़ी में लादना। वह अपने पास गिट्टियाँ रखता था, छोटी चिकनी गिट्टियाँ। जितनी बोरी बैलगाड़ी में लदती उतनी चिकनी गिट्टियाँ वह अपने दूसरे हाथ में रख लेता। पूरे रास्ते बैलगाड़ी के बोरों के ऊपर वह बैठा रहता, मुट्ठियों में चिकनी गिट्टी भींचे रहता। जब बैलगाड़ी मुकाम पर पहुंचती वह उन गिट्टियों को वहां के छोटे मुलाजिम को दे देता। छोटा मुलाजिम उन गिट्टियों को गिनता और बोरों को गिनता और फिर कागजों में लिख लेता, जितनी गिट्टी उतने बोरे, मिलान हमेशा सही रहता। सारे हिसाब किशोर की मुट्ठी में भींची गिट्टी से तय होते। छोटा मुलाजिम अक्सर किशोर को चेताता, किशोर सतर्क रहता। वह ठीक से मिलान कर चिकनी गिट्टियों को हाथ में भींच लेता। पसीने से भीगी मुट्ठी में वे इस तरह भींची रहती कि कभी ना गिरें। एक रात किशोर गांव में बैठा था। रात थी, आग जल रही थी। गांव का एक बुजुर्ग उसके सामने जमीन पर बैठा कांप रहा था। बुजुर्ग का नाम सुमारू था। बरसों पहले किराने वाले ने सुमारू को जो चादर दी थी वह अब तार तार हो गई थी। गांव में अब कपड़ा नहीं मिलता था, मिले भी कैसे, दुकान बंद हुए तो अरसा बीत गया था। किशोर ने सुमारू को एक युक्ति सुझाई। सुमारू को किशोर की बात ठीक लगी। अगले दिन देर रात किशोर और सोमारू सीमेंट के गोदाम की तरफ गए। वह अंधेरी रात थी। पहले सोमारू ने कहा था कि दिन में ही चलेंगे, पर किशोर ने कहा कि यह काम दिन में नहीं किया जा सकता है। उसे पता था कि यह काम रात को ही किया जाता है, देर रात को। गोदाम के पीछे एक खिड़की थी जिसे ठोक पीट कर ठीक किया गया था। चारों ओर अंधेरा था, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। किशोर ने कुल्हाड़ी के एक ही वार से खिड़की तोड़ दी। खिड़की औंधे मुँह जमीन पर गिर गई। किशोर और सोमारू गोदाम के अंदर घुस गए। गोदाम के अंदर सैकड़ों सीमेंट के बोरे थे, एक के ऊपर एक रखे हुए। किशोर सीमेंट के बोरों को खींच कर लाता, फिर उसकी सिलाई कुल्हाड़ी की धार से काटता जाता। सोमारू सीमेंट के बोरे को उलटकर उसमें से सीमेंट झाड़कर बोरों को अलग से एक तरफ इकट्ठा करता जाता। फिर जब 5 बोरे हो गए तो उसमें से 2 बोरा किशोर और 3 बोरा सोमारू ले गए। सोमारू और किशोर उन बोरों को पहनते, ओढ़ते, उन पर सोते। इस तरह ठंड गायब हो गई। अगले दिन सुबह गोदाम पर हड़कंप मच गया। गोदाम के आसपास 5-6 लोग जमा थे। उस गांव में यह पहली चोरी थी, वह भी सरकारी गोदाम में। मुलाजिम जमीन पर मुंह के बल पड़ी खिड़की को देखता और गोदाम के बुजुर्ग को डांटता। अगले दिन शाम होते होते पुलिस का एक आदमी भी वहां आ गया। वह बहुत दूर के किसी पुलिस थाने से आया था। पुलिस का आदमी कभी गोदाम के भीतर जाता तो कभी बाहर। मुलाजिम उस गोदाम के दरवाजे के पास रखे एकमात्र स्टूल पर सिर पकड़े बैठा था। उसने बुजुर्ग को इतना डांटा कि बुजुर्ग रुआंसा हो गया। लोग कह रहे थे कि यह अब तक की पहली चोरी है। बस्तर के जंगल के पिछले सालों में घटा यह पहला वाकया है। हेड साहब, चोर हर हाल में पकड़ा जाना चाहिए, मुलाजिम बार बार पुलिस वाले को कह रहा था। पुलिस वाला आदमी उलझा हुआ था, मानो कोई मुसीबत आन पड़ी हो। मुलाजिम पुलिस वाले पर झुंझला गया। तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है क्या? मैं यह देख रहा था कि क्या इसे चोरी कह सकते हैं, मतलब। मुलाजिम की भ्रुकुटियाँ तन गईं। पुलिस वाला मुलाजिम को यह समझाने लगा कि देखिए, वे सीमेंट तो यहीं छोड़ गए, वे सीमेंट तो नहीं ले गए ना, यह सीमेंट का ही तो गोदाम है, बोरों का थोड़ी है। सीमेंट के गोदाम से अगर कोई सीमेंट ले जाता तो मामला बनता, पर वे तो बोरे ले गए। सीमेंट के गोदाम से अगर कोई बोरा ले जाए तो मामला थोड़ी बनेगा। वह थोड़ा चकित भी था। ऐसी चोरी पहली बार देखी कि चोर बोरा ले जाए और सीमेंट छोड़ जाए। पुलिस वाला अपने साथ कानून की किताब लाया था। किताब बेहद मोटी थी। किताब में बस्तर के जंगल के कायदे नहीं लिखे थे। दुनिया की किसी भी किताब में जंगल के कायदे नहीं हैं। जंगल की सोच, जंगल की नैतिकता, उसके नियम, जिनकी किसी किताब को दरकार नहीं। ठंड ना होती तो क्या वे बोरे ले जाते? नहीं ना, जाने दीजिए साहब, इतनी भयानक ठंड है। ठंड से खुद को बचाने 5 बोरे ही तो ले गए ना, पर चोरी तो चोरी है। जो सीमेंट छोड़ जाए वो काहे का चोर? आप तो शिकायत दर्ज कीजिए, अपना काम कीजिए, यह चोरी नहीं है। आप समझिए तो, इतनी ठंड में सिर्फ बोरे की शिकायत, आप खुद सोचिए, बोरे की शिकायत लिखना कितना तो गलत है। मुलाजिम ने जंगल की तरफ देखा। कच्ची रास्ते के पार जंगल अनमना सा था। एक पगडंडी उसमें जाकर कहीं खोती थी। सागौन की धूसर घनी फुनगियों पर आखिरी शाम की सिंदूरी आभा ठिटकी थी। वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। बहुत ध्यान से सुनने पर कहीं बहुत भीतर से किसी जंगली पंछी के किर्राने की आवाज़ आ रही थी। उसने उसके आसपास जमा उन चार पाँच अर्धनग्न देहों को देखा। वे भावहीन थे। उन्हें उन बातों का ठीक ठीक पता नहीं था जो उनके सामने घटित हो रही थी। पूरी बात के दौरान मुलाजिम बीच बीच में उनकी तरफ देखता, पर जैसे वे पत्थर के बुत हों, प्रतिक्रिया विहीन। जंगल को चोरी का ठीक ठीक पता चलने में अभी लंबा समय बीत जाना था। जाने दीजिए ना साहब, पुलिस वाले ने आहिस्ते से कहा। ठीक है, मुलाजिम के चेहरे पर एक हताशा, एक हार उतर आई। बुजुर्ग आदमी मुलाजिम के पैर पकड़े गिड़गिड़ा रहा था। हुजूर, अब तो हेड साहब ने भी मान लिया है कि ये चोरी नहीं है। मुझे नौकरी से मत निकालिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। किशोर करीब दो घंटे से यह सब देख रहा था। वह काफ़ी पहले ही बैलगाड़ी के साथ आ गया था। वह सिर नीचे किए चिकने पत्थरों को एक हाथ से दूसरे हाथ में उछाल रहा था। वे पत्थर जमीन पर नहीं गिरे। उनका जोड़ घटाना कभी कम ज़्यादा नहीं हुआ। बस पांच बोरे, सिर्फ पांच, और कुछ भी तो नहीं। वे पांच बोरे कभी भी जंगल के बाहर नहीं आए। उस रात चोरी के बाद किशोर और सोमारू जंगल जा रहे थे। किशोर ने सोमारू को बताया कि कोठरिया में वे जो छोड़ आए हैं उसे सीमेंट कहते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। सोमारू ने सिर्फ इतना ही कहा कि कितनी तो फालतू की चीज़ है सीमेंट। बाहर की दुनिया के लोग जाने क्या क्या फालतू बटोर कर रखते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कहानी चोरी। कहानीकार थे थरुण भटनागर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म है अभिमान, गीत मजरू का और संगीत एसपी बर्मन का। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
2: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
3: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: ये आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण है और प्रसारित हो रहा है फिल्म संगीत। लता मंगेशकर को आइए सुनवाते हैं फिल्म अभिनेत्री में। गीत लिखा है मजरूर और इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं हमराज फिल्म का ये गीत। बोल हैं साहिर के और संगीत रवि का। इस गीत को अपने सुरों से सजाया है महेंद्र कपूर ने।

ये आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण है और प्रसारित हो रहा है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आइए सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर को फिल्म सरस्वती चंद में। गीत इंदिवर का है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीत आनंद बख्शी का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना। सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सुबह के 8 बज रहे हैं, समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़, ये दोनों ही बुलेटिन हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: एक बूंद को हमें बचाना है तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज, और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
4: This is also one of the most ambitious.
5: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
4: SME, innovation, labor, environment and gender.
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
6: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान

0: पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
1: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही VVG रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप अंदाश गुप्ता, आकाशवाणी कलकत्ता।
1: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मॉलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रुबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिका उसके सभी बिजली संयंत्रों और

पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत

0: व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
1: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
2: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। 3 भव्य रथ, नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 से हरा दिया है। बर्मिंगहम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह है। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यह

0: टेस्ट जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा की अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। हॉर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगा हर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है सुगम संगीत का। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे उत्कर्ष सेंगर के भजन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला भजन।

यह आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण है और प्रसारित हो रहा है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं उत्कर्ष सेंगर के भजन। आइए सुनते हैं ये भजन।

0: रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोसते ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं उत्कर्ष सेंगर के भजन।

आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं उत्कर्ष सेंगर के भजन।

आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में अब सुनते हैं ये अंतिम भजन।

इसी के साथ ही आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, आप सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।

भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आयुष संस्थान में 3 दिवसीय सेमिनार सोश्रुतम का उद्घाटन करेंगी। इसमें आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के एकीकरण पर देश विदेश

के विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी परिसर में बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। कृषक कल्याण वर्ष के तहत विभिन्न जिलों में आयोजित इस महोत्सव के दौरान किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी, प्राकृतिक एवं जैविक खेती सहित शासन की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा इंदौर से अबुधाबी का शुभारंभ भी करेंगे। ये सेवा सप्ताह में चार दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में कल प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जनकल्याण के लिए सरकार ने 10,800 करोड़ रुपये के अलग अलग विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है। प्रदेश भर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। और क्रिकेट में भारत ने इंग्लैंड को कल बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल कार्डिफ में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 9 बज रहे हैं। अब समय है सूचना समाचार और नगमों के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर का।

सूचना समाचार और नगमों के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में मैं आशी राठौर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। श्रोताओं, आज है 15 जुलाई और आज के दिन को इतिहास में हम किस रूप से जानते हैं, समझते हैं, इस पर आज के कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा करेंगे। सादा जीवन, उच्च विचार और जनसेवा का प्रतीक थे के कामराज। आज यानी 15 जुलाई को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, दूरदर्शी राजनेता और लोकप्रिय जन नेता के कामराज की जयंती है। उनका पूरा नाम कुमार स्वामी कामराज था। उनका जन्म 15 जुलाई 1903 को तमिलनाडु के विरुधुनगर में हुआ था। उन्हें उनकी सादगी, ईमानदारी, त्याग और जन कल्याणकारी कार्यों के लिए आज भी पूरे देश में सम्मान के साथ याद किया जाता है। के कामराज ने कम उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने देश और समाज के विकास को अपना लक्ष्य बनाया। वे तमिलनाडु तत्कालीन मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री बने और अपने कार्यकाल में शिक्षा, सिंचाई, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में अनेक ऐतिहासिक कार्य किए। के कामराज का सबसे बड़ा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में ही माना जाता है। उन्होंने गरीब और वंचित बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की। उनके प्रयासों से हजारों नए विद्यालय खुले और विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा, पुस्तकें और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि शिक्षा ही समाज और राष्ट्र के विकास की सबसे बड़ी शक्ति है। कामराज भारतीय राजनीति में अपनी सादगी और निष्कलंक छवि के लिए प्रसिद्ध थे। वे साधारण वेशभूषा पहनते थे और जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझते थे। उन्होंने कभी व्यक्तिगत स्वार्थ को महत्व नहीं दिया, बल्कि हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। उनकी दूरदर्शिता और संगठन क्षमता के कारण उन्होंने भारतीय राजनीति का किंग मेकर भी कहा जाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता पद और प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि ईमानदारी, परिश्रम, सेवा और समर्पण से मिलती है। आज के युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज और राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय योगदान देना चाहिए। के कामराज का जीवन सादगी, ईमानदारी, त्याग और जनसेवा का अनुपम उदाहरण है। उनकी जयंती केवल एक महान नेता को याद करने का अवसर नहीं, बल्कि अनेक आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का भी संकल्प है। आइए हम सभी उनके बताए मार्ग पर चलकर एक शिक्षित, सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। श्रोताओं, आज 15 जुलाई पर विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में भी हम इस दिन को जानते हैं। युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति और भविष्य की आधारशिला होते हैं। यदि युवाओं को सही दिशा, उचित शिक्षा और आवश्यक कौशल प्राप्त हो जाएं, तो वे न केवल अपना जीवन संवार सकते हैं, बल्कि देश की अधिक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, ताकि युवाओं को आत्मनिर्भर, सक्षम और रोजगार को के योग्य बनाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2014 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी और पहली बार इसे वर्ष 2015 में मनाया गया। वर्तमान समय में बदलती तकनीक, डिजिटल युग और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच युवाओं के लिए केवल शैक्षणिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक कौशल भी अत्यंत आवश्यक हो गया है। श्रोताओं, इस दिवस को मनाने के पीछे कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जैसे युवाओं में व्यावसायिक और तकनीकी कौशल का विकास करना, शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी को कम करना, युवाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना, स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना, साथ ही साथ बदलते समय के अनुसार नई तकनीकों को सीखने के लिए प्रेरित करना।
शुदा, जैसा कि हम जानते हैं आज के इस डिजिटल दौर में केवल डिग्री प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है, उद्योगों और संस्थानों को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जिनमें तकनीकी ज्ञान, डिजिटल दक्षता, संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता, समस्या समाधान क्षमता, नवाचार और टीम वर्क जैसी योग्यताएं हों। कौशल विकास युवाओं के आत्मविश्वास को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने में लिए भी प्रेरित करता है। भारत विश्व का सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए यहाँ कौशल विकास का महत्व और भी अधिक है। सरकार द्वारा अनेक योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को अनेकों क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे वे आधुनिक तकनीक और अनुरूप स्वयं को विकसित कर सकें। इससे न केवल बेरोजगारी कम करने में सहायता मिलती है, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति को भी नई गति मिलती है। इस डिजिटल युग में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में भी जानते हैं, और रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, डाटा विश्लेषण, कई सारे आधुनिक क्षेत्रों में निरंतर नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे समय में युवाओं को समय के साथ नई नई तकनीकों को सीखना और स्वयं को लगातार अपडेट रखना बेहद आवश्यक है। जो युवा सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखते हैं, वही भविष्य की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर पाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, शिक्षा और कौशल एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान देती है, जबकि कौशल उस ज्ञान को व्यवहार में बदलने की क्षमता प्रदान करता है। यदि दोनों का संतुलन हो तो युवा अधिक सफल, सक्षम और उपयोगी बन सकते हैं। इसलिए विद्यालयों, महाविद्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना बेहद आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि इस मार्ग में चुनौतियाँ नहीं हैं, इस मार्ग में भी कई सारी चुनौतियों का सामना हम करते हैं, जैसे गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों का अभाव, तकनीकी शिक्षा की सीमित पहुंच, रोजगार और प्रशिक्षण के बीच तालमेल की कमी, साथ ही साथ लोगों में भी जागरूकता का अभाव। इन चुनौतियों को दूर करने के

0: जैसे जैसे हम इस डिजिटल युग में आगे बढ़ रहे हैं, भारत में भी कौशल विकास के कई क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि, निर्माण कार्य, पर्यटन, आतिथ्य, हस्तशिल्प और लघु उद्योग। देश का विकास हम सभी जानते हैं कि युवाओं के हाथों में है। यदि युवा अपने ज्ञान के साथ कौशल का भी विकास करे, अनुशासन और परिश्रम को अपनाए, समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझे, तो वो देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। कौशल युक्त युवा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में बातें अभी और भी हैं, उससे पहले लेते हैं ये छोटा सा अल्प विराम।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, एक बार पुनः आपका स्वागत है गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। अब सुनिए भेंट वार्ता, कौशल विकास से सशक्त युवा सशक्त भारत। साथ ही विश्व युवा कौशल दिवस पर विशेष, शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय ग्वालियर के प्रिंसिपल डॉक्टर आफताब अहमद सिद्दीकी से आशी राठौर की बातचीत। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य युवाओं को शिक्षा के साथ साथ रोजगार परक कौशल प्रदान करने के महत्व को रेखांकित करना है। इस अवसर पर हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं डॉक्टर आफताब अहमद सिद्दीकी। आप महिला पॉलिटेक्निक ग्वालियर में प्रिंसिपल हैं। सर, आपका स्वागत है।
2: थैंक यू मैडम।
1: सर, विश्व युवा कौशल दिवस पर हम आपके विचार आज के कार्यक्रम में जानना चाहेंगे। इस अवसर पर आप युवाओं और छात्राओं के समग्र विकास में कौशल की भूमिका को कैसे देखते
2: हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हमारे देश में जो है, वैसे तो कौशल या उद्यम की शुरुआत नई नहीं है, लेकिन इसको मिशन के रूप में 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसका उद्देश्य था कि युवाओं में कौशल का विकास करना। इस मूवमेंट का नाम दिया गया था स्किल इंडिया मिशन के जरिए किया जाता है। सवाल ये कि स्किल क्या है ना? अगर स्किल का हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो स्किल का मतलब है कौशल, प्रवीणता, हुनर, ये सब चीज़ें जो है स्किल के अंतर्गत आती है। अब यदि स्किल की बात करें तो स्किल दो तरह के हैं, एक है हार्ड स्किल और दूसरी है सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल में जैसे हम कोडिंग हो गई, उसके बाद जो मशीन्स या इनसे रिलेटेड वर्क हैं, कारपेंट्री हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, ये सब हार्ड स्किल्स के अंतर्गत हैं। यदि हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो सॉफ्ट स्किल्स में जैसे आपका जो है टाइम मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, ये इनको जो है हम सॉफ्ट स्किल कहते हैं। अब उद्देश्य इस मिशन का ये है कि जो युवा है आज का हमारा युवा, जिसको हम ये मान के चलते हैं 18 से लेकर 40 साल का, उसमें छात्राएं भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, तो इनको हम जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बनाएं, है ना? क्योंकि भविष्य जो देश, कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है जब वहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या प्रोडक्शन सेक्टर या सर्विस सेक्टर बहुत तेज

0: तेजी से ग्रो हो। इसके लिए जरूरी है हम कि युवाओं में कौशल डेवलप करें, तो उसी कौशल डेवलपमेंट के लिए स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। अब स्किल इंडिया मिशन के तहत ये माना जाता है कि बच्चे सीखें, हुनर सीखें या कौशल सीखें, जिससे कि वो अपने पैरों पे आ जाके आगे खुद खड़े हो सकें और नौकरी मांगने वाले की जगह नौकरी देने वाला बने। ये है इसका।
1: बहुत अच्छी बात कही है सर आपने, नौकरी मांगने की जगह नौकरी देने वाला बने। तो सर जैसे हम अभी बात कर रहे थे स्किल्स और प्रोग्राम की, क्या महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्वालियर में भी हम छात्र छात्राओं को उद्योग उन्मुख बनाने के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं और या कराए जा रहे हैं?
0: नहीं, बिल्कुल 100% आपने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है पूरी तरह कौशल से ही कोरिलेट है ये, क्योंकि कौशल जो है विकसित करने के लिए जो टेक्निकल कोर्सेस हैं, इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा है, ITIs है, तो इनका उद्देश्य ही कौशल डेवलपमेंट है। हमारे यहाँ अगर जब आप देखेंगे पाठ्यक्रम में तो 40% फोकस थ्योरेटिकल नॉलेज पे रहता है और 60% फोकस जो है प्रैक्टिकल नॉलेज का रहता है। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वही कौशल है। बच्चा कोडिंग भी सीखता है, बच्चा जो है टाइपिंग भी सीखता है, बच्चा स्टेनो भी सीखता है, बच्चा ब्यूटी एंड वेलनेस के कोर्स भी सीखता है। तो हमारा कॉलेज एक्चुअली पूर्णता जो है कौशल पे ही डिपेंड है। अगर अब मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो मेरा कॉलेज पूर्णता महिलाओं के लिए समर्पित कॉलेज है, और जिसके अंतर्गत जो कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल से संबद्ध है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन नई दिल्ली से इसका जो एफिलिएशन भी होता है। तो इसमें जो है हमारे तरफ पास जो अगर देखेंगे हमारे कॉलेज में 7 तरह के कोर्स चालू है अभी, और सारे कौशल पर आधारित ही हैं। कंप्यूटर साइंस हो गया, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, आर्किटेक्चर एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन, आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन हो गया, टेक्सटाइल डिज़ाइन हो गया, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, और ब्यूटी कल्चर एंड कॉस्मेटोलॉजी। ये सारे कोर्सेज स्किल आधारित है। और यदि मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ या पूरे मध्य प्रदेश की बात करूँ तो हमारे मध्य प्रदेश में लगभग जो कौशल विकास से संबंधित सारे कोर्स हैं उनकी संख्या 30 तरह के डिप्लोमा हम लोग दे रहे हैं।
1: सर जैसे हम अभी प्रैक्टिकल लर्निंग की बात आपने कही है, तो आज के इस बदलते तकनीकी दौर में जिसमें हम डिजिटली परिवेश है और हम इसमें दिन पर दिन आगे बढ़ रहे हैं, तो किन उभरते कौशलों को सबसे अधिक आप महत्वपूर्ण मानते हैं जिन पे छात्राओं को ध्यान देना चाहिए या स्किल्स ज़्यादा हैं जिसमें बच्चे आगे अच्छा कर सकते हैं?
0: हाँ, ये बहुत प्रासंगिक क्वेश्चन है कि आखिर बच्चे जो है किस स्किल्स पर ध्यान दें। वैसे तो जितनी भी स्किल्स बनी हैं सब स्किल्स का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन अगर हम करें जैसे वर्तमान युग को देखें तो AI है, मशीन लर्निंग है, डेटा एनालिसिस है, ये आजकल के समय में बहुत ज़्यादा मतलब जॉब इस क्षेत्र में अगर कोई बच्चा प्रवीण है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये क्षेत्र उभरते हुए क्षेत्र हम इनको कह सकते हैं।
1: सर जैसे AI और डेटा एनालिसिस की बात हुई और मशीन लर्निंग की बात हुई, ये हम अगर शहरीकरण की बात करें तो जो शहर में बच्चा रह रहा है वो इन सब चीज़ों से जानता है, इनके बारे में उसको नॉलेज है, पर जो छोटे शहर और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्राओं के सामने जैसे ये क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं उनके ऊपर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं।
0: ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि हम जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो ये वैसे तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में आपको बताऊं और हमारा तकनीकी शिक्षा विभाग, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर, हमारे कमिश्नर सर इस बात को लेके काफ़ी मतलब जो है फोकस करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को लाया जाए कॉलेज में और उनको स्किल आधारित ट्रेनिंग दी जाए। तो इसके लिए एक तो गवर्नमेंट ने हर ज़िले में एक एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले हुए हैं, ITI तो तहसील स्तर पर हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी आजकल हर जगह करीब करीब खोल दिए गए हैं, और इनको आप बच्चों को इसकी जानकारी देने के लिए हम लोग रेगुलर जो है स्कूलों में विजिट करते हैं। ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें हमारी टीम जाती है, बच्चों को उनके फ्यूचर के बारे में, उनके लिए जो है जॉब ओरिएंटेड कोर्स हैं उसकी हम लोग जानकारी देते हैं, उनका डेटा मेंटेन करते हैं, उनको रेगुलर हम लोग गाइडेंस देते हैं। और इसके कारण मतलब ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे भी हमारे ग्वालियर या ग्वालियर के आसपास के शहर अगर आप देखेंगे, मुरैना है, भिंड है, पोरसा है, जौरा है, तो यहाँ डबरा है, यहाँ के बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ने आते हैं, वो इसीलिए कि हम डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करते हैं अपनी टीम के द्वारा।
1: से ये ग्रामीण परिवेश के बच्चे आते हैं और शिक्षित होते हैं, तो और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम इस स्तर पे आगे बढ़ रहे हैं, मशीनी युग में आगे बढ़ रहे हैं, और आप सारी स्किल्स को उनके आगे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक प्रधानाचार्य के रूप में आप छात्राओं को चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वे कौशल के माध्यम से आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन सकें?
0: मैं छात्राओं को आपके कार्यक्रम, चूँकि आपका जो आकाशवाणी है ये मुझे पता है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी सुना जाता है, शहरी क्षेत्रों में तो सुना ही जाता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी काफ़ी डिमांड है। मैं भी अक्सर जैसे जब जाता हूँ अपनी गाड़ी में तो मैं आकाशवाणी को लगाता हूँ, सुनता हूँ। अब चूँकि आपका रिमोट एरिया में इसकी अच्छी फॉलोइंग है, मैं उनको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि एक बार आप जो है अभी काउंसलिंग चालू है, 14 अगस्त तक काउंसलिंग चालू है और काउंसलिंग में शामिल होने के लिए आपको सिर्फ 10th पास होना जरूरी है। यदि आप 10th पास हैं, हमारे महिला पॉलिटेक्निक में 7 ब्रांच हैं जैसा कि मैंने बताया, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, MOM, आर्किटेक्चर है ना, ब्यूटी कल्चर, इस तरह के 6-7 कोर्स चालू हैं। इसी तरह एक बॉयज पॉलिटेक्निक भी बगल में हमारे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पॉलिटेक्निक के नाम से, वहाँ भी 7 ब्रांचेस, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, होटल मैनेजमेंट, इस टाइप की वहाँ भी ब्रांच चालू हैं। ऐसे कुल मिला के पूरे मध्य प्रदेश में जो 26 से अधिक पॉलिटेक्निक कोर्स संचालित हैं उनकी काउंसलिंग चल रही है। मेरा छात्रों से अनुरोध है आपके माध्यम से कि वो एक बार हमारे कॉलेज को जरूर विजिट करें। यदि वो पर्सनली नहीं आ सकते हैं तो हमारी वेबसाइट GWPCGwalior.org पे है, उस पर सारी जानकारी पड़ी हुई है, GWPCGwalior.org, इस पे जाएं और उसके बाद आप सर्च करें, आपको सारी जानकारी मिलेगी। और तकनीकी शिक्षा से जुड़ने का या कौशल आधारित शिक्षा से जुड़ने का ये आपके पास बेहतरीन अवसर है। 14 अगस्त तक हमारे यहाँ काउंसलिंग चल रही है, हमारे पास सीटें जो है बड़ी लिमिटेड रहती हैं, तो इसलिए मैं बच्चों को सलाह दूंगा कि जितना जल्दी आप आएंगे, अभी वर्तमान में जो है हर अल्टरनेट डे पे एडमिशन दिए जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। मैं आपके माध्यम से छात्रों से अनुरोध करूंगा, छात्राओं से अनुरोध करूंगा कि वो एक बार तकनीकी शिक्षा के माध्यम से जुड़ें और जॉब क्रिएटर बने जॉब सीकर की अपेक्षा।
1: सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस जानकारी के लिए।
0: थैंक यू।
1: श्रोताओं, विश्व युवा कौशल दिवस हमें ये संदेश देता है कि शिक्षा के साथ कौशल का विकास भी उतना ही आवश्यक है। कौशल ही युवाओं को आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और सफल बनाता है। आइए इस अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाएंगे, नए नए कौशल सीखेंगे और अपने देश के विकास में सक्रिय योगदान देंगे। एक कुशल युवा ही सशक्त समाज और समृद्ध राष्ट्र की पहचान होता है। अभी आप सुन रहे थे विश्व युवा कौशल दिवस पर विशेष भेंटवार्ता, कौशल विकास से सशक्त युवा सशक्त भारत, डॉक्टर आफताब अहमद सिद्दीकी, प्रिंसिपल शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय ग्वालियर से आशी राठौर की बातचीत। श्रोताओं, अब समय हो गया है कार्यक्रम में एक प्यारे से गीत का।

श्रोता हूँ, हर साल 15 जुलाई को उदारता और घर की साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए एक दिन, इस दिन को हम राष्ट्रीय दान दिवस के रूप में भी जानते हैं, यानी नेशनल गिविंग समथिंग अवे डे। ये दिन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने पास जो कुछ भी है, चाहे वह सामान, समय हो या दयालुता, उसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इस अवसर का लाभ उठाकर हम क्या कर सकते हैं, अपनी अलमारियों को साफ करें, किसी स्थानीय दान संस्था को दान करें या किसी ज़रूरतमंद की भी मदद कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, लेना से बेहतर देना होता है, और यही आज के इस दिवस यानी राष्ट्रीय दान दिवस का उद्देश्य है। एक का कबाड़ दूसरे का खजाना होता है। इस कथन का मतलब ये नहीं कि सचमुच कबाड़ या कचरा नहीं, बल्कि ऐसी वस्तुएं जो किसी की और के लिए ज़रूरी ना हो, वो किसी अन्य के लिए उपयोगी हो सकती हैं। ये दिन लोगों को बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद के लिए भी प्रोत्साहित करता है। हम में से अधिकांश लोगों के पास निसंदेह आवश्यकता से कहीं अधिक वस्तुएं हैं। अगर इस दिवस की बात की जाए तो इसकी स्थापना 15 जुलाई 2015 को स्वयं को दानशील मानने वाली लिंडा इडन हॉल फुल्चर द्वारा की गई थी। इस दिवस के फेसबुक पेज पर लिंडा दुनिया को कुछ वापस देने की वकालत करती है। उनके अनुसार ये दिन उन सभी के लिए है जो परवाह करते हैं, मित्र, परिवार और ज़रूरतमंदों को दान देने के लिए। देना जीवन का सबसे सरल कार्य है जो किसी के दिन को रोशन कर सकता है और कई बार सचमुच सकारात्मक बदलाव ला सकता है। चाहे वो किसी की तारीफ़ करना हो, अपने दोस्त को कोई अपनी जैकेट देना हो या कोई सामान देना हो जो उसे बहुत पसंद हो, साथ ही साथ ज़रूरतमंदों को कपड़े दान करना हो या छोटी मोटी चीज़ें, इन सबसे बेहद प्रभाव पड़ता है। दान देना निस्वार्थ कार्य है, फिर भी इसका लाभ दोनों पक्षों को मिलता है। हमें दान देने और किसी का दिन बेहतर बनाने से खुशी मिलती है, और साथ ही हम उन चीज़ों से भी छुटकारा पाते हैं जिनकी हमें अब ज़रूरत नहीं और जो यूं ही व्यर्थ में पड़ी हुई है। हम अपने जीवन में मिली सभी खुशियों के लिए आभारी होना सीखते हैं, और इससे हमें यह एहसास होता है कि हम समाज को बेहतर बनाने में योगदान दे रहे हैं। उन्नीस सौ 1988 में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि जिन छात्रों ने दान दिया, वे दान न देने वालों की तुलना में अधिक खुश थे। जब आप अनावश्यक चीज़ों से छुटकारा पाते हैं तो आपका जीवन कहीं अधिक सरल और स्वतंत्र हो जाता है। इससे तनाव भी बेहद कम होता है। जिन चीज़ों की आपकी आवश्यकता नहीं थी, जिनका आप उपयोग नहीं कर रहे थे, उन्हें हटाने से जो अनुभूति होती है वो आपको स्वतंत्रता का एहसास कराती है। तो ये तो थी बात राष्ट्रीय दान दिवस की। जो चीज़ें हमारे पास व्यर्थ में यूं ही पड़ी हुई हैं तो हम उन्हें हटाकर अपने क्लोज़ेट को साफ कर सकते हैं, लोगों को, ज़रूरतमंदों को अपनी चीज़ें दान देकर एक सकारात्मकता का अनुभव कर सकते हैं। कार्यक्रम में अभी बातें और भी करेंगे आपसे, उससे पहले ये गीत।

श्रोताओं, अब समय हो चला है इस कार्यक्रम को विराम देने का, तो अपनी मित्र आशी को दीजिए अनुमति। नमस्कार। और इसी के साथ ही ये कार्यक्रम ही समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे सूचना समाचार और नगमों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित कुमार गंधर्व का गायन, राग है अहीर भैरव। आइए सुनते हैं पंडित कुमार गंधर्व का गायन।

आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे

0: निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय, खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है। पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल न करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10 बज रहे हैं। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है हरदा जिले की चिट्ठी। आलेख लोमेश गौर का है और वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। हरदा जिले में बीते दिनों मानसून की दस्तक के साथ मौसम ने करवट ली। शुरुआती बारिश के बाद किसानों ने बड़े उत्साह के साथ सोयाबीन, मक्का और अन्य खरीफ फसलों की बुआई पूरी की। हालांकि लगातार बारिश से कई स्थानों पर नदी नाले उफान पर आ गए, ग्रामीण मार्ग प्रभावित हुए और कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बनी। बारिश थमने और धूप निकलने से लोगों को राहत मिली तथा जनजीवन पुनः सामान्य होने लगा। जिले के वनांचल क्षेत्र के उन किसानों के लिए शासन ने नई व्यवस्था लागू की है जिनके पास भूमि का पट्टा या वनाधिकार प्रमाण पत्र नहीं है। अब ऐसे किसान स्वघोषणा पत्र के आधार पर खाद बीज के लिए ई टोकन प्राप्त कर सकेंगे। जिले के खिरकिया रेलवे ओवरब्रिज परियोजना के लिए आईआईटी मुंबई की विशेषज्ञ टीम ने बीते दिनों ब्रिज कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ अलाइनमेंट का निरीक्षण किया। करीब 3 वर्ष से लंबित इस परियोजना को लेकर उम्मीद जताई गई है कि तकनीकी रिपोर्ट मिलने के बाद निर्माण कार्य आगे बढ़ सकेगा। हरदा जिले में वट सावित्री पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा के साथ बीते दिनों मनाया गया। बड़ी संख्या में सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा कर 108 परिक्रमा लगाई और परिवार की सुख समृद्धि तथा अखंड सौभाग्य की कामना की। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र की यदि बात करें तो लॉयंस क्लब हरदा अंबर ने निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन बीते दिनों किया। इस शिविर में मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों को ऑपरेशन के लिए भोपाल भेजा गया। वहीं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर जिले के वरिष्ठ चिकित्सकों का सम्मान भी किया गया। जन जागरूकता के क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा जिले में सेफ क्लिक 2.0 अभियान का आयोजन किया गया, जिस अभियान के तहत राजा बरारी गाँव में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं जिला जेल हरदा में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा आध्यात्मिक एवं समाज सुधार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीते दिनों जिले में आयोजित पौधरोपण अभियान, स्वास्थ्य शिविर, सम्मान समारोह, स्वच्छता अभियान और जन जागरूकता कार्यक्रमों ने जिले की सामाजिक सक्रियता को नई दिशा दी। पुलिस विभाग में लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया बीते दिनों पूरी हो गई। विभागीय पदोन्नति समिति ने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत कुल 109 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नत किया है। हरदा जिले में दस्तक सह स्टॉप डायरिया कैंपेन का पहला चरण 31 अगस्त तक संचालित किया जाएगा। इसके लिए जिले के अनुमानित 69,922 बच्चों को सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। कोष एवं लेखा संचालनालय द्वारा IFMIS पोर्टल की तकनीकी समस्याओं के निराकरण के लिए जिले में 16 और 17 जुलाई को IFMIS केयर्स कैंप लगाया जाएगा। मेरा युवा भारत अंतर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक बीते दिनों कलेक्टर सिद्धार्थ जैन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में उन्होंने जिले में पोर्टल पर 15 से 29 आयु वर्ग के अधिक से अधिक युवाओं का पंजीयन, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय और वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। हरदा जिले में ग्रीष्मकालीन फसल मूंग का समर्थन मूल्य पर उपार्जन 1 जुलाई से 10 अगस्त तक किया जा रहा है। जिले में किसानों की सुविधा के लिए 40 ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर बीते शनिवार को ADR सेंटर में स्कूली बच्चों के लिए विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। न्यायाधीश चंद्रशेखर राठौर ने उपस्थित बच्चों को बताया कि भारत वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। विद्यार्थियों को यह संदेश दिया गया कि जागरूक नागरिक बनकर वे समाज में जनसंख्या नियंत्रण, लैंगिक समानता, शिक्षा के प्रसार और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हरदा कलेक्टर ने जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समुदाय में जागरूकता लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ठोस अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन विकसित करने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वार्ड प्रतिनिधियों से चर्चा की जाए। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड हरदा वृत्त ने विद्युत चोरी और अनाधिकृत विद्युत उपयोग पर लगाम लगाने के लिए विशेष सघन जांच अभियान चलाया। विद्युत अधिनियम एवं कंपनी के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करते हुए लगभग 1,15,35,000 रुपये की बिलिंग की गई। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता

को ध्यान में रखते हुए जनपद पंचायत हरदा ने हंडिया क्षेत्र के नर्मदा तट के पास की दुकानों में पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये जारी आदेश 9 जुलाई से प्रभावी हो गया है। पहली बार उल्लंघन करने पर 200 रुपये का आर्थिक दंड तथा दूसरी बार उल्लंघन करने पर 500 रुपये का आर्थिक दंड और तीसरी बार या बार बार उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का जुर्माना तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान को सील करने या लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। हरदा जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे ज़िले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी हरदा ज़िले की चिट्ठी। आलेख लोमेश कुमार गौर का था, वाचन था अभिषेक कटियार का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम की पहली फरमाइश है आप सबकी। आप हैं कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल। धमदाग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शंकुल जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल। मसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बट्टा, नीलम बट्टा, नितिन पालक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बट्टा। आप सब सुनना चाहते हैं मैंने प्यार क्यों किया फिल्म से ये गीत, जिसमें आवाज़ें हैं शान, प्रिया और नीरज की। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है और आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, विजय तायड़े, अमोल तायड़े, जिंगाव विदर्भ से वसंतराव भोजने, पीएस नहवाकर और निवृत्ति आड़ोकर। गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर। साथ ही इस गीत को सुनने की फरमाइश है ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनसुईया जाधव, पवन राजे जाधव और छत्रपति संभाजी नगर से मंगेश इंगले, संध्या इंगले और स्वराज विराज। आप सब सुनना चाहते हैं धड़क फिल्म का ये गीत जिसे गाया और संगीत दिया है अजय अतुल ने। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गीत।

0: So, your place or mine?
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम
1: तो क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है गोल्डन रेडियो श्रोता संगराज पैलेस मऊनाथ भजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ से अम्भई तहसील सिल्लौर जिला छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोड़के। आप सब सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर जब वी मेट फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने। आवाज़ें हैं सोनू निगम और जावेद अली की। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

ये आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण है और प्रसारित हो रहा है व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है साथिया फिल्म के इस गीत की, जिसे लिखा है गुलजार ने, संगीतबद्ध किया है AR रहमान ने, इस गीत को अपने सुरों से सजाया है ऋचा शर्मा, महालक्ष्मी और वैशाली ने। इस गीत को सुनने की पसंद है आप सबकी। आप हैं सुरिंदर संधु, अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिखा संधु, प्रतीक्षा संधु और मैक्स गुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवाशहर से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं आज़ाद नगर लक्षर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन, लाल चलोत्रा, सुनीता, शमी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पोता गुरशब। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश का ये गीत।

यह आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण है और प्रसारित हो रहा है व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है अजनबी फिल्म के इस गीत की, जिसे लिखा है समीर ने, संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने और अपने सुरों से सजाया है अदनान सामी और सुनिधि चौहान ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश है चडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, इंद्राणी, माया साहू, इसी गीत को सुनना चाहते हैं रोहिदास चौक पंढरपुर शहर से सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, प्रशांत शिंदे और ऋषि शिंदे। टिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से संदीप मकड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी। साथ ही साथ पटियाला कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर अजनबी फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है बंटी और बबली फिल्म से। इस गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत है शंकर एहसान लॉय का और इस गीत को अपने सुरों से सजाया है शंकर महादेवन, जावेद अली और अलीशा चिनॉय ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश है आप सबकी। आप हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूढ़ी, प्रमोद कुमार डूढ़ी और पुष्पेंद्र कुमार डूढ़ी। एकता कॉलोनी

रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर बंडे और बबली फिल्म का ये गीत।

यह आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण है और प्रसारित हो रहा है व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं करणवीर हाउस बठिंडा पंजाब से, परम सिंह जौड़ा, मनमीत कौर, करणवीर, तपिंदर, वीरेंद्र, कुलदीप, सिंबू, एकम, दमन और अभिजोत। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। इस गीत को सुनने की फरमाइश है राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार की। आप सब सुनना चाहते हैं कहो ना प्यार है फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं इब्राहिम अश्क और संगीतकार हैं राजेश रोशन। इस गीत को अपने सुरों से सजाया है लकी अली और रामिया ने। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, आप सब सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश है फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नाशिक शेख नाजिया नसीर सादिद साहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबिया मुजावर, मिखाइल जनैब मुजावर, दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया ज़िला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल, गम्हरिया जमशेदपुर से बिपिन स्वाति देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल। आप सब सुनिए फला फिल्म का ये गीत जिसे लिखा है प्रसून जोशी ने और संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने। इस प्यारे से गीत को अपने सुरों से सजाया है सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

बढ़ावा देने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। वर्तमान में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी परिसर में बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। कृषक कल्याण वर्ष के तहत आयोजित इस महोत्सव के दौरान किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी, प्राकृतिक एवं जैविक खेती सहित शासन की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। बलराम कृषि महोत्सव इस माह के दौरान इंदौर के अलावा धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा में भी आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा इंदौर से आबूधाबी की शुरुआत भी करेंगे। ये सेवा सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री इंदौर जिला चिकित्सालय के नवनिर्मित 300 बिस्तरी भवन का लोकार्पण भी करेंगे। मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक 19 जुलाई को भोपाल जिले के जगदीशपुर में होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा है कि 20 से 24 जुलाई तक विधानसभा सत्र चलेगा। इस सत्र के दौरान 14 विधेयक लाए जाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार आज अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, रीवा, मऊगंज और सतना समेत प्रदेश के 20 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है और ओमान में आयोजित होने वाली यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2026 के लिए मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी के 4 खिलाड़ियों आयुष, करण, महक और नौशीन का चयन भारतीय टीम में किया गया है।

0: आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने लेकर एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके साथ। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तवर। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि हम इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं रोजाना सुबह 10:30 से लेकर 11 बजे तक। तो हमें कार्यक्रम में फोन करें और अपने पसंद के गीत सुने, और इसके लिए आपको डायल करना होगा हमारा नंबर जो है 2660902 और एसटीडी कोड है 0755। नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
3: हेलो
2: नमस्कार,
3: बालोदा लखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ मैडम।
2: उज्जैन से कन्हैयालाल जी, कैसे हैं आप?
3: बहुत बढ़िया।
2: क्या चल रहा है?
3: चल रहा है, खेती का काम कर रहे हैं और ये डोरे चला रहे हैं खेत के अंदर। हमने सोचा कि अब लगा दे हैं, क्या है कि याद आ गई है।
2: अरे वाह, किस चीज की खेती अभी कर रहे हैं आप? क्या लगाया हुआ है?
3: सोयाबीन की खेती करते हैं मैडम उनका।
2: अच्छा, सोयाबीन लगा हुआ है।
3: हाँ।
2: अरे वाह, और खेती करते हुए आप गीत सुन रहे हैं?
3: गीत सुना दीजिए वारिस का।
2: बताएं कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
3: वो मेघारे मेघारे मत पड़ जाएगा, ये प्यासा सावन का बहुत बढ़िया है
2: जी। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है।
3: मेघारे मेघारे मत पर दे आज तू
2: वाला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाया आपने।
3: मैं गायक कलाकार भी हूँ मैडम।
2: अरे वाह, अरे वाह।
3: वो क्या है, सुंदरकांड वगैरह सभी में जाता हूँ, रामायण वगैरह वगैरह में सभी में जाता हूँ।
2: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अब आपको आपकी पसंद का ये गीत सुनवा देते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में।
3: ओके ओके, धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: नमस्ते मैडम
0: जी। नमस्ते, किनसे बात हो रही है?
1: मैं पिंडरी जिला मंडला से सुमत कुमार जैन बोल रहा हूँ मैडम।
0: मंडला से सुमत कुमार जैन जी, कैसे हैं आप?
1: पिंडरी जिला मंडला
0: जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ अभी तक तो।
0: अभी तक मतलब क्या होने वाला है?
1: अब ऊपर वाले की मर्जी, आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा।
0: अरे नहीं, सब बढ़िया ही रहेगा।
1: तो आपसे बात कर रहा हूँ, जब तक तो बढ़िया।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। और क्या करते हैं आप सुमत जी?
1: मैं रिटायर्ड शिक्षक हूँ मैडम।
0: आप रिटायर्ड शिक्षक हैं
1: जी।
0: क्या पढ़ाते थे आप?
1: मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाता था, सोशल साइंस।
0: कितना समय हो गया आपके रिटायरमेंट को?
1: 4 साल, 5 साल हो गए, 21 में रिटायर हुआ था।
0: अच्छा, तो अब आप क्या करते हैं, मतलब कैसे दिखाई देता है आपका जीवन, जो समय है वो कैसे व्यतीत करते हैं?
1: पहले मैं सरकारी नौकर था मैडम, अब मैं घर का नौकर हूँ।
0: अरे वाह, ये भी अच्छी बात है, घर में घर वालों की सेवा करना बड़ी अच्छी चीज है। चलिए, तो फिर आज गीत कौन सा सुनना चाहते हैं? कार्यक्रम है फोन करें गीत सुने।
1: अच्छा जी मैडम, आप सुना दीजिए, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, नमक हलाल का।
0: नमक हलाल फिल्म से, बहुत अच्छा।
1: मेरे साथी है कृपाल पटेल, कमला प्रसाद शर्मा, राधेश्याम केवट।

0: मोहम्मद मोहराली, इन लोग भी आप लोगों को फोन लगाते रहते हैं लेकिन फोन बहुत लगते नहीं है, उंगलियां दर्द करने लगती जब जाके लगता है
1: जी, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो कोशिश करते हैं।

0: है।
1: नहीं, आप लोगों की ऐसी सोच और आप लोगों का ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत करने का तरीका
0: जी,
1: जो लोगों तक पहुंचे, ऐसी सोच भी और ऐसे तरीका को अपनाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत अच्छा लगता है मैडम, बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए भी। और अब आपको आपके पसंद का गीत, आपको और आपके मित्रों को आपकी पसंद का एक गीत सुनवा देते हैं किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म नमक हलाल से।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: नमस्कार
0: जी, किन से बात हो रही है मेरी?
1: मैं ओम प्रकाश नेमा, विद्यानगर तेंदुखेड़ा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैडम
0: ओम प्रकाश जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं।
0: क्या चल रहा है, कैसा मौसम है?
1: मौसम तो बदल हो रहे हैं, कहीं धूप निकल रही है। बस दुकान पर बैठे हुए हैं।
0: अच्छा, किस चीज की दुकान है आपकी?
1: हमारी कपड़े की दुकान है, बस दुकान पर बैठते हैं और अपने आपके कार्यक्रम सुनते रहते हैं।
0: तो कौन सा गीत सुनेंगे आज कार्यक्रम में, बताएं?
1: आज हम गीत सुनेंगे, फिल्म का नाम है जब आप हम देंगे। गीत के बोल रहे हैं, हैरान हूँ मैं आपकी इन जुल्फों को देखकर।
0: ये अनुराधा पौडवाल जी और शब्बीर कुमार की आवाज में ये गीत है
1: जी।
0: बिल्कुल, आपको सुनवाते हैं ये गीत ओम प्रकाश जी।
1: दोस्तों के लिए
0: जी
1: डेडिकेट रहेगा। परिवार का नाम लेना चाहते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो हमारे परिवार में श्रीमती किरण नेमा है और आकाश नेमा, विकास नेमा, नंदिनी नेमा, शुभांश नेमा, वो सारा नेमा परिवार है।
0: आपकी परिवार और आपके साथियों के लिए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत जवाब हम देंगे फिल्म से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: कितना

0: नमस्कार कार्यक्रम फोन करने की सुने। नमस्ते, किनसे बात हो रही है?
1: भूपेंद्र कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ, कोटा राजस्थान से।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया, आप कैसे हो?
0: मैं भी बढ़िया हूँ।
1: भोपाल में बारिश वारिश हो रही हो रही?
0: भोपाल में बारिश थोड़ी सी कम हो रही है, थोड़ी और हो जाएगी तो अच्छा लगेगा।
1: यहाँ तो गर्मी पड़ रही है।
0: हाँ,
1: गाना बता दूँ?
0: हाँ बिल्कुल, गाना बता दीजिए।
1: भीगी रात का देखे तो न देखो,
0: मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में,
1: लता जी की आवाज में। ऐसे तो न देखो कि बग जाए कहीं।
0: बिल्कुल, ये गीत हमारे पास उपलब्ध है, अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: हाँ मैडम, सही, मैं सुमित सिंह बात कर रहा हूँ, एमपी धार से।
0: धार से सुमित सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: जी मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ जी।
0: क्या चल रहा है धार में?
1: जी बस मेरी म्यूजिक के क्षेत्र में जॉब है, म्यूजिक कॉलेज में हूँ मैं।
0: तो आप गाना सिखाते हैं या कोई वाद्य यंत्र सिखाते
1: नहीं
0: हैं?
1: मैं मेरा जो विषय है वोकल है, मैं वोकल सिखाता हूँ। जी
0: अच्छा जी, ठीक है। तो कार्यक्रम में आज गीत कौन सा सुनना चाहते हैं बताएं, संगीत कितनी
1: आप
0: बातें
1: मुझे सुना दीजिए। आग और शोला फिल्म का गीत है, अनुराधा पौडवाल जी और मनोहर उदास जी की आवाज में, हरे बरसा।
0: बिल्कुल, ये गीत उपलब्ध है हमारे पास, आपको सुनवा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए सुमित जी।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: कौन बोल रहे हैं आप?
0: जी मैं रक्षा बात कर रही हूँ।
1: मेरे को भी गाना सुनना है साहब, कौन बोल रहे हैं आप?
0: बिल्कुल सुनवाएंगे हम आपको, आपका नाम बता दीजिए। मैं रक्षा बात कर रही हूँ।
1: जी हाँ, मेरा नाम सरला चावड़ा है।
0: सरला जी,
1: जी हाँ।
0: कहाँ से बात कर रही हैं सरला जी?
1: मैं रतलाम से।
0: रतलाम से फोन कर रही हैं, कार्यक्रम सुन रही हैं हमारा।
1: जी हाँ।
0: अच्छा ठीक है, क्या करती हैं सरला जी?
1: मैं टीचर हूँ साहब।
0: टीचर हैं, अच्छा बताएं अब कौन सा गीत सुनना चाहती हैं, बताएं।
1: मैं सुनूंगी फिल्म नमस्ते जी का, मेरे दो नैना मतवारे।
0: लता मंगेशकर जी की आवाज में ये गीत है।
1: जी हाँ,
0: आपको सुनवा देते हैं। सरला जी बहुत अच्छी आपकी पसंद है।
1: मैं 1971 से सुन रही गाने।
0: अरे वाह,
1: मैं कक्षा एक में थी तब से ही गाने सुन रही हूँ और मुझे सभी गाने बेहद पसंद है। और आकांक्षा दीदी और विद्या जैन और सरिता रावत जो भी है, वो जितनी भी है उनको बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है उनकी आवाज। उन्होंने फूलों के बारे में जानकारी बताई आकांक्षा दीदी ने, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सरला जी, आपका जो इतना प्यार है मैं बिल्कुल सबके साथ साझा करूंगी।
1: जी हाँ, थैंक यू।
0: अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: जी हाँ, थैंक यू वेरी मच।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: हाँ, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम से।
0: जी
1: हाँ, मैं जिला पन्ना मध्य प्रदेश से हर्षवर्धन पांडे बात कर रहा हूँ।
0: हर्षवर्धन पांडे जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ, हम वो ठीक है। और इस समय भोपाल का मौसम कैसा है? बरसात वगैरह हो रही है? और पन्ना में तो नहीं हो रही है, पन्ना में तो ये जो है जो धूप निकली है, भोपाल का मौसम आप बता दीजिए।
0: हर्षवर्धन जी, पन्ना में जैसी धूप निकली है वैसी भोपाल में निकली हुई है, थोड़े बहुत बादल हो जाते हैं।
1: वो मुझे आज वो जो है बरसात से ही संबंधित गीत सुनवा दीजिए। एक काला बाजार फिल्म का गीत है मोहम्मद रफी और गीता दत्त के ऊपर में, ये रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। ये फिल्म 1960 में बनी थी और ये इसी का गीत सुनना है और संगीतकार इसके जगदीप बर्मन है। ये वाला गीत सुनवा दीजिए, काला बाजार।
0: बिल्कुल, बड़ी सुंदर गीत की फरमाइश की है आपने। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, आप सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: हेलो
0: हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते मैडम जी।
0: जी किन से बात हो रही है?
1: ये मैं विक्रम मालवी बोला ना, गुलबलो से।
0: विक्रम मालवी जी, कैसे हैं आप?
1: जी मैं बढ़िया हूँ।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं, मैं सुन नहीं सकी।
1: ये मैं मालवा रेलो श्रोता संघ गुलबलो तहसील आलोर जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: क्या करते हैं विक्रम जी?
1: जी मैं वेयरहाउस में काम करता हूँ मैडम जी, और इसके अलावा खेती का काम करते हैं।
0: अच्छा, खेती का काम भी करते हैं। क्या उगा रहे हैं अभी?
1: अभी सोयाबीन बोई है मैडम जी।
0: अच्छा, कार्यक्रम है फोन करें गीत सुने, तो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: गीत सुनना है मुझे फिल्म है करण अर्जुन का।
0: कौन सा?
1: करण अर्जुन का वो वाला गीत सुना दीजिए, हे माँ काली।
0: कुमार सानू की आवाज में, साथ है अलका याग्निक।
1: जी मैडम जी,
0: बिल्कुल आपको सुनवाते हैं। विक्रम जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी आपको भी देवो तो धन्यवाद मैडम जी।
0: धन्यवाद।
2: खड़गम चक्र गदेषु चाप परिदान शूलम् शुण्डी शिर शङ्खम् कन्दद दिक्क

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 11:58 होने को है। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।

भारत अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। वर्तमान में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर के लक्ष्मी नगर अनाज मंडी परिसर में बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। कृषक कल्याण वर्ष के तहत आयोजित इस महोत्सव के दौरान किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती सहित शासन की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। बलराम कृषि महोत्सव इस माह के दौरान इंदौर के अलावा धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा में भी आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा इंदौर से अबूधाबी की शुरुआत भी करेंगे। ये सेवा सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री इंदौर जिला चिकित्सालय के नवनिर्मित 300 बिस्तरीय भवन का लोकार्पण भी करेंगे। मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक 19 जुलाई को भोपाल जिले के जगदीशपुर में होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि 20 से 24 जुलाई तक विधानसभा का सत्र चलेगा। इस सत्र के दौरान 14 विधेयक लाए जाएंगे। प्रदेश भर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है और मौसम विभाग के अनुसार आज अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, रीवा, मऊगंज और सतना समेत प्रदेश के 20 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर ने, और गांव चौहलता से संजय ढिंगिया, नमन, मुस्कान, कुणाल ने। आप सबने पसंद किया है खिलाड़ी फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़

और अब सुनिए परदेश फिल्म का ये नगमा। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी का गीत और नदीम श्रवण का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, गांव चौहलदा बागपत से संजय ढिंगिया, नमन मुस्कान कुणाल, मालवा रेडियो श्रोता संघ से प्रमिलागंज

मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजू वाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा, आप सबकी फरमाइश पर सुनिए परदेश फिल्म का ये गीत।

और अब सुनिए, पिघलता आसमान फिल्म का ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज में इंदिवर के लिखे गीत को सुरों में सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत की फरमाइश भेजी है सारनी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

0: जामई रोड, चांदा मेड़ा, छिंदवाड़ा से सादिया, जोया, जारा, आलिया, अलीशा, नेहा, ज्योति, चांदनी व उनकी सखियाँ। महाराष्ट्र बीट शहर से प्रकाश पगारिया, पराग बगारिया, प्रदीप बगारिया, केशव पटेल, रामनिवास अग्रवाल। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या। आप सबने पसंद किया है मोहब्बत फिल्म का ये गीत। आवाज़ें लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की, आनंद बख्शी का गीत और जतिन ललित का संगीत।
1: नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, सुनते हैं कुछ संदेश।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर। एक सूचना सुनिए। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी करती है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड न करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर विश्वास करें। किसी भी प्रकार के संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विविध प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक हंसना मनाहे का 13वां भाग।

लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी। राजेश मिश्रा, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं।

0: ग्रामीण अंचल में और चाहे शहर में स्कूली शिक्षा की ओर बहुत ध्यान दिया जा रहा है और काफ़ी अंतर हुआ है, फिर भी हम हास्य व्यंग कलाकार उसमें कुछ खोजने को और अपनी कुछ कल्पनाएं आप तक पेश करते हैं जो नहीं भी दिखता है तो हम लोग सोचते हैं कि ऐसा होता होगा या ऐसा होना चाहिए। तो लीजिए एक स्कूल की ओर आपको ले चल रहे हैं कि स्कूल में गुरुजी ने विद्यार्थी से कहा, बेटा ये बताओ कि जब मैं घर से पैदल स्कूल जाता हूँ तो मुझको 30 मिनट लगता है, आधा घंटा, और जब मैं किसी की साइकिल में जाता हूँ तो मुझको 20 मिनट लगते हैं। कितना लगता है? 20 मिनट। और जब मैं स्कूटर में जाता हूँ किसी की बैठकर तो मुझको 10 मिनट लगते हैं। तो बेटा मेरी उम्र बताओ कि मेरी उम्र कितनी है? एक छात्र खड़ा हुआ,
1: पांडा जी आपकी उम्र ना 50 साल।
0: देखो कितना होशियार बच्चा है, इतने बच्चों में कोई भी बच्चा ये नहीं बता पाया कि जब मैं पैदल आता हूँ स्कूल आधा घंटा, जब मैं साइकिल में आता हूँ 20 मिनट, स्कूटर में 10 मिनट, तो गुरुजी की उम्र 50 साल। ये कैसे बताओ? बताओ बच्चों, उनको बताओ कैसे निकाला तुम?
1: पंडित जी हमारे घर के बाजू में एक लड़का रहता है, उसकी उम्र 25 साल है, वो आधा पागल है।
0: कल बैठ जाओ बेवकूफ, कभी जीवन में पास नहीं होगे। दूसरी एक और बड़ी समस्या सामने आई उस गांव में कि एक बच्चे को, बाकी बच्चों को तो बहुत प्यार से नहीं बोलते थे, मारपीट करते रहते थे, किंतु एक बच्चे को ज्यादा ही प्यार करते थे। बेटा कैसे हो?
1: अच्छा पंडित जी।
0: अपनी अम्मा से बोलना पंडित जी ने राम राम पहुंचाइए, नमस्ते। ठीक है, बच्चा हमेशा जाकर अपने घर में मैसेज दे देता था कि माँ, माँ साहब ने आपको नमस्ते बोला है, राम राम पहुंचाइए। अब चूंकि बच्चा पढ़ रहा था और उनको आशय ये समझ में नहीं आता था कि ये नमस्ते का क्या आशय है, ये क्रम चलता रहा। एक दिन उनने अपने पति को बताया कि लोग अगर सुनेंगे तो बड़ा खराब लगेगा, ये नमस्ते क्यों पहुंचाते हैं इनके गुरुजी। तो एक दिन उनने पति पत्नी ने प्लान बना लिया और आपस में, और जो ही बच्चे ने गुरुजी से बोला,
1: गुरुजी प्रणाम।
0: बेटा अपनी माताजी से नमस्ते बोल दिया था?
1: हाँ बोल दिया था, माताजी की नहीं थी कि पिताजी दूसरे शहर जा रहे हैं, आपको बुलाया है।
0: माँ साहब बढ़िया खुश घर पहुंचे। घर पहुंचे इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया, उनके शिष्य की माँ बोली,
1: लगता है कि वो ये आ गए हैं।
0: तो क्या करना है?
1: करना कुछ नहीं, आप हमारी साड़ी पहन लो, मैं बोल दूंगी कि पड़ोस के आई हैं ये आटा पीसने, जो घर में पुरानी चक्की इसमें आटा पीसना गेहूं पीसना है, तो वो आई हुई है, कोई चिंता की बात नहीं।
0: मरता क्या ना करता, माँ साहब ने जल्दी जल्दी जल्दी धोती पहन के अपना बैठ गए गेहूं पीसने के लिए। और जो ही आए उनके पापा बात की और इशारा किया वो चले गए। जब वो चले गए तो माँ साहब ने जल्दी से धोती उतारी, अपना भागे। भागने के बाद एक दिन बच्चे ने बोला,
1: माँ साहब माँ पूछ रही थी बहुत दिन से आपने नमस्ते नहीं पहुंचाई है।
0: तो माँ साहब बोले, क्यों तुम्हारे घर का आटा फिर खत्म हो गया क्या? एक डॉक्टर साहब थे और जैसा उनकी पत्नी भी डॉक्टर, पति पत्नी दोनों। एक दिन पत्नी ने शिकायत की पति से और कहने लगी,
1: सुनिए

0: बात है ना, आप हॉस्पिटल चले जाते हो ना, सामने हॉस्टल में लड़के रहते हैं ना, दिन के 12 बजते मेरे को देखना चालू कर देते, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप इनको मना कर सकते हैं क्या?
1: बोले हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मना करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं, मैं अब भी जाता हूँ। हॉस्टल पहुँचे, हॉस्टल में लड़के रहते थे, कहने देखिए आप लोग यहाँ ढंग से रहिए, क्यों क्या बात है, क्या बात है, दिन के 12 बजते हैं आप लोग मेरी पत्नी को देखना चालू कर देते हैं, ढंग है आप लोगों का, आप लोग नौजवान हैं, अच्छी बात नहीं। बोले डॉक्टर साहब पहले अपने घर के सामने का बोर्ड अलग करिए, क्यों क्या बात है, क्या बात है, देखिए क्या लिखा, क्या लिखा, डॉक्टर सुधा रानी, देखने का समय 12 से 2। छोटी छोटी बातें बड़ी मजेदार हो जाती हैं। मैं कभी घड़ी नहीं पहनता हूं। मेरे से किसी ने पूछा कि राजेश मिश्रा आप घड़ी क्यों नहीं पहनते, मैंने कहा मैं घड़ी इसलिए नहीं पहनता हूं कि हर आधे घंटे में हिंदुस्तान में लोग समय अपने आप बताते हैं। अब आप सोच रहे हो कैसे बताते हैं, आप कहीं विलंब से पहुंचे तो क्या यार भैया अभी आ रहे हो, 2:30 बज रहे हैं यार। ये हम और आपके बीच में अपने आप जो हास्य मिलता है, हास्य कलाकारों को, वो ऐसे ही मिलता है कि हम जो बोलते हैं आप जो बोलते हैं वही सुन रहे हैं, वही समझ रहे हैं। अब इसमें उन्होंने कहा अच्छा 2:30 बज रहा है यार, तुम गजब कर दिया, थोड़ी देर हो गया, जब काफी देर अपन बैठ जाते हैं तो फिर कोई कहेगा चलो यार भैया 3 बज गए यार, तो अपन को पता लग जाता 3 बज गए, काहे को अपन इतनी बड़ा वजन टांग कर चले, और समय की कीमत अगर अपन ने समझी होती तो अपन यहाँ ये हास्य कलाकारी क्यों करते। फिर भी एक भाई साहब से मैंने पूछा कि भाई साहब कितना बजा है, कहले 10 मिनट। मैंने सोचा कि चलो भाई 10 मिनट, मैं समझ गया, अंदर ही अंदर मैं खुश हो गया कि व्यक्ति की आदत होती है कि अगर उसको कोई पहचान रहा है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसको लगता है कि मैं बहुत, मतलब मुझे ये खुशी हुई कि यार ये व्यक्ति जान गया कि मैं हास्य कलाकार हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने पूछा कि प्रोग्राम चालू होना है, भैया कितना बज गया, बोले 20 मिनट। मैंने कहा यार लगता है ये भी हास्य कलाकार होगा, हमको छेड़ने के चक्कर में है, तो मुझे फिर बुरा नहीं लगा। थोड़ी देर बाद फिर मैंने कहा अब प्रोग्राम शुरू कराया जाए, मैंने भाई साहब टाइम कितना होगा, 30 मिनट। हमने देखो यार मैं हास्य कलाकार जरूर हूँ किंतु मुझे गुस्सा भी आ जाती है, कहले क्यों क्या बात है, अरे आप लगे हो 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, बताओ ना कितने बज, कहले भाई साहब मेरी गलती नहीं है, मेरी घड़ी का छोटा कांटा टूट गया है। बड़ा कांटा भर है, वो घूम रहा है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि 20 मिनट, 30 मिनट, 40, मैं आप नाराज क्यों हो रहे, ये हास्य हमारे आपके बीच में मिल जाते हैं। कभी किसी का ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर को अगर आप एकदम, कभी कभी ऐसा माहौल आता कि लगातार ट्रांसफर, अब उसको अगर आप अधूरी बात करते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे आदमी दुनिया से चला गया हो, और वो बात मैच भी करती जाती है, आप उसके घर भी बैठाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वाकई हो गया है। जैसे उन्होंने कहा भैया राजेश मिश्रा नहीं देख रहे, वो तो गए। गए कब, लो आपको नहीं मालूम, सही में नहीं मालूम, अरे नहीं भगवान कसम बिल्कुल नहीं मालूम यार, कैसे कहा, अब अरे यार आज को समय कोई भरोसा है, हैं आर्डर आ गो चले गए। अरे हमें तो पता ही नहीं, दो पर घर पे माताजी वगैरह है ना, अच्छा अच्छा अब माताजी के पास पहुंचे। अब व्यक्ति इतना झूठा हो गया है कि बाहर तक तो कहो हंसता रहे किंतु अगर किसी मरीज को देखने जाए तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते चेहरा बना लेगा, इतना बना लेगा कि इनसे बड़ा दुखी कोई है ही नहीं दुनिया में। किसी के यहाँ गमी में जाएगा तो बाहर तक हंसता रहेगा, घर के अंदर पहुंचते कहा हो गया था भैया, अरे कैसी अचानक, अरे यार भैया, अरे राम राम राम राम, कितने बच्चे हैं भैया, 2 बच्चे, ओहो हो मिसेज, अब मिसेज क्या 2 होंगी क्या, इतने तो गंभीर मत बनो, जबरन के नाटक इतना झूठ भरे तो नहीं करो कि एकदम पूछ बैठे कि मिसेज, अरे मिसेज भी तो एक ही होगी, चलो ये हो गया। अब यार ट्रांसफर वाले उसमें आदमी बैठने

0: नहीं गया। अब्बू गया, अब देखिए संयोग बस, माता जी हाँ बेटा आओ, कहाँ है आज सुना हमें तो पता ही नहीं रहा। हाँ भैया हमें भी तो खुद ही अच्छा नहीं लग रहा, भैया नहीं है तो बिल्कुल इतना खराब लग रहा, हमें ऐसा लग रहा खाने की इच्छा नहीं होती, बिल्कुल ऐसा करता था आते ही साथ अम्मा ए अम्मा तुम्हारे लाले सेव ले आए, तुम्हारे लाले अंगूर ले आए, अब आज है नहीं, ऐसा सूना खा लग रहा बिल्कुल। नहीं तो अम्मा उसमें क्या कर सकते बता, नहीं करने को तो अब आप लोग नेता आदमी हो कुछ कर सकते। अम्मा हम लोग नेता हैं, नीचे चलती ऊपर नहीं चल पाती हम लोगों की। अब ऊपर में उनको ये लग रहा है कि दिल्ली की बात कर रहे हैं वो ऊपर कहले अम्मा हम लोगों की तो नीचे ही चलती है ऊपर तो चलती नहीं। हाँ बेटा ऊपर की पहुंच तो बड़ी अजीब ही होती है, किंतु अब चलो अब क्या करो, हम इंतजार कर रहे हैं उनका। अब पूरी विधा जो थी वो पूरी बदल गई, आदमी ये सोच रहा है कि वो ऊपर चले गए, वो ये सोच रहे हैं कि इनका ट्रांसफर हो गया, कभी किसी के अस्पताल में देखने जाओ। ये हास्य व्यंग आपको कहीं पढ़ने नहीं मिलेगा, ये आपके समाज में मिलेगा। आप किसी को अस्पताल में देखने जाओ और मान लो वो डिस्चार्ज हो गया है, तो आपने काउंटर में पूछा भाई साहब राजेश मिश्रा, हाँ वो तो गए कब, एक घंटा पहले, अरे राम राम राम राम, ओहो हो मट्टी कब जाएगी, नहीं नहीं मरे नहीं है यार, नहीं नहीं आप बोले ना गए मतलब हॉस्पिटल से गए यार भैया। कभी आप अचानक घर में फोन करें, हेलो
1: हाँ
0: देखो यार मेरे को पासपोर्ट फोटो की जरूरत है, तो मैं भेज रहा हूँ चपरासी को, उसको पासपोर्ट फोटो दे देना।
1: हाँ ठीक है,
0: अब आप इंतजार करो पासपोर्ट फोटो का, अगर आपकी पत्नी को पासपोर्ट फोटो नहीं मिलती है तो वो तुरंत ग्रुप फोटो में से काट के पासपोर्ट बना के भेज देती। फिर आपने फोन लगाया, हेलो तुमने क्या फोटो भेज दी यार, क्या पेपर में देना है, गमी वाला समाचार देना है क्या?

अब आप इंतजार करो पासपोर्ट फोटो का। अगर आपकी पत्नी को पासपोर्ट फोटो नहीं मिलती है तो वो तुरंत ग्रुप फोटो में से काट के पासपोर्ट बना के भेज देती। फिर आपने फोन लगाया, हेलो तुमने क्या फोटो भेज दी यार, क्या पेपर में देना है, गमी वाला समाचार देना है क्या?

0: आऊं, इसे कहीं कोई अन्यथा ना ले कि किस प्रकार से हमें हास्य व्यंग्य उसमें मिल जाते हैं, दर्द में व्यंग्य। इसलिए हम मैसेज पहुंचाते हैं कि कभी आप तक ये बातें पहुंच जाएं तो कर्फ्यू और दंगे फसादों से व्यक्ति दूर रहे। कर्फ्यू के दौरान में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है आम व्यक्ति की, और वो होती है पुलिस वालों से। लोग मुझसे पूछते हैं कि राजेश मिश्रा, हिंदुस्तान में व्यंग्य में स्टेज की दुनिया में जितना आप पुलिस वालों के लिए सुनाते हैं और हमेशा पुलिस वालों को छेड़ते हैं, आखिर क्या बात है? और मैं हर प्रोग्राम में बताता हूँ कि मेरी एक बहन की शादी धोखे से एक पुलिस इंस्पेक्टर साहब के साथ हो गई है, इसलिए तमाम पुलिस वाले हमारे जीजा होते हैं। मजाक के दौरान में मैं उल्टा सीधा जीजा लोगों को से बोल देता हूँ, तो ये भी निवेदन कर लेता हूँ कि मंच से वो लोग उतनी दूरी बनाए रखें। कर्फ्यू के दौरान में बहुत से लोग बाहर से आते हैं जो लोकल लोगों को, शहर के नेताओं को, समाज सेवियों को नहीं पहचान पाते हैं। तो सबसे पहले तो जो कर्फ्यू पास मिलते हैं उसको लोग लगाते हैं और उनको सबसे पहले मोहल्ले में दिखाने निकलेंगे। कहा भाई कर्फ्यू पास मिला यार, एसपी साहब ने बुलाया था और कलेक्टर साहब ने बोला कि एकता की अपील के लिए आप लोगों को निकलना है। अब ये तो अपन बोल रहे हैं, किंतु सामने वाला सोच रहा साफ लोगों को भी मालूम नहीं होगा एकता की अपील, पिताजी तो साथ में रहते नहीं है समाज में एकता की अपील के लिए निकलेंगे ठीक ठीक निकलो निकलो, आप तो निकल लो, ये वाली गली से निकलो, ये वाली तरफ बहुत ज्यादा तनाव है, जिस तरफ पुलिस थी उसी तरफ भाइयों ने भिजवा दिया। अब जो यहीं पहुंचे तो पुलिस ने, ऐश किधर, कर्फ्यू लगा हुआ? हाँ कर्फ्यू पास है। ये पास आपने, कर्फ्यू पास फाड़ दिया, आप जानते मैं कौन हूँ? वीआईपी आदमी, दो तीन लठ मारो वीआईपी इसको। अरे ए, लठ मार दिया आपने, कहते अरे भाई साहब अरे कैसा कर रहे हैं मैं। हाँ पिट गए, जी हाँ ये वाला पास चलता है, पीठ में निशान आ गए आपके, हाँ पीठ में लठ के निशान आ गए, हाँ तो ये वाला पास दिखाते हुए चले जाना घर में, बता देना मैं पिट चुका हूँ, कर्फ्यू में बाहर मत निकलिए। सुबह सुबह पति पत्नी घूमने के लिए निकल पड़े, पुलिस वालों ने रोक लिया, ऐश किधर जा रहे हैं? पति बोला मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक कर्फ्यू में? बहुत बढ़िया, इसको जेल भेजो, ये बड़े गोल में मॉर्निंग वॉक करेगा। पत्नी बोली, साथ में पत्नी भी थी, पत्नी तुरंत बोली,
1: नहीं इनको आप माफ कर दीजिए, हमने इनको मना भी किया था कि कर्फ्यू लगा हुआ है किंतु ये माने नहीं।
0: देखो पत्नी कितनी समझदार है, आदमी कितना बेवकूफ, एक लपाड़ा मारो अपने पति को पुलिस बोल रही है कि पत्नी से कि पति को मारो, पत्नी बोली
1: नहीं हम इनको नहीं मारेंगे।
0: नहीं मारोगी तो ये जेल जाएगा या तो एक चाटा मार दो तो घर ले जाओ, चाटा नहीं मारोगी तो हम इसको जेल भेज देंगे, आप अपने घर जाइए।
1: नहीं देखिए आप प्लीज।
0: अब पति खिसक, मार दो नो
1: नहीं हम नहीं मारेंगे।
0: अरे लफड़ा कराओगे क्या?
1: नहीं हम नहीं मारेंगे।
0: मार दो ना, तुमसे बोल रहे हैं।
1: नहीं ना,
0: अकेले में पटकती रहोगी कुछ लोग हमारे पास आए, बोले राजेश मिश्रा जी आपको नेता लोग भी चाहते हैं, कलाकार भी हो आप, और आपको अधिकारी भी चाहते हैं। तो मैंने कहा भैया मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो, कर्फ्यू में क्या पिटवाना चाहते हो आप? कहने नहीं भैया ऐसा था कि आप हमारे लिए, हम लोगों के यहाँ क्या है कि लैट्रिन नहीं है घर में, हम लोग सब सुलभ शौचालय जाते हैं, तो आप एक काम करवा दीजिए, सुबह शाम का हम लोगों के लिए पास बनवा दीजिए। और एक टाइम का इमरजेंसी बनवा दीजिए। तो मैंने कहा भैया पास बनवा दें? कहले हाँ क्या है, उधर पुलिस की पॉइंट ड्यूटी लग गई है, हम लोग इधर से जाते हैं पुलिस रगेद देती है, तो आप लोग पकड़ में नहीं आते? नहीं पकड़ में तो आ सकते हैं, किंतु जो ही वो पुलिस पास में आती है हम लोग दौड़ते हैं और वो पीछे भागते हैं, जो ही वो पास में आते हैं तो वो फिसल जाते हैं। अरे मैंने कहा भाई

0: साहब आपकी व्यवस्था जल्दी करें नहीं तो मैं भी फिसल जाऊंगा। उन व्यक्तियों की समस्या हल नहीं हुई। उनमें से एक बेचारा सुबह सुबह नाली में बाहर बैठे हुआ था। सुनने में आपको जरूर अजीब लग रहा होगा, किंतु जब आप पूरी बात ये सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये कर्फ्यू, दंगे फसाद, इसमें आम गरीब आदमी कितना परेशान होता है कि वो बाहर नाली में बैठे ही था कि पुलिस आ गई। तेरा मालूम नहीं कर्फ्यू लगा है? साहब हमको क्या मालूम, इसमें भी कर्फ्यू लगा। गलत बहस कर रहा, मारो इसको लट, उठो मार डालो साहब। अबे तो ना उठे। जो ही व्यक्ति फुर्सत हुआ, पुलिस ने कहा चलो कहने कपड़े पहन के आ जाएं। अपने यहाँ का आदमी बड़ा होशियार, ऊपर चला गया, नीचे पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, ऊपर से झांका, क्या बात है, नीचे उतरो। नीचे नहीं उतरते, क्यों? नीचे कर्फ्यू लगा है।
1: और अब एक और हंसोड़, विनय जैन।
2: एक ऐसा आइटम सुनाने जा रहा हूँ जो कि व्यंग है। एक नेताजी जिनका की तगिया कलाम था, बात बात में कहा करते थे कि राजनीति हो गई। हर बात में वो कहा करते थे कि अरे साहब राजनीति हो गई। एक बार आप तमाम लोग भी जान लें, स्वर्ग और नरक में जाने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। जो लोग हम और आप अपनी अपनी जीवन लीला समाप्त करके ऊपर पहुँचते हैं, तो जो इंटरव्यू में पास होता है वो स्वर्ग में जाता है, जो फेल होता है वो नरक में जाता है। और जो इंटरव्यू लिया जाता है उसमें जो नेताजी हैं उनका नंबर 2-3 लोगों के बाद आने वाला है। इंटरव्यू चालू है, सबसे पहले पहले कैंडिडेट को बुलाया गया, इंटरव्यू चालू है। कैंडिडेट नंबर 1, नमस्ते साहब, कहाँ से आए?
3: साहब इंडिया से आए हैं।
2: हाँ इंडिया से आए हो, इंडिया की स्पेलिंग जानते हो?
3: साहब आई पहले आता है, फिर एन आता है, फिर डी आता है, फिर आई आता है, फिर ए आता है, INDIA, मतलब इंडिया।
2: बड़े शाबाश, स्वर्ग में जाओ।
3: दूसरे को बुलाया,
2: हाँ साहब कहाँ से?
3: फ्रॉम जापान।
2: जापान की स्पेलिंग जानते हो?
3: साहब JAPAN।
2: बड़े शाबाश, तुम भी स्वर्ग में जाओ। जैसे ही नेताजी का नंबर आया, चित्रगुप्त साहब ने फौरन सवाल किया,
3: बोले भैया तुम चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताओ।
2: अब चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग नेताजी मिस्टेक कर गए, बोले नरक में जाओ। नेताजी फौरन चिल्लाए, गुरु राजनीति हो गई, सबसे सरल पूछे, हमसे बस कठिन पूछे, इंटरव्यू एक बार फिर से होना चाहिए, नहीं तो हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवा देंगे। एक बार फिर से इंटरव्यू दोबारा करवाया गया, एक बार फिर से इंडिया वाले को बुलाया गया और पूछा गया, हाँ बोले साहब एक बात बताइए, ये दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? बोले साहब दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा भूकंप सन 1903 में आया था। बोले शाबाश, आप स्वर्ग में जाइए। दूसरे को बुलाया जापान वाले को, बोले साहब आप बताइए दक्षिण अफ्रीका के भूकंप में कितने लोग लगभग मारे गए थे? बोले साहब लगभग 19,998 लोग मारे गए थे। बोले शाबाश, आप भी स्वर्ग में जाओ। जैसे ही नेताजी का नंबर आया तो फौरन से सवाल किया गया, बोले साहब दक्षिण अफ्रीका के इस भूकंप में और ज्वालामुखी के फटने में जितने लोग मारे गए थे सबका नाम बताओ। नेताजी वहाँ भी मिस्टेक कर गए, बोले साहब नरक में जाओ। नेताजी फिर चिल्लाए कि गुरु राजनीति हो गई, साहब पॉलिटिक्स हो गई, सबसे सरल पूछा जाता है, हमसे ही कठिन सवाल किया जाता है, तो इसके लिए एक बार फिर से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग गए। लोगों ने यह तय किया कि साहब ठीक है इंटरव्यू फिर से होना चाहिए, लेकिन इस बार ऊपर से आदेश हो गया कि इस बार इंटरव्यू आखिरी होगा, बिल्कुल अंतिम होगा, फाइनल होगा और लिखित में होगा। राइटिंग में एग्जाम होगा, जो सही लिख के बताएगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो गलत लिखेगा वो नरक में जाएगा, इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होगा। नेताजी कहने लगे, हाउ? इंडिया वाले को बुलाया, बोले साहब लिख के बताइए, कौवा काँव काँव, कौवा काँव काँव। बोले शाबाश, स्वर्ग में जाओ। जापान वाले को बुलाया, बोले साहब लिखिए, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं। बोले शाबाश, बिल्कुल सही लिखा है, आप भी स्वर्ग में जाइए। जैसे ही नेताजी का नंबर आया, नेताजी को देखते ही से फौरन सवाल किया, बोले साहब आप लिखिए, घोड़ा

हाँ तो दोस्तों, हंसने हंसाने का यह सिलसिला अभी आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

0: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय के अंतर्गत धारावाहिक हंसना मना है की 13वीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 12:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पंजाब जाएंगे। इस दौरान वे जालंधर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्मित 74 अन्य रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री संत रविदास एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी अमृतसर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जोड़ेगी। भारत अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। वर्तमान में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन हैं। उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप ने कहा है कि यह समझौता वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने और नवाचार आधारित विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बलराम कृषि महोत्सव इस माह के दौरान इंदौर के अलावा धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा में भी आयोजित किया जाएगा। मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक 19 जुलाई को भोपाल जिले के जगदीश में होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि 20 से 24 जुलाई तक विधानसभा सत्र चलेगा। सत्र के दौरान 14 विधेयक लाए जाएंगे। प्रदेश भर में नशे से दूरी है जरूरी 2.2 जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है और मौसम विभाग के अनुसार आज अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, रीवा, मऊगंज, सतना समेत 20 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। एक बच्चों का है, लीजिए सुनिए महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

कार्यक्रम महिला सभा सुन रही सभी सखियों को सुनीता पाठक का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, हमारे देश का युवा हमारे देश का भविष्य है। नई सोच, नवाचार, नई ऊर्जा के साथ युवा शक्ति देश में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और इसलिए युवाओं को नवाचार की ओर प्रेरित करने के लिए उन्हें सुरक्षित माहौल, सही मार्गदर्शन और समस्याओं को नए नजरिए से देखने की स्वतंत्रता देना बेहद जरूरी है। उन्हें लीक से हटकर सोचने और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। घर परिवार में युवाओं को हर बात पर क्यों और कैसे ये पूछने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। उनकी जिज्ञासा ही

नए विचारों और आविष्कारों की नींव बनाती है। हमें बच्चों को समझाना चाहिए कि असफलता नवाचार की प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। हर गलती एक नया अनुभव और सीखने का अवसर प्रदान करती है। बच्चों को रटने के बजाय उन्हें वास्तविक जीवन की समस्याओं पर काम करने का मौका दें। सखियों, एक ऐसा माहौल बनाएं जहां उनके सभी विचारों का सम्मान हो, भले ही वे कितने भी अलग क्यों न हों। विचारों के मुक्त आदान प्रदान से ही नवाचार को बढ़ावा मिलता है। सखियों, युवाओं को अपने क्षेत्र के सफल उद्यमियों, वैज्ञानिकों और नव प्रवर्तकों से जुड़ने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। उनके अनुभव युवाओं को सही दिशा दिखाने में मदद करते हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही पहलों जैसे स्टार्टअप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन के बारे में भी जानकारी दें, जो उन्हें अपने विचारों को एक व्यवहारिक व्यवसाय में बदलने के लिए वित्तीय सहायता और मंच प्रदान करती है। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने देश के युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया के बड़े देशों में, बड़े संस्थानों में भारत के युवा अब नेतृत्व कर रहे हैं। शिक्षा, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने समर्पित प्रयासों से नए आयाम स्थापित कर सोच को साकार करने में युवा शक्ति हमारी जो है ना, वो साधुवाद की पात्र है। निरंतर प्रगति के अवसर प्राप्त कर सोपान चढ़ती युवा पीढ़ी हमें आश्वस्त कर रही है कि सुखद बदलाव की ताजगी निरंतर बनी रहेगी।

0: और सखियों, गीत भी आपने सुन लिया है और अपने मन की बात कहने के लिए एक विधा और भी हमें बहुत अच्छी लगती है, वो है कहानी। जी हाँ, हम आपके मन की बात को जानते हैं, इसीलिए आज एक कहानी लेकर आए हैं। कहानीकार हैं डॉक्टर चारू चित्रा। कहानी है बोनसाई की बगावत। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर चारू चित्रा से उनकी ये कहानी।
1: शालिनी ने बड़े आदमकद शीशे में अपने आप को देखा। उसे लगा कोई और ही उसके सामने खड़ा है। आजकल अपने आप को पहचानने में भी उसे मेहनत करनी पड़ती है। उसका गेहूं रंग सफेद हो चुका था, ऐसे ही जैसे दीवारों का पुराना पेंट कई परतों के बाद आखिरकार नए रंग में रंग ही जाता है। राज ने 2 दिन पहले आके पार्लर में सब तय कर दिया था। कैटलॉग में वो उंगली रखते गए थे और राज की पसंद के हिसाब से शालिनी संवार दी गई। शालिनी को अपने घर में रखी नृत्य मुद्रा में एक हथेली ऊपर कंधे के पास और दूसरी कूल्हे के पास रखे वो गुड़िया याद आ गई, जिसे कोई भी आता जाता छू देता और वो कमर और गर्दन को हिलाकर नाचना शुरू कर देता। दरवाजे से बाहर कदम निकालते ही हल्की चिनमिन सी बारिश की फुहार को चेहरा उठाकर उसने छूने की कोशिश की ही थी कि तभी ड्राइवर ने छाते को उसके सिर पर तानकर फुहार की नाजायज गुस्ताखी पर वहीं रोक लगा दी। उसे छूने का हक सिर्फ और सिर्फ राज को था। यहाँ तक कि पापा, मम्मी, भाई और छुटकी भी शादी के बाद उसे जोर से गले लगाने से हिचकिचाने लगे। एक शादी में शालिनी को देखने के बाद जब राज ने घर आकर उसका हाथ मांगा तो जैसे सब कृतार्थ हो उठे थे। सभी हैरान थे कि राज ने इस घर परिवार और शालिनी में ऐसा क्या देख लिया जो उसका दीवाना हो गया। राज ने शादी की पहली रात ही अपने पिछले कड़वे अनुभवों का जिक्र करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि अब उसे एक साधारण परिवार की घरेलू ठीक ठाक सी लड़की चाहिए जो उसके कद और ओहदे को समझ सके और उसके सर पर नाच ना सके। शालिनी की छोटी सी झोली जिसमें बड़े बड़े सपने लेकर वह आई थी एकदम ही खाली हो गई। राज उसके परिवार की उम्मीद पर पूरी तरह खरा उतरा। आर्थिक कठिनाई झेलने वाले भाई को उसने अपने साथ बिजनेस में जोड़ लिया। शालिनी को बिना किसी व्यवधान के कॉलेज जाए बिना ही MA की डिग्री मिल गई। पापा की लंबी बीमारी का अच्छा इलाज भी होने लग गया। एक ही काम रह गया था, छुटकी के लिए अच्छा परिवार और वर ढूंढने का। राज ने वो खोज भी शुरू कर दी थी। राज ठंडी बयार की तरह परिवार के हर सदस्य को सुकून दे रहा था, लेकिन ऐसा क्या था कि अजीब सूखापन शालिनी के आसपास घिर गया था, जैसे सब कुछ खिंचा भिचा सा हो। तरलता को तरस गई थी वह। कहा था शालिनी ने एक दिन पापा मम्मी से, मेरा मन नहीं लगा यहाँ, मुझे अपने घर वापस आना है। मम्मी ने घबराते हुए उसके हाथ को दबाया कि कहीं आवाज गलती से भी किसी तक पहुँच ना जाए। क्या कह रही है, क्या परेशानी हो सकती है तुझे यहाँ? इतना बड़ा बंगला, कारें, गहने, कपड़े, नौकर चाकर, कितना ध्यान रखता है राज तेरा। अफरात में जब मिल जाए तो भी दिमाग खराब ही हो जाता है, माँ दांत भीजते हुए बोली। मैं कारपेट नहीं हूँ जो बिछती रहूँ मैं इंसान, वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि पापा भी मम्मी का साथ देते हुए बोले, बेटा जी मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम्हें यहाँ क्या तकलीफ है। राज तुम्हें मारता पीटता है, बहुत ज्यादा शराब पीता है, ड्रग्स लेता है, कोई और है उसकी जिंदगी में, बोलो। शालिनी एकटक देखती रही पापा को, कहती भी तो क्या कह। बेटा जीवन एडजस्टमेंट का नाम है, शादी को समय ही कितना हुआ है अभी, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। तुम इतने साधारण परिवार से आई हो, वह भी तो तुम्हारे साथ एडजस्ट करता होगा। मानता हूँ थोड़ा डोमिनेटिंग है राज, लेकिन इतनी कम उम्र में क्या क्या नहीं कर लिया उसने। पापा थोड़े फिर रुके, कहा तू ना कहती थी कि मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, संभाल लूंगी सबको। अब इस परिवार का भविष्य तेरे साथ ही जुड़ा है बेटा। घर के सामने कार रुकने के साथ ही शालिनी

है, ये राज को हमेशा पता होता है। यंग एंटरप्रेन्योर का पुरस्कार यूं ही तो नहीं मिल गया था उसे। सबके सामने उसके हाथों को पकड़ता हुआ वह कह उठा, बेबी बहुत खूबसूरत लग रही। फिर धीरे से उसके कानों के पास आकर बेहद कड़े स्वर में वैसे ही मुस्कुराते हुए बोला, ये पल्ला क्यों लपेट रखा है, साड़ी का लुक ही नहीं आ रहा ढंग से। उधर से किसी की आवाज आई, नॉटी बॉय, ये क्या कानाफूसी चल रही है राज। इतने में मंत्री जी की कार के रुकते ही राज के साथ शालिनी भी उनके पैर छूने को झुकी तो मंत्री जी ने इत्मीनान से उसकी अनावृत पीठ पर ऊपर से नीचे तक हाथ फिराकर कुछ ज्यादा ही लंबा आशीर्वाद दे डाला। राज ने देखकर भी अनदेखा कर दिया और वो एक गिजगिजे जानवर को पूरी दोपहर पीठ पर लिए घूमती रही। राज और शालिनी की शादी की दूसरी एनिवर्सरी का केक कटा और राज ने ग्लास पर चम्मच बजाते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बेहद रोमांटिक अंदाज में शालिनी की ओर देखकर बोला, अपनी मल्लिका की नाजुक गर्दन के लिए एक छोटा सा तोहफा इस गुलाम की ओर से। उसके साथ ही शालिनी की गर्दन हीरो जड़े हार से सज गई। जोर से तालियां बजी और टू क्यूट, व्हाट अ लकी गर्ल, प्रेशियस, सो स्वीट, ट्रूली ब्लेस्ड जैसी आवाजें हवा में उछलने लगी। लेकिन इस सुख को शालिनी जी ही नहीं पा रही थी। यादों के बवंडर में उलझी हुई थी वो। दो सालों में पहली बार उसने राज से कोई तोहफा मांगा था। बड़े ही रोमांटिक अंदाज में, क्या चाहिए तुम्हें, कहते हुए राज ने उसे सीने से लगा लिया। राज, मैं कोचिंग करना चाहती हूँ, यूपीएससी का इम्तिहान देना चाहती हूँ। राज ने सीने से लगी शालिनी को थोड़ा पीछे करते हुए बोला, क्या रखा है इस सब में, पढ़ पढ़ कर अपना दिमाग खराब करोगी। तुम हैसियत नहीं देखती अपने पति की, छोटी सी बात पर मंत्री आकर खड़े हो जाते हैं घर में। फिर उसके उतरे चेहरे को देख राज ने खुद ही रास्ता निकाल लिया। अच्छा, तुम्हारा घर से बाहर निकलने का मन है ना, तो तुम समाज सेवा वगैरह कुछ कर लो, बल्कि अपना ही एक एनजीओ बना लेते हैं। राज, बचपन से इसी सपने को सींचा है मैंने और मुझे लगता है मैं कर अभी आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही राज का ठंडा स्वर सुनाई दिया। नहीं, यह तो नहीं हो पाएगा, घर में बहुत कुछ है करने को तुम्हारे पास। सख्त चेहरे के साथ बिना जवाब का इंतजार किए राज बाहर निकल लिया और शालिनी अपना वजूद बिस्तर के नीचे, कालीन की गर्द में, बर्तनों के सिंक में, अलमारियों और गुलदानों में ढूंढती फिरी। शालिनी की तंद्रा एक परिचित आवाज से टूटी। मशीनी ढंग से दी जाने वाली बधाइयों के बीच ये मंगल कामना कुछ अपनी सी लगी। अरे शेखर जी, आप कैसे हैं? आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया, वो भी फोन पर, कृतज्ञ हूँ मैं। आप नहीं जानते कितनी बड़ी प्रशंसक हूँ मैं आपकी। जाने कितने दिनों बाद वो अपने अंदर से फिर अपनी पुरानी शालिनी को खोज लाई थी। अपनी ही रॉ में खिलकती शालिनी शेखर को राज से मिलवाने को आगे बढ़ी। राज, ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं शेखर, इन्हें सुनने तो कॉलेज भी बंक करके मैं पहुंच जाती थी। ये सारे शब्द शालिनी के मन के अंदर ही रह गए। तब तक एक्सक्यूज मी कहता हुआ राज आगे बढ़ा और मुड़कर शालिनी को इशारे से बुलाया। राज की शिष्टता और मुस्कुराहट बरकरार थी, मगर क्रूर हुए थे तो वे थे उसके शब्द। उसने आहिस्ता से शालिनी को कहा, इसको किसने बुलाया है? शालिनी ने अधिकार से कहा, मैंने। मुस्कुराहट और शिष्टता पर तमतमाहट का आवरण पल भर को चढ़ा और फिर उसी रूप में वापस आकर राज बोला, रफा दफा करो उसे, कहीं से फिट हो रहा है वह इस पार्टी में। रुआंसी हो उठी शालिनी, लेकिन ऐसे कैसे, जैसे बुलाया है वैसे ही वापस भेजो और चेहरे की मुर्दानगी खत्म करो। कहते हुए राज की तमतमाहट पर शिष्टता का मुलम्मा फिर चढ़ चुका था। शालिनी ने रंगीन कागज में लिपटी किताब को मेज पर देखा और आंसुओं से धुंधली आंखों ने शेखर की अनुपस्थिति को भी महसूस कर लिया। शालिनी अपने अंतर्द्वंद से उबर भी नहीं पाई थी कि तभी राज की आवाज सुनाई दी, क्या कर रही हो, आओ जान, तुम्हारे बिना अधूरा हूं मैं। पलों में भाव भंगिमा मूड बदल लेने की राज की है कला आज 2 बरस बाद भी शालिनी को अचंभित कर उठती है। राज लॉन में अपने पसंदीदा हिस्से में खड़ा था, जहां जब तब दस्ताने चढ़ा कैंची कटर तांबे की तारे लेकर कई तरह के खेल और प्रयोग वह पौधों पर किया करता है और छोटे पेड़ों की एक दुनिया उसने वहां बसा ली है। छोटे छोटे बरगद, पाइन, जापानी लाल मेपल, जूनिपर, चीनी एल्म, फिकस, एडीनियम, यही नहीं संतरे, नारंगी, अमरूद से लदे फदे मिनिएचर्स जाने कितने ही विराट पेड़ों के घमंड को तोड़ते थे। लोग मंत्रमुग्ध थे राज की इस कला पर और राज किसी विशेषज्ञ की तरह बड़े ही मनोयोग से सबको बोनजाई बनाने की बारीकियां समझा रहा था कि तभी सिन्हा साहब की आवाज ने व्यवधान डाल दिया। तांबे की तारों से लिपटे एक बोनजाई को सबको दिखाते हुए बोले, क्यों राज, तुम्हें नहीं लगता कि ये प्रकृति के खिलाफ है? किसी की भी नेचुरल ग्रोथ को ऐसे क्यों रोकना है? टॉर्चर कर रहे हो तुम इनके साथ, इन्हें तारों से बांधना, काटना, फैलने से रोकना, बरगद पीपल जैसे विशाल पेड़ों को जरा सी ट्रे भर जगह देते हो, उन्हें प्राकृतिक रूप से बढ़ने दो भाई। राज को विरोध पसंद नहीं है, अपने को जज्ब करता हुआ बोला, अरे साहब क्या कहते हैं, इटली के बोनजाई म्यूजियम में 1000 साल पुराना पेड़ रखा है, टोक्यो के इंपीरियल पैलेस में 17वीं शताब्दी का बोनजाई देख तो मैं दीवाना हो गया। जब इतनी लंबी उम्र तक जीते हैं, बाकायदा उसी तरह फल फूल देते हैं जैसे दूसरे पेड़ देते हैं, खूबसूरती तो देखिए इनकी, तो कैसे आप दावा करते हैं कि इनके साथ टॉर्चर हो रहा है? बस तकनीक का कमाल है, ग्राफ्टिंग और प्र्यूनिंग सही होनी चाहिए। हाँ, तारों से बांधने में कुछ छुटपुट निशान पड़ जाते हैं, एस्थेटिकली जरा अच्छे नहीं लगते, तो उनके भी तरीके हैं ठीक करने के। सौंदर्य सिर्फ खजुराहो, अजंता, एलोरा की मूर्तियों और पेंटिंग्स में नहीं है जनाब, इस कटाई छटाई और उससे उपजे बौनेपन में भी एक परिष्कृत सौंदर्य शास्त्र है। बहुत देर से चुप खड़ी शालिनी एकदम चुनौती दे बैठी, इतनी मेहनत के बाद भी अगर
कोई बोन

कोशिश करते रहें, अभ्यास करते रहें, तो हमारी ये जकड़न बहुत हद तक दूर हो सकती है। इससे सर्वाइकल और मोबाइल नेक में आराम मिलता है। कंधों में जमा टेंशन रिलीज करने के लिए लंबी सांस लेकर दोनों कंधों को कान तक उचकाना चाहिए और सांस छोड़ते हुए झटके से नीचे गिराने की क्रिया 5 से 7 बार दोहराना चाहिए। सखियों, कुर्सी पर बैठकर कटी चक्रासन भी किया जा सकता है। इसे करने के लिए पैर थोड़ा खोल कर बैठो, हाथों को कंधे की सीध में फैलाओ, सांस छोड़ते हुए कमर से दाएं घूमो, दायां हाथ कुर्सी के पीछे, बायां हाथ दाएं घुटने पर। इसी अवस्था में 15 सेकंड तक रुकने के बाद सांस लेते हुए सामने आए और फिर बाएं तरफ दोहराएं। ये आसन लचीलेपन, पाचन और कमर को सही रखता है। कार्पल टनल, माउस वाली जकड़न से बचने के लिए मुट्ठी बांधकर दोनों कलाइयां 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। पैरों में सूजन, सुन्न होने को रोकने के लिए एड़ियां जमीन पर रखकर पंजों को 15 बार ऊपर नीचे करो, फिर पंजे हिलाकर एड़ियां उठाएं। सुस्ती भगाने के लिए और जकड़न कम करने के लिए सीधे बैठकर सांस भरते हुए दायां घुटना छाती की तरफ उठाओ, हाथ से घुटने को पकड़कर 10 सेकंड खिंचाव देना चाहिए, फिर बाएं पैर से इसी तरह दोहराना चाहिए। एंग्जाइटी को कम और दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए 2 मिनट तक अनुलोम विलोम को भी अपनाना चाहिए। इस प्रक्रिया को 5 मिनट रूटीन में रखना चाहिए। ये प्रोडक्टिविटी को 15% तक बढ़ाता है और हम ऊर्जा से भरे हुए अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं। हमारी कुर्सी की हमारी योगा मैट बन जाती है। हमारी फुर्ती और इच्छा शक्ति को जागृत रखने के लिए समय ना मिलने का बहाना अब नहीं चलेगा। योग अपनाइए, कार्यस्थल पर अपनाइए और खुद को स्वस्थ रखिए, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी सभी सखियां हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: रही है आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे फूलचंद अहिरवार और साथियों के गाए लोक भजन।

सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे मेघा बुधेलिया के गाए गीत।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है फिल्म बीवी हो तो ऐसी सी, अनुराधा पौडवाल की आवाज़, साथ में मोहम्मद अजीज़, समीर का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

पंकज दास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में अब हम आपको सुनवा रहे हैं दयावान फिल्म का ये नगमा, अजीज़ कैसी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल के गाए इस नगमे के साथ ही आज का फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को पंजाब दौरे पर जाएंगे। वे सबसे पहले चंडीगढ़ स्थित पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचेंगे, जहां विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे जालंधर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्मित 74 अन्य रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। श्री मोदी संत रविदास एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जो अमृतसर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जोड़ेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव लखन पटेल से पशुपालन विभाग वापस ले लिया गया है। ये विभाग अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने पास रखेंगे। इसके बाद लखन पटेल अब केवल आनंद विभाग के मंत्री रह गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। लखन पटेल पथरिया विधानसभा से विधायक हैं। साल 2023 में सरकार के गठन के साथ लखन पटेल को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पशुपालन और डेयरी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर से अबूधाबी के लिए प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। ये उड़ान टाटा समूह की विमानन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित की जाएगी और सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी। अभी तक इंदौर से अबूधाबी जाने के लिए यात्रियों को दिल्ली या मुंबई होकर जाना पड़ता था, जिसमें 7 से 8 घंटे लगते थे। नई उड़ान

से यह सफर सिर्फ 3 घंटे 15 मिनट में पूरा हो सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर में बलराम कृषि महोत्सव का भी शुभारंभ करेंगे। यह महोत्सव लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी परिसर में आयोजित किया जा रहा है।

0: प्रदेश के पवेलियन में पीएम मित्रा पार्क, टेक्सटाइल इको सिस्टम और निवेश अनुकूल नीतियों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने देश प्रदेश के संभावित निवेशकों से विस्तृत चर्चा कर उन्हें प्रदेश की औद्योगिक संभावनाओं से अवगत कराया। प्रदेश ने अन्य 6 पीएम मित्र राज्यों के साथ एक राउंड टेबल सत्र में भी भागीदारी की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज रात अशोकनगर पहुंचेंगे। कल से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। कल वे तार वाले बालाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद जन सुनवाई करेंगे और स्वसहायता समूह की महिलाओं से संवाद भी करेंगे। शाम को सिमरखेड़ी में विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। वहीं 17 जुलाई को कलेक्ट्रेट में DVMC की बैठक के बाद श्री सिंधिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसी दिन अशोकनगर रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार का उद्घाटन और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से गर्मी ने फिर से जोर पकड़ लिया है। राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। पिछले 6 दिनों से प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश दर्ज नहीं की गई है। अगले 5 दिनों तक भी भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। अब तक प्रदेश में 9.5 इंच बारिश हुई है, जबकि इस अवधि तक सामान्य वर्षा 10.5 इंच मानी जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज इंदौर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बालाघाट सहित 21 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पीआईबी भोपाल द्वारा देश के समग्र विकास और साल 2047 तक भारत को एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के संकल्प को लेकर कल रीवा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगर मालवा जिले में कल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल संचालकों, दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के बारे में जानकारी दी गई। झाबुआ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर आयोजित बलराम कृषि महोत्सव के अंतर्गत जिले में 19 जुलाई को जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शिवपुरी की पुलिस अधीक्षक यांगचिन डोलकर भूटिया ने कल खुद बैराड़ थाने पर आयोजित ग्राम चौपाल में लोगों से जनसंवाद किया। दमोह लोकसभा क्षेत्र के सांसद राहुल सिंह लोधी ने छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा स्थित केंद्रीय विद्यालय का बीते रोज निरीक्षण किया। नर्मदापुरम में कृषक कल्याण वर्ष के तहत जिला प्रशासन किसानों की कृषि लागत कम करने, आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दे रहा है। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना। अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा।

0: अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रुपये से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयाँ, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।
2: हमने टारगेट रखा है, वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है। उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे, सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
3: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
0: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
3: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए

0: सबको सोचना हो।
1: भारत ने आग्रह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
2: The Security Council has been ineffective.
3: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
2: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमरीका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 12 बजे तक 1,83,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी।

0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर से अबुधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में चार दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रीवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल TTD की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को यह भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में DSP मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का पहला गीत हमने लिया है अमृत फिल्म से। मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें हैं। आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार। सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, बेबी सौती माखीजा, माही पूजा छुटकी, शरद डोडवानी और पूरे माखीजा परिवार ने। तो आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला नगमा।

0: गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जितेंद्र विरक, मीका विरक, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, आप सबने फरमाइश की है ईश्वर फिल्म के इस गीत की, जिसे आवाज़ें दी हैं नितिन मुकेश और कविता कृष्णमूर्ति ने। अनजान का गीत है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।
1: चार सप्तक मंदिर सप्तक।

0: जी, तुम्हारे आने से तो सब कुछ सुरीला हो गया।
1: तुम मेरे आने से पहले भी सही गा रहे थे रागधानी सा नी सा ग सा ग सा नी प पनी पनी सा नी सा नी सा ग सा ग सा ग म ग म ग म प म प म पनी पनी पनी सा नी पनी प म ग म ग सा ग सा नी पनी पनी सा।

गंगा जमुना सरस्वती। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत इस फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़, इंदी बर का गीत और अनु मलिक का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और समरीत पंचोलिया, कवर कॉलोनी बड़भा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली।

प्रेम प्रतिज्ञा। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा। बप्पी लहरी और आशा भोंसले की आवाज़ें हैं। गीत इंदिवर का और संगीत बप्पी लहरी का। इस गीत को पसंद किया है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। जयराजपुर राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मिन और प्रयागराज भट्ट ने।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:58 होने को है। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को पंजाब दौरे पर जाएंगे। वे सबसे पहले चंडीगढ़ स्थित पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचेंगे, जहां विभिन्न बुनियादी ढांचा सुविधा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व युवा कौशल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि युवाओं की प्रतिभा, कौशल, नवाचार और उद्यमिता ही विकसित भारत और समृद्ध मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रदेश में मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है। राज्य मंत्री लखन पटेल से पशुपालन विभाग वापस ले लिया गया है। ये विभाग अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने पास रखेंगे। इसके बाद लखन पटेल अब केवल आनंद विभाग के मंत्री रह गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर से अबूधाबी के लिए प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। ये उड़ान टाटा समूह की विमानन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित की जाएगी और सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी। प्रदेश में आज 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा शुरू किए गए इस विशेष जन जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से बचाना और प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है। और मौसम विभाग के मुताबिक आज इंदौर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बालाघाट सहित 21 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर, 6:30 और रात 8:15। 6:00 प्रसारित होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे मशरूम उत्पादन तकनीक, कम लागत अधिक मुनाफा, इस विषय पर भेंटवार्ता, बुंदेली समाचार और साथ ही लोक रंग। सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 8:00। रात 8:15 भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर केंद्रित एक कार्यक्रम पूर्वापलोकन कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 8:15 आकाशवाणी दिल्ली से, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम 9:30 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। 10:00 सुनिएगा नाटक अलिफ लैला की कहानी, लेखक डॉक्टर हामिद हुसैन, प्रस्तुतकर्ता शाकिर अली। 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा माधुरी ओक का गायन, राग होगा काफ़ी कानड़ा। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही GTH के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव 188.32 मीटर पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। DTH पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। लोक संगीत में आप सुनेंगे

फूलचंद अहिरवार और साथियों के गाए इस लोक भजन के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान था। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। डीजे सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत में हम आपको सुनवाएंगे मेघा बुधोलिया के गाए गीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

मेघा बधोलिया के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान था। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। पहला गीत वारिस फिल्म से लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ें हैं। वर्मा मलिक का गीत और उत्तम जगदीश का संगीत।

अभिजीत और साथियों की आवाज़ों में अब सुनिए बागी फिल्म का ये नगमा। समीर के लिखे गीत की धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

और लीजिए अब सुनिए आशिकी फिल्म का ये गीत, कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें हैं, समीर का गीत और नदीम शबण का संगीत।

पति पत्नी और तवायफ कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए। इस फिल्म से आवाज़ सलमा आगे, सलमा का और मोहम्मद अजीज़ की, आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

इसके साथ ही चित्र पर संगीत संपन्न हुआ। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। 3:58 हुए, दीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में स्वश्रुतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। आज विश्व युवा कौशल दिवस है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि आज का युग ज्ञान, तकनीक और कौशल का है। विकसित भारत के निर्माण का संकल्प तभी साकार होगा जब हमारे युवा हुनरमंद, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र सुदृढ़ीकरण अवलोकन और संवाद कार्यक्रम में सहभागिता कर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को हित लाभ और मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये जन केंद्रित समझौता है जिससे सभी को लाभ पहुंचेगा। प्रदेश में आज 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशे से है दूरी जरूरी 2.2 अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए इस विशेष जन जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से बचाना और प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है। और भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में जनजातीय चित्रकार की प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इसमें भील जनजाति चित्रकार सुनीता परमार के चित्रों की प्रदर्शनी का संयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी 30 जुलाई तक रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। लीजिए सुनिए उर्दू प्रोग्राम कहकशां।

दोस्तों अभी आप रेखा विशाल भारद्वाज की आवाज में गजल समाप्त फरमा रहे थे और कलाम था बशीर बद्र साहब का। बशीर बद्र उर्दू अदब के वो मुनफरिद मुअम्मार हैं जिन्होंने गजल को रिवायती गुल बुलबुल और जुल्फ और रुखसार के हिसार से निकाल कर एक नई जिंदगी बख्शी। उन्होंने गजल में ऐसे लफ्जों को दाखिल किया जिन्हें पहले गैर शायराना समझा जाता था, जैसे पुलोवर, रिबन, रेल और ग्लास। डॉक्टर गोपी चंद नारंग ने उनके फन को सराहते हुए ठीक ही कहा था, बशीर बद्र ने पोएट्री में नई बस्तियां आबाद की हैं। उनकी तख्लीकात जैसे इकाई, इमेज, आमद, आस, आसमान, आहट, गजल के जदीद सफर के वो संगे मील हैं जिन्होंने उर्दू गजल और उर्दू दाद तबके को भी अपना गुरवेदा बना लिया। उनकी इसी अदबी खदमात के एतराफ में अदबी और सकाफती इदारों ने उन्हें मुतादित एजाजात और अवार्ड से नवाजा। उनमें से उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी और बिहार उर्दू एकेडमी के एजाजात के अलावा हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्मश्री जैसे आला अवार्ड से नवाजा और 1999 में उनके शेरी मजमुए आस पर उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड भी दिया गया। उनका विजन इतना दूरस्थ था कि उन्होंने 1984 में ही अपनी किताब आमद में 2035 के कारीन के नाम एक खत लिखा जिसमें ये दावा किया कि उनका उसलूब आने वाले अहद की गजल की बुनियाद बनेगा। उनके बदले हुए लहजे की एक झलक उनके अशार में मुलाहिजा कीजिए। कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गजल का लहजा नया नया, ना कहा हुआ ना सुना हुआ। बशीर बद्र ने इंसानी रिश्तों की नफसियात को जिस तरह समझा वो उनके अशार से जाहिर है जो आज ज़बाने ज़ादे आम है, जैसे कि ये शेर, ये ज़ाफ़रानी पुलोवर उसी का हिस्सा है जो कोई दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे। और जिंदगी की जद्दोजहद को इस तरह बयान करते हैं इस शेर में, देखिए, रेल की पटरी पर मेरी शोहरत रख दी, बस के पहियों से रोजी रोटी बांधी। दोस्तों हम बशीर बद्र के बारे में और मजीद मालूमात हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले पेश है ये गजल मुश्ताक हुसैन की आवाज में और कलाम है बशीर बद्र साहब का।

दोस्तों अभी आप बिहारी लाल राव की आवाज़ में गजल समात फरमा रहे थे और कलाम था बशीर बद्र साहब का। दोस्तों सफर जिंदगी के आखिरी तवील अयाम डॉक्टर बशीर बद्र ने झीलों के शहर भोपाल में अपनी दूसरी शरीक हयात डॉक्टर राहत सुल्तान के साथ गुजारे। वक्त का सितम देखें कि वो शायर जिसने करोड़ों दिलों को लफ्जों की रोशनी दी, आखिरी बरसों में अल्जाइमर जैसे मर्ज का शिकार होकर अपनी ही याददाश्त खो बैठा। उन्हें ये तक याद ना रहा कि कभी उनकी मौजूदगी मुशायरों की कामयाबी की जमानत समझी जाती थी। बिलाखिर 28 मई 2026 को उर्दू गजल का ये एहतसास शायर हमेशा के लिए खामोश हो गया। बशीर बद्र जिस्मानी तौर पर हम में नहीं है, लेकिन उनका ये फलसफा कि मोहब्बत में एहतियात जरूरी है, हमें हमेशा याद रहेगा। जैसा कि उनका ये शेर, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। उनकी शायरी इंसानी रिश्तों की नज़ाकत को कुछ इस तरह इस शेर में बयान करते हुए दिखाई देती है। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। वो अपनी यादें हमारे पास छोड़ गए हैं, जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आज बशीर बद्र की याद में ये प्रोग्राम उनके इस शेर पर खत्म करते हैं जो उनकी जिंदगी और फन का निचोड़ है। आज एक और बरस बीत गया उसके बगैर, जिसके होते हुए होते थे जमाने मेरे। बशीर बद्र की जिंदगी और फन पर मबनी ये खुसूसी पेशकश यहाँ इख्तिताम पजीर होती है। उनके लफ्ज हमेशा जिंदा रहेंगे क्योंकि सच्ची शायरी कभी नहीं मरती। हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय और तजावीज हमें जरूर रसाल करें क्योंकि आपकी आवाज कहकशा की रोशनी है। हमारा पता नोट फरमाइए, उर्दू प्रोग्राम कहकशा, मार्फत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी, शामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462002। उर्दू प्रोग्राम कहकशा को बरोज मंगल रात 9:30 बजे सुनना ना भूलें। अब अपने दोस्त शीरिन खान को दीजिए इजाजत। आदाब।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे सुरीली तान।

डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए संग्रहालय के अंतर्गत धारावाहिक हंसना मना है का 13वां भाग।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी। राजेश मिश्रा, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं।
1: ग्रामीण अंचल में और चाहे शहर में स्कूली शिक्षा की ओर बहुत ध्यान दिया जा रहा है और काफी अंतर हुआ है, फिर भी हम हास्य व्यंग कलाकार उसमें कुछ खोजने को और अपनी कुछ कल्पनाएं आप तक पेश करते हैं जो नहीं भी दिखता है तो हम लोग सोचते हैं कि ऐसा होता होगा या ऐसा होना चाहिए। तो लीजिए, एक स्कूल की ओर आपको ले चल रहे हैं कि स्कूल में गुरुजी ने विद्यार्थी से कहा, बेटा ये बताओ कि जब मैं घर से पैदल स्कूल जाता हूँ तो मुझको 30 मिनट लगता है, आधा घंटा, और जब मैं किसी की साइकिल में जाता हूँ तो मुझको 20 मिनट लगते हैं। कितना लगता है? 20 मिनट। और जब मैं स्कूटर में जाता हूँ किसी की बैठकर तो मुझको 10 मिनट लगते हैं। तो बेटा मेरी उम्र बताओ कि मेरी उम्र कितनी है? एक छात्र खड़ा हुआ,
2: पांडा जी आपकी उम्र ना 50 साल।
1: देखो कितना होशियार बच्चा है, इतने बच्चों में कोई भी बच्चा ये नहीं बता पाया कि जब मैं पैदल आता हूँ स्कूल आधा घंटा, जब मैं साइकिल में आता हूँ 20 मिनट, स्कूटर में 10 मिनट, तो गुरुजी की उम्र 50 साल। ये कैसे बताओ, बताओ बच्चों, उनको बताओ कैसे निकाला तुम?
2: पंडित जी हमारे घर के बाजू में एक लड़का रहता है, उसकी उम्र 25 साल है, वो आधा पागल है।
3: गले बैठ जाओ बेवकूफ, कभी जीवन में पास नहीं होगे। दूसरी एक और बड़ी समस्या सामने आई उस गांव में कि एक बच्चे को, बाकी बच्चों को तो बहुत प्यार से नहीं बोलते थे, मारपीट करते रहते थे, किंतु एक बच्चे को ज्यादा ही प्यार करते थे। बेटा कैसे हो?
2: अच्छा पंडित जी।
3: अपनी अम्मा से बोलना, पंडित जी ने राम राम पहुंचाइए, नमस्ते।

0: ठीक है।
1: बच्चा हमेशा जाकर अपने घर में मैसेज दे देता था कि माँ, माँ साहब ने आपको नमस्ते बोला है, राम राम पहुँचाई। अब चूंकि बच्चा पढ़ रहा था और उनको आशय ये समझ में नहीं आता था कि ये नमस्ते का क्या आशय, ये क्रम चलता रहा। एक दिन उनने अपने पति को बताया कि लोग अगर सुनेंगे तो बड़ा खराब लगेगा, ये नमस्ते क्यों पहुँचाते हैं इनके गुरुजी। तो एक दिन उनने पति पत्नी ने प्लान बना लिया और आपस में, और जो ही बच्चे ने गुरुजी से बोला, गुरुजी प्रणाम, बेटा अपनी माताजी से नमस्ते बोल दिया था?
2: हाँ बोल दिया था, माताजी के नहीं थी कि पिताजी दूसरे शहर जा रहे हैं, आपको बुलाया है।
1: माँ साहब बढ़िया खुश घर पहुँचे। घर पहुँचे इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया, उनके शिष्य की माँ बोली,
2: लगता है कि वो ये आ गए हैं।
1: तो क्या करना है?
2: करना कुछ नहीं, आप हमारी साड़ी पहन लो, मैं बोल दूंगी कि पड़ोस के आए हैं, ये आटा पीसने, जो घर में पुरानी चक्की इसमें आटा पीसना, गेहूँ पीसना है, तो वो आए हुए हैं, कोई चिंता की बात नहीं।
1: मरता क्या ना करता, माँ साहब ने जल्दी जल्दी जल्दी धोती पहन के अपना बैठ गए गेहूँ पीसने के लिए। और जो ही आए उनके पापा, बात की और इशारा किया, वो चले गए। जब वो चले गए तो माँ साहब ने जल्दी से धोती उतारी, अपना भागे। भागने के बाद एक दिन बच्चे ने बोला,
2: माँ साहब, माँ पूछ रही थी बहुत दिन से आपने नमस्ते नहीं पहुँचाई है।
1: तो माँ साहब बोले, क्यों, तुम्हारे घर का आटा फिर खत्म हो गया क्या? एक डॉक्टर साहब थे और जैसा उनकी पत्नी भी डॉक्टर, पति पत्नी दोनों। एक दिन पत्नी ने शिकायत की पति से और कहने लगी,
2: सुनिए
1: क्या बात है,
2: है ना, आप हॉस्पिटल चले जाते हो ना, सामने हॉस्टल में लड़के रहते हैं ना, दिन के 12 बजते मेरे को देखना चालू कर देते, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप इनको मना कर सकते हैं क्या?
1: बोले, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मना करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं, मैं अब भी जाता हूँ। हॉस्टल पहुँचे, हॉस्टल में लड़के रहते, कहने, देखिए आप लोग यहाँ ढंग से रहिए, क्यों क्या बात है, क्या बात है, दिन के 12 बजते आप लोग मेरी पत्नी को देखना चालू कर देते, ढंग है आप लोगों का, आप लोग नौजवान हैं, अच्छी बात नहीं। बोले, डॉक्टर साहब पहले अपने घर के सामने का बोर्ड अलग करिए, क्यों क्या बात है, क्या बात है, देखिए क्या लिखा, क्या लिखा, डॉक्टर सुधा रानी, देखने का समय 12 से 2। छोटी छोटी बातें बड़ी मजेदार हो जाती हैं। मैं कभी घड़ी नहीं पहनता हूं। मेरे से किसी ने पूछा कि राजेश मिश्रा आप घड़ी क्यों नहीं पहनते, मैंने कहा मैं घड़ी इसलिए नहीं पहनता हूं कि हर आधे घंटे में हिंदुस्तान में लोग समय अपने आप बताते हैं। अब आप सोच रहे हो कैसे बताते हैं, आप कहीं विलंब से पहुंचे तो, क्या यार भैया अभी आ रहे हो, 2:30 बज रहे हैं यार। ये हम और आपके बीच में अपने आप जो हास्य मिलता है, हास्य कलाकारों को वो ऐसे ही मिलता है कि हम जो बोलते हैं, आप जो बोलते हैं, वही सुन रहे हैं, वही समझ रहे हैं। अब इसमें उन्होंने कहा, अच्छा 2:30 बज रहा है यार, तुम गजब कर दिया, थोड़ी देर हो गया। जब काफी देर अपन बैठ जाते हैं तो फिर कोई कहेगा, चलो यार भैया 3 बज गया। तो अपन को पता लग जाता 3 बज गया, काय को अपन इतनी बड़ा वजन टांग कर चलें, और समय की कीमत अगर अपन ने समझी होती तो अपन यहाँ ये हास्य कलाकारी क्यों करते। फिर भी एक भाई साहब से मैंने पूछा कि भाई साहब कितना बजा है, कहले 10 मिनट। मैंने सोचा कि चलो भाई 10 मिनट, मैं समझ गया, अंदर ही अंदर मैं खुश हो गया। व्यक्ति की आदत होती है कि अगर उसको कोई पहचान रहा है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसको लगता है कि मैं बहुत, मतलब मुझे ये खुशी हुई कि यार ये व्यक्ति जान गया कि मैं हास्य कलाकार हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने पूछा कि प्रोग्राम चालू होना है, भैया कितना बज गया? बोले 20 मिनट। मैंने कहा यार लगता है ये भी हास्य कलाकार होगा, हमको छेड़ने के चक्कर में है, तो मुझे फिर बुरा नहीं लगा। थोड़ी देर बाद फिर मैंने कहा अब प्रोग्राम शुरू कराया जाए। मैंने, भाई साहब टाइम कितना होगा? 30 मिनट। हमने, देखो यार मैं हास्य कलाकार जरूर हूँ किंतु मुझे गुस्सा भी आ जाती है, कहें क्यों क्या बात है? अरे आप लगे हो बच के 10 मिनट, बच के 20 मिनट, बच के 30 मिनट, बताओ ना कितने बज। कहें भाई साहब मेरी गलती नहीं है, मेरी घड़ी का छोटा कांटा टूट गया है। बड़ा कांटा भर है वो घूम रहा है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि बच के 20 मिनट, बच के 30 मिनट, बच के 40। मैं आप नाराज क्यों हो रहे? ये हास्य हमारे आपके बीच में मिल जाते हैं। कभी किसी का ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर को अगर आप एकदम, कभी कभी ऐसा माहौल आता कि लगातार ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर, अब उसको अगर आप अधूरी बात करते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे आदमी दुनिया से चला गया हो, और वो बात मैच भी करती जाती है। आप उसके घर भी बैठाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वाकई हो गया। जैसे उन्होंने कहा काव्या राजेश मिश्रा नहीं दिख रहे, वो तो गए। गए कब? लो आपको नहीं मालूम? सही में नहीं मालूम? अरे नहीं भगवान का सब बिल्कुल नहीं मालूम यार, कैसे का अब? अरे यार आज को समय कोई भरोसा है? हैं आर्डर आ गो चले गए। अरे हमें तो पता ही नहीं, दो पर घर पे, घर पे माता जी वगैरह है ना? अच्छा अच्छा, अब माता जी के पास पहुंच। अब व्यक्ति इतना झूठा हो गया है कि बाहर तक तो कहो हंसता रहे, किंतु अगर किसी मरीज को देखने जाए तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते चेहरा बना लेगा, इतना बना लेगा कि इनसे बड़ा दुखी कोई है ही नहीं दुनिया में। किसी के यहाँ गमी में जाएगा तो बाहर तक हंसता रहेगा, घर के अंदर पहुंचते कहो गया था भैया, अरे कैसी अचानक, अरे यार भैया, अरे राम राम राम राम, कितने बच्चे हैं भैया? 2 बच्चे। ओहो हो मिसेज, अब मिसेज क्या 2 होंगी क्या? इतने तो गंभीर मत बनो, जबरन के नाटक इतना झूठ भरे तो नहीं करोगे, एकदम पूछ बैठे कि मिसेज, अरे मिसेज भी तो एक ही होगी। चलो ये हो गया। अब यहाँ ट्रांसफर वाले उसमें आदमी बैठने गया, अब वो गया, अब देखिए संयोग बस, माता जी हाँ बेटा आओ, कहाँ है आज सुना हमें तो पता ही नहीं रहा। हाँ भैया हमें भी तो खुद ही अच्छा नहीं लग रहा, भैया नहीं है तो बिल्कुल इतना खराब लग रहा, हमें ऐसा लग रहा खाने की इच्छा नहीं होती, बिल्कुल ऐसा करता था आते ही साथ, अम्मा ए अम्मा तुम्हारे लाले सेव ले आए, तुम्हारे लाले अंगूर ले आए, आवाज है नहीं, ऐसा सूना लग रहा बिल्कुल। नहीं तो अम्मा उसमें क्या कर सकते बता, नहीं करने को तो अब आप लोग नेता आदमी हो, कुछ कर सकते? अम्मा हम लोग नेता हैं, नीचे चलती ऊपर नहीं चल पाती हम लोगों की। अब वो ऊपर में उनको ये लग रहा है कि दिल्ली की बात कर रहे हैं, वो ऊपर कहले अम्मा हम लोगों की तो नीचे ही चलती है, ऊपर तो चलती नहीं। हाँ बेटा ऊपर की पहुंच तो बड़ी अजीब ही होती है, किंतु अब चलो अब क्या करो, हम इंतजार कर रहे हैं उनका। अब पूरी विधा जो थी वो पूरी बदल गई, आदमी ये सोच रहा है कि वो ऊपर चले गए, वो ये सोच रहे हैं कि इनका ट्रांसफर हो गया। कभी किसी के अस्पताल में देखने जाओ आप, ये हास्य व्यंग आपको कहीं पढ़ने नहीं मिलेगा, ये आपके समाज में मिलेगा। आप किसी को अस्पताल में देखने जाओ और मान लो वो डिस्चार्ज हो गया है, तो आपने काउंटर में पूछा भाई साहब राजेश मिश्रा, हाँ वो तो गए कब? 1 घंटा पहले। अरे राम राम राम राम, ओहो हो मट्टी कब जाएगी? नहीं नहीं मरे नहीं है यार, नहीं नहीं आप बोले ना गए, मतलब हॉस्पिटल से गए यार भैया। कभी आप अचानक घर में फोन करें, हेलो
2: हाँ
1: देखो यार मेरे को पासपोर्ट फोटो की जरूरत है, तो मैं भेज रहा हूँ चपरासी को, उसको पासपोर्ट फोटो दे देना।
2: हाँ ठीक है।
1: अब आप इंतजार करो पासपोर्ट फोटो का, अगर आपकी पत्नी को पासपोर्ट फोटो नहीं मिलती है तो तुरंत ग्रुप फोटो में से काट के पासपोर्ट बना के भेज देती। फिर आपने फोन लगाया, हेलो तुमने क्या फोटो भेज दी यार, क्या पेपर में देना है, गमी वाला समाचार देना है क्या कि राजेश मिश्रा नहीं रहे, ये तो इस टाइप की फोटो लग रही है।
2: नहीं तो आपने बोला ना अर्जेंट चाहिए,
1: अरे इतनी अर्जेंट नहीं चाहिए थी कि तुम ग्रुप में से काट के दे दो। हम और आपके बीच में ये हास्य हमेशा मिलता रहता है, हंसना मना है, किंतु आप खोजिए।

0: आप बस में जा रहे हैं तो वहां हास्य मिल जाता है, आपके बाजू में कोई बैठा हुआ है और आप उसको लगातार देखिए, अब एक व्यक्ति एक को देखा जा रहा, अब उसको शर्म लगे कि ये व्यक्ति मुझे क्यों देख रहा, थोड़ी देर इधर उधर देखता रहा, फिर उसने कहा भाई साहब क्या हो गया, आप एक घंटे से बैठे हो मुझे लगातार देखे जा रहे हो, बात क्या? नहीं भाई साहब कोई बात नहीं, नहीं नहीं कोई बात तो क्या है कि आपका और मेरी पत्नी का चेहरा बहुत मिलता है। कहने फालतू बात नहीं करना, नहीं नहीं कहने सही बोल रहा हूँ भैया, बिल्कुल गजब बताया आपको, अब क्या बोले यार, हम एक घंटे से देख रहे हैं आपको और एक घंटे से हम मतलब क्या बोले यार, बिल्कुल डिक्टू। कहने फालतू बात नहीं करना, मैं फेंक दूंगा तुमको बाहर, समझ गए? बोल रहे हैं भाई साहब मैं फालतू नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सिर्फ मूछों का अंतर है, नहीं तो तुम बिल्कुल हमारी औरत के समान लगते हो। तो तुरंत वो व्यक्ति बोला, कहने मेरी मूछें कहाँ है? कहने मेरी औरत की मूछें हैं ना भैया।
1: हंसना मना है,
2: हंसना मना है,
1: अरे हंसना मना है,
2: हंसना मना है,
1: कोशिश कोई लाख करे कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
2: हंसना मना है।
0: लीजिए, हंसना मना है इस कार्यक्रम के अंतर्गत कर्फ्यू या कभी भी 144 धारा जब भी देश में किसी भी कोने में लगती है तो हर अच्छे इंसान को तकलीफ होती है, और हमारे हिंदुस्तान की ये तासीर बिल्कुल नहीं है कि वो कर्फ्यू और 144 धारा पसंद कर सके, शायद कभी नहीं करेगा। खैर ये विषय अलग है, आपको उसमें भी मैं हास्य व्यंग्य दे रहा हूँ, इसे कहीं कोई अन्यथा ना ले कि किस प्रकार से हमें हास्य व्यंग्य उसमें मिल जाते हैं, दर्द में व्यंग्य, इसलिए हम मैसेज पहुँचाते हैं कि कभी आप तक ये बातें पहुँच जाएँ तो कर्फ्यू और दंगे फसादों से व्यक्ति दूर रहे। कर्फ्यू के दौरान में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है आम व्यक्ति की, और वो होती है पुलिस वालों से। लोग मुझसे पूछते हैं कि राजेश मिश्रा, हिंदुस्तान में व्यंग्य में स्टेज की दुनिया में जितना आप पुलिस वालों के लिए सुनाते हैं और हमेशा पुलिस वालों को छेड़ते हैं, आखिर क्या बात है? और मैं हर प्रोग्राम में बताता हूँ कि मेरी एक बहन की शादी धोखे से एक पुलिस इंस्पेक्टर साहब के साथ हो गई है, इसलिए तमाम पुलिस वाले हमारे जीजा होते हैं। मजाक के दौरान में मैं उल्टा सीधा जीजा लोगों को से बोल देता हूँ, तो ये भी निवेदन कर लेता हूँ कि मंच से वो लोग उतनी दूरी बनाए रखें। कर्फ्यू के दौरान में बहुत से लोग बाहर से आते हैं जो लोकल लोगों को, शहर के नेताओं को, समाज सेवियों को नहीं पहचान पाते हैं। तो सबसे पहले तो जो कर्फ्यू पास मिलते हैं उसको लोग लगाते हैं और उनको सबसे पहले मोहल्ले में दिखाने निकलेंगे, कहा भाई कर्फ्यू पास मिला यार, एसपी साहब ने बुलाया था और कलेक्टर साहब ने बोला कि एकता की अपील के लिए आप लोगों को निकलना है। अब ये तो अपन बोल रहे हैं किंतु सामने वाला सोच रहा साफ, लोगों को भी मालूम नहीं होगा एकता की अपील, पिताजी तो साथ में रहते नहीं है। समाज में एकता की अपील के लिए निकलेंगे, ठीक ठीक निकलो निकलो, आप तो निकल लो, ये वाली गली से निकलो, ये वाली तरफ बहुत ज्यादा तनाव है, जिस तरफ पुलिस थी उसी तरफ भाइयों ने भिजवा दिया। अब जो यहीं पहुंचे तो पुलिस ने, ऐश किधर, कर्फ्यू लगा हुआ? हाँ कर्फ्यू पास है। ये पास आपने, कर्फ्यू पास फाड़ दिया, आप जानते मैं कौन हूँ? वीआईपी आदमी, दो तीन लठ मारो वीआईपी इसको। अरे ए, लठ मार दिया आपने, कैसा? अरे भाई साहब अरे कैसा कर रहे हैं मैं, पिट गए? जी हाँ ये वाला पास चलता है। पीठ में निशान आ गए आपके? हाँ पीठ में लठ के निशान आ गए। हाँ तो ये वाला पास दिखाते हुए चले जाना घर में, बता देना मैं पिट चुका हूँ, कर्फ्यू में बाहर मत निकलिए। सुबह सुबह पति पत्नी घूमने के लिए निकल पड़े, पुलिस वालों ने रोक लिया, ऐश किधर जा रहे हैं? पति बोला मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक कर्फ्यू में? बहुत बढ़िया, इसको जेल भेजो।

0: बड़े गोल में मॉर्निंग वॉक करेगा। पत्नी बोली, साथ में पत्नी भी थी, पत्नी तुरंत बोली,
1: नहीं इनको आप माफ कर दीजिए, हमने इनको मना भी किया था कि कर्फ्यू लगा हुआ है किंतु ये माने नहीं।
0: देखो पत्नी कितनी समझदार है, आदमी कितना बेवकूफ, एक लपाड़ा मारो अपने पति को। पुलिस बोल रही है कि पत्नी से कि पति को मारो। पत्नी बोली,
1: नहीं हम इनको नहीं मारेंगे।
0: नहीं मारोगी तो ये जेल जाएगा। या तो एक चाटा मार दो तो घर ले जाओ, चाटा नहीं मारोगी तो हम इसको जेल भेज देंगे, आप अपने घर जाइए।
1: नहीं देखिए आप प्लीज।
0: अब पति खिसक, मार दो नो।
1: नहीं हम नहीं मारेंगे।
0: अरे लफड़क रहोगे क्या?
1: नहीं हम नहीं मारेंगे।
0: मार दो ना, तुमसे बोल रहे हैं।
1: नहीं ना,
0: अकेले में पटकती रहोगी। कुछ लोग हमारे पास आए, बोले राजेश मिश्रा जी आपको नेता लोग भी चाहते हैं, कलाकार भी हो आप, और आपको अधिकारी भी चाहते हैं। तो मैंने कहा भैया मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो, कर्फ्यू में क्या पिटवाना चाहते हो आप? कहने नहीं भैया ऐसा था कि आप हमारे लिए, हम लोगों के यहाँ क्या है कि लेटरिंग नहीं है घर में, हम लोग सब सुलभ शौचालय जाते हैं, तो आप एक काम करवा दीजिए, सुबह शाम का हम लोगों के लिए पास बनवा दीजिए। और एक टाइम का इमरजेंसी बनवा दीजिए। तो मैंने कहा भैया पास बनवा दें। कहने हाँ क्या है, उधर पुलिस की पॉइंट ड्यूटी लग गई है, हम लोग इधर से जाते हैं पुलिस रगेद देती है, तो आप लोग पकड़ में नहीं आते? नहीं पकड़ में तो आ सकते हैं, किंतु जो ही वो पुलिस पास में आती है हम लोग दौड़ते हैं और वो पीछे भागते हैं, जो ही वो पास में आते हैं तो वो फिसल जाते हैं। अरे मैंने कहा भाई साहब आपकी व्यवस्था जल्दी करें, नहीं तो मैं भी फिसल जाऊंगा। उन व्यक्तियों की समस्या हल नहीं हुई, उनमें से एक बेचारा सुबह सुबह नाली में बाहर बैठे हुआ था। सुनने में आपको जरूर अजीब लग रहा होगा, किंतु जब आप पूरी बात ये सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये कर्फ्यू दंगे फजाद, इसमें आम गरीब आदमी कितना परेशान होता है कि वो बाहर नाली में बैठे ही था कि पुलिस आ गई, रे तेरे मालूम नहीं कर्फ्यू लगा हैं? साहब हमको क्या मालूम, इसमें भी कर्फ्यू लगा। बहस कर रहा है, मारो इसको लट, उठो मार डालो साहब, अबे तो ना उठे। जो ही व्यक्ति फुर्सत हुआ पुलिस ने कहा चलो, कहने कपड़े पहन के आ जाए, अपने यहाँ का आदमी बड़ा होशियार, ऊपर चला गया, नीचे पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, ऊपर से झांका, क्या बात है नीचे उतरो, नीचे नहीं उतरते, क्यों? नीचे कर्फ्यू लगा है।
2: और अब एक और हंसोड़, विनय जैन।
3: एक ऐसा आइटम सुनाने जा रहा हूँ जो कि व्यंग है। एक नेताजी जिनका की तगिया कलाम था, बात बात में कहा करते थे कि राजनीति हो गई, हर बात में वो कहा करते थे कि अरे साहब राजनीति हो गई। एक बार आप तमाम लोग भी जान लें, स्वर्ग और नर्क में जाने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है, जो लोग हम और आप अपनी अपनी जीवन लीला समाप्त करके ऊपर पहुँचते हैं, तो जो इंटरव्यू में पास होता है वो स्वर्ग में जाता है, जो फेल होता है वो नर्क में जाता है, और जो इंटरव्यू लिया जाता है उसमें जो नेताजी हैं उनका नंबर दो तीन लोगों के बाद आने वाला है, इंटरव्यू चालू है, सबसे पहले पहले कैंडिडेट को बुलाया गया, इंटरव्यू चालू है। कैंडिडेट नंबर वन, नमस्ते साहब, कहाँ से आए? साहब इंडिया से आए हैं। हाँ इंडिया से आए हो, इंडिया की स्पेलिंग जानते हो? साहब आई पहले आता है, फिर एन आता है, फिर डी आता है, फिर आई आता है, फिर ए आता है, आई एन डी आई ए, मतलब इंडिया। बोले शाबाश स्वर्ग में जाओ। दूसरे को बुलाया, हाँ साहब कहाँ से? फ्रॉम जापान। जापान की स्पेलिंग जानते हो? साहब जे ए पी ए एन। बोले शाबाश तुम भी स्वर्ग में जाओ। जैसे ही नेताजी का नंबर आया, चित्रगुप्त साहब ने फौरन सवाल किया, बोले भैया तुम चेकोस्लोवाकिया स्पेलिंग बताओ।

0: अब चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग नेताजी मिस्टेक कर गए, बोले नरक में जाओ। नेताजी फौरन चिल्लाए, गुरु राजनीति हो गई, सबसे सरल पूछे हमसे बस कठिन पूछे, इंटरव्यू एक बार फिर से होना चाहिए, नहीं तो हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवा देंगे। एक बार फिर से इंटरव्यू दोबारा करवाया गया, एक बार फिर से इंडिया वाले को बुलाया गया और पूछा गया, हाँ बोले साहब एक बात बताइए, ये दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? बोले साहब दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा भूकंप सन 1903 में आया था। बोले शाबाश, आप स्वर्ग में जाइए। दूसरे को बुलाया जापान वाले को, बोले साहब आप बताइए दक्षिण अफ्रीका के भूकंप में कितने लोग लगभग मारे गए थे? बोले साहब लगभग 19,998 लोग मारे गए थे। बोले शाबाश, आप भी स्वर्ग में जाओ। जैसे ही नेताजी का नंबर आया तो फौरन से सवाल किया गया, बोले साहब दक्षिण अफ्रीका के इस भूकंप में और ज्वालामुखी के फटने में जितने लोग मारे गए थे सबका नाम बताओ। नेताजी वहाँ भी मिस्टेक कर गए, बोले साहब नरक में जाओ। नेताजी फिर चिल्लाए कि गुरु राजनीति हो गई, साहब पॉलिटिक्स हो गई, सबसे सरल पूछा जाता है, हमसे ही कठिन सवाल किया जाता है, तो इसके लिए एक बार फिर से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग गए। लोगों ने यह तय किया कि साहब ठीक है इंटरव्यू फिर से होना चाहिए, लेकिन इस बार ऊपर से आदेश हो गया कि इस बार इंटरव्यू आखिरी होगा, बिल्कुल अंतिम होगा, फाइनल होगा और लिखित में होगा। राइटिंग में एग्जाम होगा, जो सही लिख के बताएगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो गलत लिखेगा वो नरक में जाएगा, इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होगा। नेताजी कहने लगे हाउ, इंडिया वाले को बुलाया, बोले साहब लिख के बताइए कौवा काँव काँव, कौवा काँव काँव। बोले शाबाश, स्वर्ग में जाओ। जापान वाले को बुलाया, बोले साहब लिखिए बिल्ली म्याऊं म्याऊं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं। बोले शाबाश, बिल्कुल सही लिखा है, आप भी स्वर्ग में जाइए। जैसे ही नेताजी का नंबर आया, नेताजी को देखते ही से फौरन सवाल किया, बोले साहब आप लिखिए घोड़ा।
1: हाँ तो दोस्तों, हंसने हंसाने का यह सिलसिला अभी आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक हंसना मना है का भाग 13। आप सुन रहे हैं DTH का प्रसारण।

0: नमस्कार। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा मीडियम वेव पर आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर में बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ किया। ये महोत्सव लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी परिसर में आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, इसी कड़ी में महोत्सव आयोजित हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में सौश्रुतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। आज विश्व युवा कौशल दिवस है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि आज का युग ज्ञान, तकनीक और कौशल का युग है। विकसित भारत के निर्माण का संकल्प तभी साकार होगा जब हमारे युवा हुनरमंद, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र सुदृढ़ीकरण अवलोकन संवाद कार्यक्रम में सहभागिता कर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को हितलाभ और मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड कम्युनिटी इम्यूनिटी मॉडल के तहत बनाया जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के युवा कार्यक्रम युववाणी में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त हरिप्रिया। दोस्तों, कहा जाता है कि युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं, लेकिन केवल युवा होना ही पर्याप्त नहीं है। यदि युवाओं के पास सही दिशा, सही सोच और सही कौशल हो, तभी वह अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य युवाओं को ऐसे कौशलों के प्रति जागरूक करना है जो उन्हें आत्मनिर्भर, रोजगार योग्य और बदलती दुनिया के अनुरूप सक्षम बना सकें। तो आइए हम जानते हैं आज के दिन का इतिहास। हर वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाने वाला यह विश्व युवा कौशल दिवस हमें याद दिलाता है कि किसी भी राष्ट्र के युवा की सबसे बड़ी पूंजी उसकी स्किल डेवलपमेंट होती है, क्योंकि आज पूरी दुनिया तेज़ी से बदल रही है। नई तकनीकों का विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ऑनलाइन एजुकेशन और नए नए व्यवसाय हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में केवल किताबों का ज्ञान ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को

व्यवहार में लाने का कौशल भी आवश्यक है। साथ ही केवल डिग्री प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं, लेकिन स्किल डेवलपमेंट भी बेहद ज़रूरी हो गया है, जैसे कि बिहेवियरल स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स और ऐसी कई स्किल्स जो हमें आत्मनिर्भर बनाती हैं। आज भारत के करोड़ों नए युवा नई ऊर्जा, नए विचार और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यदि यही युवा सही कौशल सीख लें तो वे न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे बल्कि देश की इकोनॉमी और सामाजिक विकास में भी अपना योगदान दे सकेंगे।

अब सवाल यह उठता है कि आज के समय में स्किल डेवलपमेंट इतना ज़रूरी क्यों है। साथियों, यदि हम आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो रोज़गार के अवसर बहुत सीमित थे, लेकिन आज समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। इंटरनेट और तकनीक ने हमारी दुनिया हमारी हथेली पर ला दी है। अब यदि मैं आपसे पूछूं तो लगभग 60% आपका काम घर बैठे मोबाइल पर होता है। अगर आपको कुछ खाना है या ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करना है तो आप तुरंत उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, और किसी भी चीज़ की बिल्स पेंडिंग हो तो वह भी आप झट से ऑनलाइन ही जमा कर देते हैं। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन यह तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात है। अब मैं अगर स्किल्स की बात करूं तो आजकल हर दूसरा टीनेजर या तो घर बैठे कोई ना कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा है, वीडियो एडिटिंग कर रहा है, कॉन्टेंट सीख रहा है, डिजिटल मार्केटिंग में है या वेब डेवलपमेंट सीख रहा है, और ये कर वे फ्रीलांसिंग करने के ज़रिए अपने क्षेत्रों में अपना करियर बना रहे हैं। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि किसी व्यक्ति के पास अच्छी डिग्री होने के बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिलती। इसका सबसे बड़ा कारण आजकल लैक ऑफ स्किल्स हो गया है। वैसे भी इंडिया में रोज़गार कम नहीं है, पर हम अपना पोटेंशियल देखकर उस फील्ड में अगर अपनी स्किल्स डेवलप करें तो वो हमारे लिए और बेटर हो जाता है और हमें उसके काबिल बनाता है। जहाँ बहुत लोग नौकरी नहीं ले पा रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी विशेष क्षेत्र में अपनी स्किल्स को डेवलप करके एक अच्छा खासा उद्योग खड़ा कर दिया है, और ना केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी रोज़गार उपलब्ध करा दिया है। इसीलिए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज की दुनिया में डिग्री दरवाज़ा ज़रूर खोल सकती है, लेकिन उस दरवाज़े से आगे बढ़ाने का काम आपका कौशल करता है। इसलिए रोज़ सिर्फ आधा या एक घंटा देकर हम कोई नई स्किल सीखें तो एक साल बाद शायद यह हमारी पर्सनालिटी और लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकता है। इसलिए लगातार सीखते रहना चाहिए, क्या पता कब कौन सी स्किल या कौन सी चीज़ हमारी काम आ जाए। दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करती हैं। उसी में से एक बात मेरे मन में आई, सफल वह नहीं होता जो सबसे अधिक प्रतिभाशाली हो, सफल वह होता है जो सीखना कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आगे हम और जानेंगे और कुछ रोचक तथ्यों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सुंदर सा गीत।

अभी गीत से पहले हम विश्व युवा कौशल दिवस पर बात कर रहे थे, तभी मेरे मन में एक ख्याल आया कि आजकल सब कितना फास्ट हो गया है। जो चीज़ें हमें करने के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता था, वे आजकल मिनटों में हो जाती हैं। ऑल थैंक्स टू डिजिटल डेवलपमेंट, कितना चेंज आ गया है। अब लगभग हर काम डिजिटली होने लगा है। यह परिवर्तन हमें डिजिटल इंडिया की ओर लेकर जा रहा है। दोस्तों, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ इंटरनेट या स्मार्टफोन तक सीमित नहीं होता। डिजिटल इंडिया का मतलब होता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचाना, समय की बचत करना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और हर व्यक्ति को डिजिटली एम्पावर करना। डिजिटल इंडिया ने हमें विश्वास दिलाया है कि यदि तकनीक का सही उपयोग किया जाए तो उसके बहुत फ़ायदे हैं। लेकिन दोस्तों, हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, तकनीक तब ही उपयोगी है जब उसका उपयोग सही उद्देश्य से और सही दिशा में किया जाए। यदि हम मोबाइल का उपयोग केवल समय बिताने के लिए करेंगे तो वह हमारी प्रगति में बाधा बनेगा, लेकिन यदि उसी मोबाइल को हम कुछ सीखने के लिए उपयोग करेंगे, किसी ऑनलाइन कोर्स में इन्वेस्ट करेंगे या कोई नई स्किल सीखेंगे, तो हम खुद का एक छोटा सा व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं जो हमारी पढ़ाई के साथ हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करेगा। तो वही मोबाइल हमारी सफलता का साधन बन जाएगा। आजकल तो AI का ज़माना आ गया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि AI के आने से जॉब्स चली जाएंगी और भविष्य में मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, AI को चुनौती की तरह ना देखकर उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। तकनीक कुछ कामों को आसान ज़रूर बना रही है, लेकिन यह मत भूलिए कि तकनीक और मशीनों को दिशा देने वाले और उनको चलाने वाले मनुष्य ही हैं। इसलिए इससे डरने की जगह उसे समझिए और उसके साथ खुद को डेवलप करते रहिए, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि आपकी जॉब्स कोई मशीन ले लेगी।

दोस्तों, जितनी तेजी से तकनीक हमारे जीवन का हिस्सा बन रही है, उतना ही जरूरी है हमारी जागरूकता, हमारी जिम्मेदारी और उसका सही उपयोग। डिजिटल दुनिया हमें अनगिनत सुविधाएं देती है, लेकिन हमें इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। इंटरनेट पर मिलने वाली कोई भी जानकारी हमें बिना सोचे समझे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी भी इंफॉर्मेशन, न्यूज़ या कुछ भी ऐसा जो हमें ऑनलाइन दिखा, हमें उसे तुरंत शेयर नहीं करना चाहिए। पहले हमें उसकी एक्यूरेसी जान लेनी चाहिए कि वो कितना सच है और कितना सही है, क्योंकि हम अगर उसे बिना सोचे समझे शेयर कर देंगे तो लोगों को लगेगा कि ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं। इससे लोगों में डर फैलेगा और वो परेशान हो जाएंगे। अपना कोई भी पासवर्ड, डिटेल्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट उसे फ़ोन में भी उतनी लिमिटेड तरीके से रखना चाहिए कि कोई और नहीं देख पाए, या फिर लॉक करके रखना चाहिए कि किसी और के द्वारा वो खोला ना जा सके, क्योंकि आजकल जितना सब डिजिटल हो गया है उतने ही साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया एक बहुत अच्छी तकनीक का विस्तार है, बल्कि अवसरों का पिटारा भी है, और इसी में अगर हम स्किल्स को जोड़ दें तो सोने पर सुहागा जैसी बात हो जाएगी, क्योंकि इससे न केवल आपका अपना व्यक्तिगत फ़ायदा है बल्कि देश का भी फायदा है। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूँगी। यदि आपका मोबाइल फ़ोन एक दिन के लिए केवल पढ़ाई, सीखने या सिर्फ ज़रूरी कामों तक के लिए सीमित कर दिया जाए, तो क्या आप उसका उतना ही उपयोग करेंगे जितना आज करते हैं? ज़रा इस प्रश्न पर विचार कीजिएगा। शायद इसका उत्तर हमें यह समझाने में मदद करेगा कि हम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं या तकनीक हमारा। दोस्तों, तकनीक तभी तक सार्थक है जब वह हमारे ज्ञान, हमारे व्यक्तित्व और हमारे समाज को बेहतर बनाए। घड़ी समय की तरफ इशारा कर रही है, वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। बस दो लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगी। भविष्य उनका होता है जो समय के साथ बदलना और हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवावाणी कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक।

0: शाम सुहानी हो।
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
2: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन?
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
0: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है छोटे से अंतराल का।
4: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
5: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात। 1936 से आकाशवाणी आप

0: नहीं है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक आपको सूचना दे दें, पुलिस आयुक्त नगरी पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक, अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जाति अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड ना करें। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। हमने लिया मधुबंती बागची का गाया हुआ, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं। अमित त्रिवेदी ने इस गीत को संगीतबद्ध किया। फिल्म का नाम आज़ाद।

आप सुन रहे हैं जुबिन नौटियाल को मिस्टर एंड मिसेस माही में। संगीत तनिष्क बख्शी का है और इस गीत को लिखा कौशर मुनीर ने।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। इस फिल्म में आप सुन रहे थे वरुण जैन और राघव चैतन्य को। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे गाया अरिजीत सिंह ने। शब्द रचना इरशाद कामिल की है, संगीत प्रीतम का, फिल्म का नाम डंकी।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत इरशाद कामिल का लिखा हुआ है। संगीत तैयार किया रवि बसरूर ने, जावेद अली की आवाज़ है और फिल्म का नाम है भोला।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे सुरीली तार।

0: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत टैक्स के तहत एक ही छत के नीचे भारत की पूर्ण टेक्सटाइल मूल्य श्रृंखला को लाने की प्रक्रिया पर वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा का लेख साझा किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पहल देश के विनिर्माण शक्ति, समृद्ध वस्त्र विरासत और विस्तारित होती वैश्विक उपस्थिति को दर्शाती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर में बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ किया। ये महोत्सव लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी परिसर में आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, इसी कड़ी में ये महोत्सव आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र सुदृढ़ीकरण अवलोकन और संवाद कार्यक्रम में सहभागिता कर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को हितलाभ और मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए। सहकारिता विभाग में पदोन्नति नियम 2025 के तहत 15 संवर्ग में कुल 613 पदोन्नति आदेश जारी किए गए हैं। इसमें प्रथम श्रेणी के पदों पर 41, द्वितीय श्रेणी के पदों पर 84, तृतीय श्रेणी के पदों पर 486 और चतुर्थ श्रेणी के दो पदों पर अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है। राजधानी भोपाल के छोला स्थित प्राचीन तथा प्रसिद्ध खेड़ापति हनुमान मंदिर परिसर में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जा रहे श्री खेड़ापति हनुमान लोक कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का सहकारिता मंत्री

0: विश्वास सारंग ने नगर निगम और संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। शाम के 6 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है लोहारा यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे और अश्विन कोल्हे जी ने। बड़ा सुंदर विचार इन्होंने भेजा है, आइए सुनते हैं।
2: लिखते हैं, सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आप सबको हमारा धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: सुहाना चौक ग्राम जसवाड़े से सूरज कुमार ढाकसे जी ने लिखा है,
3: अजीत जी और विमलेश जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हैं जी? आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आँखों से नेत्रहीन हूँ। प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूँ। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियाँ, कविताएं और ये भी जानिए मैं दुर्लभ जानकारियाँ सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमें दिनांक 22 जून 2026 का कार्यक्रम राग सिंदूरा बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
2: सूरज कुमार ढाकसे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेशों के लिए श्रोताओ। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि उमंग एक शैक्षिक कार्यक्रम है,
2: इसलिए इसमें शिक्षा की बात तो होती ही है, लेकिन ये मनोरंजन से भी भरपूर होती है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के विकास की, और इस क्रम में हमने कल बात की थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की मिट्टी की पटियाओं की, जिन्हें हम आज की पुस्तकों का आदि रूप कह सकते हैं।
3: जी, समय का पहिया चलता गया और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लगभग 400 वर्षों के बाद एक और महान सभ्यता विकसित हुई। लेकिन वो कौन सी सभ्यता थी, ये विमलेश जी आपको बताना होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ।
2: जी,
3: वो सभ्यता उस नदी के किनारे विकसित हुई थी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है।
2: अजीत जी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहते हैं। कहीं ये मिस्र की सभ्यता तो नहीं?
3: बेशक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब करते हैं बात पुस्तकों की और जानते हैं प्राचीन मिस्र में लेखन कला का विकास कैसे हुआ और वे कैसे लिखते थे।
2: प्राचीन मिस्र के लोगों ने नील नदी के तट पर प्रचुरता से मिलने वाले पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई।
3: पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई, लेकिन कैसे?
2: ये एक अद्भुत तकनीक थी। पहले वे पेपिरस के पौधों की कटाई करते थे, फिर इसकी मोटी लेकिन मुलायम डंडियों का छिलका हटाकर उन्हें पतली पतली पट्टियों में काटा जाता था, फिर पट्टियों को पहले एक दिशा में बिछा दिया जाता था।
3: जी, और उसके बाद दूसरी परत को उन पर आड़ा बिछाया जाता था, फिर उन्हें भारी समतल पत्थरों या लकड़ी की भारी तख्तियों से दबाया जाता था।
2: इसमें एक मजेदार बात यह है कि पेपिरस के पौधों का प्राकृतिक रस ही गोंद का काम करता था, जिससे वे आपस में चिपक जाती थी। उन्हें सुखाने पर वे कागज की तरह बन जाती थी, फिर उन पर लिखा जाता था।
3: लेकिन वो लिखते कैसे थे?
2: लिखने के लिए वे सरकंडे का उपयोग करते थे। पेपिरस के द्वारा मिस्रवासियों ने स्क्रॉल्स भी बनाए जिनमें राजाज्ञाएं लिखी होती थीं। इसी स्क्रॉल शब्द का प्रयोग आज मोबाइल या कंप्यूटर के पर्दे को ऊपर नीचे करने में इस्तेमाल होता है।
3: उनका स्याही बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प था। वे घास और वनस्पतियों को जलाकर कालीख बनाते थे
2: जी,
3: और उसमें गोंद मिलाते थे तो बन जाती थी काली स्याही
2: जी।
3: वे लाल गेरू से लाल स्याही बनाते थे, ये प्राकृतिक लाल रंग की बेहद चिकनी मिट्टी होती है। बता दें श्रोताओं कि महत्वपूर्ण बातों को वे लाल रंग से लिखते थे और शेष बातों को काले रंग से, इससे दस्तावेज के महत्व का पता चलता था।
2: यही परंपरा आज भी चली आ रही है। पता है श्रोताओं, पेपिरस इतना उपयोगी था कि लगभग 2000 वर्षों तक मिस्र से भूमध्य सागर के आसपास के कई देशों को निर्यात करता था। इसी पेपिरस से पेपर शब्द निकला, और पेपर

0: को पेपिरस का वंशज कहा जा सकता है। पेपिरस के आने से पुस्तकों का वजन बहुत हल्का हो गया, जिससे उन्हें आसानी से लाया ले जाया जा सकता था।
1: विमलेश जी, तो ये बात हुई पेपिरस की।
0: जी,
1: अब ये जानना चाहिए कि मिस्र के लोगों ने पेपिरस पर क्या लिखा। क्या इससे मिस्र की सभ्यता के बारे में कोई जानकारी मिलती है?
0: जी अजीत जी, ये जानना बड़ा रोचक होगा। मिस्र वासियों ने पेपिरस पर धार्मिक ग्रंथ लिखे। पेपिरस पर राजाओं के वृत्तांत भी लिखे मिलते हैं
1: और फैरो राजाओं के आदेश भी। बता दें कि फैरो मिस्र के राजा हुआ करते थे।
0: जी,
1: पेपिरस पर प्राचीन मिस्र की चिकित्सा विधियां भी लिखी मिलती हैं, गणित, साहित्य और कथाएं भी मिलती हैं। एक बात और साझा करना चाहता हूं विमलेश
0: जी,
1: और वो ये कि प्राचीन मिस्र में लेखक बहुत सम्मानित समझे जाते थे और उन पर राजाओं की विशेष कृपा होती थी।
0: तो श्रोताओं, जिन दिनों में विश्व के अनेक देश पत्थरों और मिट्टियों की तख्तियों पर लिख रहे थे, उस समय मिस्र के लेखक पेपिरस के हल्के और लचीले पन्नों पर विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार और साहित्य का विशाल ज्ञान संजो रहे थे।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी किताबों के उद्भव और विकास की। लेकिन अभी और भी मंजिलें हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में।
0: जी,
1: अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है, पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
1: आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं
0: और हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में बताते हुए प्रकाश डाला गया है कि मानसून की परिभाषा क्या है और वर्षा लाने में इसकी क्या भूमिका है।
1: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
3: नाना जी, नाना जी।
4: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ, कैसी रही चौपाल?
3: ठीक रही नाना जी, आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
5: बहुत गर्मी पड़ रही है, कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है।
6: नाना जी, इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
3: हाँ हाँ बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
4: बेटा मैं भूगोल पढ़ाता था।
5: ये लो, नानी जी भी आ गई।
7: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
4: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
7: हाँ वो तो है।
3: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
7: अच्छा तो ये बात है, तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
4: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
3: कहाँ से आया है
4: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
3: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
4: बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
5: पूरी दुनिया में नहीं होता तो फिर?
4: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
3: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून
8: पवन।

0: या हवा है?
1: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है। ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
0: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
1: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
0: अच्छा नाना जी।
1: चूंकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
0: अच्छा।
1: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
0: अब समझ में आया। नाना जी, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
1: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
2: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
1: हाँ।
2: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है।
0: ओ।
2: हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
1: बिल्कुल।
2: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
0: अच्छा।
2: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
0: अच्छी अर्थव्यवस्था।
2: हाँ।
1: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है, वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
0: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है।
0: ओ।
2: अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
1: भाई, इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए?
0: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
3: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव, और आइए अब सुनते हैं हमारा अंतिम कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी विवेकानंद।
5: इस कार्यक्रम में भारत के महान संत, तपस्वी, विचारक और चिंतक स्वामी विवेकानंद के जीवन और भारतीय दर्शन को पश्चिमी देशों में परिचित कराने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सविस्तार उल्लेख किया गया है।

स्वामी विवेकानंद भारत के महान संतों में से एक हैं। वे भारतीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक एवं महान व्याख्याता माने जाते हैं। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और भारतीय परंपराओं को गौरवान्वित किया। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का कहना है, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था।

0: कहानियां सुनाती। अतः नरेंद्रनाथ को अपने माता पिता से नए और पुराने विचारों का समन्वय मिला। नरेंद्र एक दिन की बात है, नरेंद्र कोई शरारत करके भाग खड़े हुए। उनकी बहन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। नरेंद्र ने तुरंत नाली में उतरकर अपने शरीर पर कीचड़ लपेट ली और बोले, अब पकड़ो मुझे। कीचड़ में लिपटे भाई को देखकर बहन अपना समूह लेकर लौट गई। नरेंद्र थे तो नटखट स्वभाव के, परंतु उनके हृदय में धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव था। वे अपनी माँ के पास घंटों बैठे पुराणों की कथा बड़े चाव से सुनते और उन्हें याद रखते। एक दिन की बात है, नरेंद्र उस समय 8 वर्ष के थे। अपने कुछ साथियों के साथ शहर में लगा मेला देखने गए। वहां उन्होंने बहुत आकर्षक वस्तुएं देखी। उन्होंने उत्सुकता से मेले की सभी दुकानें देखी। अंत में उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग खरीदने का निश्चय किया। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्रनाथ के पास केवल 4 आने पैसे बचे। वे अभी सोच ही रहे थे कि इन पैसों का क्या खरीदा जाए कि तभी
1: अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज है। कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? देखूं तो ये आवाज कहां से आ रही है? ओ, ये तो एक बच्चा है, पता नहीं क्यों रो रहा है। चलकर इसी से पूछता हूँ, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो?
2: मेरा नाम राजू है, मैं यहाँ मेला देखने आया था। मुझे माँ ने मेले में खर्चने के लिए 4 आने पैसे दिए थे, पता नहीं वो पैसे कहाँ खो गए।
1: अच्छा?
2: जब माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी। मैं कहाँ से लाऊं वो पैसे?
1: चुप हो जाओ, रो नहीं, मैं तुम्हें 4 आने पैसे देता हूँ। ये लो 4 आने, इन्हें अब संभाल कर अपने पास रख लो, अब माँ नहीं मारेगी तुम्हें। जाओ, खुशी खुशी घर जाओ।
2: अच्छा।
0: और इस तरह नरेंद्र ने अपने बचे हुए पैसे उस बच्चे को दे दिए। बच्चा बहुत खुश हुआ। मेले से जुड़ी एक और घटना है जिससे हमें पता चलता है कि नरेंद्रनाथ दीन दुखियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। मेले से खरीदा शिवलिंग हाथ में लिए नरेंद्रनाथ घर की ओर चल दिए। वे अभी मेले से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक छोटा बालक दौड़ता हुआ सड़क की ओर आ रहा है। यदि उसे तुरंत बचाया नहीं गया तो गाड़ी के नीचे आ सकता है। नरेंद्र ने तुरंत हाथ में पकड़ी हुई शिवलिंग फेंकी और दौड़कर उस बच्चे को उठा लिया। तभी पास खड़े एक वृद्ध ने उससे कहा,
3: बेटा, तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया, अब तुम किसकी पूजा करोगे?
1: महाशय, कोई बात नहीं
3: है?
1: मुझे खुशी है कि मैंने इस बालक की जान बचाई। यही मेरा कर्तव्य है, मेरी सबसे बड़ी पूजा है।
0: नरेंद्र की माताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया और कहा,
4: बेटे, जीवन में सदैव ऐसे ही काम करना।
1: परंतु माँ, एक अपराध हो गया।
4: क्या?
1: मुझसे शिवलिंग टूट गया, ये तो शिव जी का अपमान हुआ ना।
4: बेटा नरेंद्र, तुमने ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं।
1: नहीं।
4: और फिर मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा ही सच्ची शिव भक्ति है। तुमने जो किया मेरे बच्चे, बिल्कुल

0: ठीक किया
1: माँ।
2: बाल्यकाल से ही नरेंद्रनाथ में महापुरुष के लक्षण स्पष्ट रूप से झलकने लगे। एक दिन की बात है, उनकी कक्षा में प्रधानाचार्य धर्म और दर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने देखा नरेंद्रनाथ अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्होंने पूछा,
3: नरेंद्रनाथ तुम सो रहे हो?
4: जी नहीं प्रधानाचार्य जी, मैं कुछ सोच रहा था।
3: क्या सोच रहे हो तुम?
4: क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे?
3: हाँ बोलो नरेंद्र, क्या प्रश्न है तुम्हारा?
4: श्रीमान जी, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं?
3: नरेंद्रनाथ तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। तुम इस प्रश्न के उत्तर की खोज में गंभीर भी हो, निराश ना हो। मैं तुम्हें ऐसे संत का नाम बताता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही सही दे सकते हैं। यदि वास्तव में ईश्वर के दर्शन करना और सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है तो तुम दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ, वे ही तुम्हें ईश्वर के विषय में बता सकते हैं।
2: नरेंद्रनाथ को प्रधानाचार्य की बात जच गई और वे कुछ ही दिनों बाद दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर नरेंद्रनाथ ने अपना वही प्रश्न पूछा।
4: प्रणाम महात्मन।
5: जीते रहो पुत्र।
4: महात्मन, मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे?
2: जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को देखा तो वे उन्हें एकटक देखते ही रहे, जैसे वे बहुत पहले से ही एक दूसरे से परिचित हों। फिर वे नरेंद्र से बोले,
5: पूछो पुत्र, तुम क्या पूछना चाहते हो?
4: क्या आपने ईश्वर को देखा है?
5: हाँ पुत्र, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूं, तुमसे बात ही कर रहा हूं। यदि कोई सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करे तो वो अवश्य भगवान को प्रत्यक्ष पा सकेगा। यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी भगवान के दर्शन करा सकता हूं।
2: श्री रामकृष्ण परमहंस की बातों का नरेंद्रनाथ पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। रामकृष्ण परमहंस को तो पहली दृष्टि में ही नरेंद्र के प्रति अपार स्नेह उत्पन्न हो गया और एक समय वो भी आया जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य बन गए। उन्होंने उनके विचारों को अपनाया। श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि यानी उनके निधन के बाद नरेंद्र ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे केवल नाम के ही उत्तराधिकारी नहीं बने, उनके काम के भी बने। अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, गुरु के विचारों का प्रसार किया, देश के दीन दुखियों के लिए शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। अब वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया, लोगों के असहनीय दुख दर्द को अपनी आंखों से देखा और उन्हें मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था,
4: मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे मनुष्य में विश्वास है, मुझे दीन दुखियों की सहायता में विश्वास है और यही मेरा कर्तव्य भी है।
2: इसी दृढ़ निश्चय को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नामक स्थान पर समुद्र के बीच स्थित एक शिला पर 2 दिन और 2 रात अटूट समाधि लगाई।

0: अतीत और वर्तमान भारत के चित्र उभर आए। जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई वो आज विवेकानंद स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग कन्याकुमारी स्थित उस विवेकानंद स्मारक के दर्शन करने आते हैं। जन कल्याण की भावना विवेकानंद के रोम रोम में समा चुकी थी। इसी भावना को लेकर उन्होंने देश में पैदल भ्रमण किया। वो जहां भी जाते उनका आदर सत्कार होता और लोग उनके शिष्य बन जाते। इसी बीच अमरीकी शहर शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी जी ने इस सम्मेलन में जाने का फैसला किया। वे शिकागो पहुंचे। वहां उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस शिकागो सम्मेलन में उन्हें अपने विचार प्रकट करने का विधिवत निमंत्रण नहीं मिला था। फिर भी अपने एक मित्र की सहायता से उन्हें सम्मेलन में केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया, जिसमें वे अपने विचारों को सभा के सामने रख सकते थे। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा,
1: मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, मुझे अपने देश भारत पर, अपने देश की संस्कृति पर और अपने धर्म पर गर्व है। ये वही देश है जिसने संसार के पीड़ितों की, दुखियों की रक्षा की है। सभी भारतवासियों को सर्वधर्म संभाव की शिक्षा दी है। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त है जिसने विश्व के सब धर्मों और राष्ट्रों के शरणार्थियों को शरण दी है। इस धरती पर समय समय पर अत्याचार होते रहे हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पीड़ित किए गए हैं। धर्म का अर्थ है अशांति और द्वेष को पूरी तरह दूर करना। हमारा कर्तव्य है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दूसरे धर्मों को नीचा न कहें। सभी धर्म एक समान है। सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है।
0: स्वामी विवेकानंद का ये भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से भवन गूंज उठा। उनके विचारों की सभी ने प्रशंसा की। इसके बाद पश्चिमी देशों में स्वामी जी के भाषणों का तांता लग गया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके भाषणों की चर्चा सारे विश्व में होने लगी। उन्होंने सुसंस्कृत भारत की जो छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की उससे भारतवासियों के मस्तक गर्व से उठ गए। और जब वे विदेश से भारत लौटे तो भारत की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद को भारतीय होने का गर्व था। वे चाहते थे कि उनके देशवासी भी ऐसे ही हों, देश के लिए जिएं, देश के लिए मरें। स्वामी जी में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका सारा प्रेम भारत के प्रति था और भारत की सेवा में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उनके विचार उन्हें अमर बनाए हुए हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को,
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत बॉबी फिल्म से लिया है, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी के बोल हैं, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत अनजान का लिखा हुआ है। संगीत तैयार किया कल्याणजी आनंद जी ने। लता मंगेशकर की आवाज़ है। फिल्म का नाम मुकद्दर का सिकंदर।

किशोर कुमार की आवाज़ में मेरे जीवन साथी फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत संगम फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और मुकेश ने। शब्द रचना शैलेंद्र की है, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में गाए संगम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। शाम के 7 बजने को है, कुछ देर में हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर। 46 किलोमीटर का ये होगा। 14,448 करोड़ रुपीज का बनेगा।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीज का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजखरसावां डांगो आपोसी 4थी लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना ज़ाहरिएवा से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि PHARISH ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने आज हवाई हमले तेज कर दिए। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में आज 3 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय 7:05 हुए हैं। ये वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आइए पहले डालते हैं एक नजर इस सभा में।

में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में आज आप सुन सकते हैं, मशरूम उत्पादन तकनीक, कम लागत अधिक मुनाफा, इस विषय पर भेंटवार्ता। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा आज रात 8:00। 8:15 पर भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा पर केंद्रित पूर्वावलोकन कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम भी आज आप सुन सकते हैं रात्रि 9:30 आकाशवाणी दिल्ली से। अभिनय सतीश मेहता का लिखा ये नाटक हम आपको सुनवाएंगे आज रात 10:00, प्रस्तुतकर्ता शाकिर अली। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 10:30 सुनिएगा माधुरी ओक का गायन। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब आइए डालते हैं एक नज़र कल दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। पहले जानकारी दे दें आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रमों की। कल सुबह 7:20 पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में समाचार पत्रों से ली गई मुख्य सुर्खियां गीत संगीत और समय के साथ। वतन का राग ये प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 8:30। 9:02 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। सुगम संगीत में 9:15 पर चंदन दास की गई कुछ गजलें हम आपको सुनाएंगे। दरारें इकबाल मजीद का लिखा ये नाटक आप सुन सकते हैं सुबह 9:30, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। जिले की चिट्ठी इसका समय है सुबह 10:00। 10:05 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत सागर। कल शाम 7:21 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में बहने सुनी खाद्य जनित रोग कारण एवं रोकथाम विषय पर डॉक्टर आकांक्षा पांडे से ली गई भेंटवार्ता। अब आपको जानकारी दे दें आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे इसका समय सुबह 11:00 है। 12:00 सुनिएगा आपकी फरमाइश। दिन में 12:30 कार्यक्रम संग्रहालय में सुनिएगा धारावाहिक कामिनी काय कांतारे का भाग एक। 1:00 महिला कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति रहेगा। आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति में 1:30 सुनिएगा लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं दोपहर 2:00 और 2:30 पर आपकी फरमाइश में। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा शाम 6:00। 6:30 पर फिल्म संगीत। रात 8:00 कार्यक्रम सुर्खियों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट आप सुन सकते हैं कल रात 8:15 जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। 8:30 सुनिएगा फिल्म संगीत। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे रात 9:30 और रात 10:00 कार्यक्रम आपकी फरमाइश के अंतर्गत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात्रि 10:30 सुनिएगा वसुंधरा कोमकली का गायन। ये थे आज और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान अपना।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा से होगी शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में किया बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ। और प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल। राज्य मंत्री लखन पटेल से वापस लिया गया पशुपालन विभाग, अब मुख्यमंत्री के पास रहेगा प्रभार। अब समाचार विस्तार से। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा से शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस ट्रेन की तस्वीरें साझा करते हुए इसकी जानकारी दी। ये भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का हिस्सा है। इसके तहत भविष्य में 35 और हाइड्रोजन ट्रेनें शुरू की जाएंगी। नई ट्रेन 10 कोच वाले हाइड्रोजन चलित DEMU सेट के रूप में तैयार की गई है, जिसमें 682 सीटें हैं। इसकी अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार ये ट्रेन बिना हानिकारक धुआं छोड़े केवल जल वाष्प और गर्मी उत्पन्न करती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी है। इस योजना का बजट 62,500 करोड़ रुपए है। ये योजना 5 वर्षों के लिए लागू रहेगी। इसके तहत कंपनियों को बिक्री पर 2.25% तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार के अनुसार इस योजना से देश में मोबाइल फोन का उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सेमी कंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इको सिस्टम को मजबूत करने के लिए सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी है। इस मिशन के लिए कुल 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इस मिशन की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया,
1: हमने सेमिकॉन 1.0 में फोकस दिया कि एक तरीके से उस इंडस्ट्री को स्टार्ट करना है भारत में स्थापित। 2.0 में सबसे पहला फोकस आएगा डिजाइन ऑफ चिप्स। डिजाइन ऑफ चिप्स स्ट्रेटेजिक चिप्स भी होगी और कमर्शियल चिप्स भी होगी। भारत में जितनी भी ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, टैंक्स, जितने भी हमारे स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, उन सब की चिप्स भारत में डिजाइन होगी। उसकी IP भारत में रहेगी और भारत में ही उसका फैब्रिकेशन होगा। इस तरह की व्यवस्था ही सेमिकॉन 2.0 में 100% हम इसमें आत्मनिर्भर हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस सेमीकंडक्टर प्रोग्राम।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत के 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसे एक जन केंद्रित समझौता बताया गया है, जिससे सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। ये समझौता भारत के वैश्विक बाजारों से जुड़ने और मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इसके तहत डेयरी उत्पाद, मोटा अनाज, खाद्य तेल, अनाज और सेब जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को विशेष सुरक्षा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों की साझेदारी में महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और लघु उद्योगों को नई गति देगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि इससे प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में भी सहयोग मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों के लिए बेहद मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर में बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ किया। प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाता है और इसी कड़ी में महोत्सव आयोजित हुआ। महोत्सव में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, ड्रोन स्मार्ट, सिंचाई, जैविक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इंदौर के बाद ये महोत्सव धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा में भी आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा,
2: किसान कल्याण वर्ष में किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अब हमारे प्रदेश के अंदर एविएशन के क्षेत्र में, विमानन के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश आगे बढ़ रहा है। एक तरफ हम किसान कल्याण की बात कर रहे हैं, दूसरा आज ही इंदौर से अबू धाबी की भी एक नई फ्लाइट शुरू हो रही है। ये मध्यप्रदेश सरकार के माध्यम से शुरू हो रही है। इसका VGF हमारी सरकार के माध्यम से देने वाले हैं।

में बदलाव हुआ है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल ने पशुपालन विभाग वापस ले लिया गया है। यह विभाग अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने पास रखेंगे। इसके बाद लखन पटेल अब केवल आनंद विभाग के मंत्री रह गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। लखन पटेल पथरिया विधानसभा से विधायक हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को हित लाभ और मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी केंद्र का अवलोकन कर बच्चों के विकास से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। इसके अलावा डॉ. यादव ने इंदौर में नवनिर्मित 300 बिस्तरीय जिला चिकित्सालय भवन का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर से अबुधाबी के लिए प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। ये उड़ान टाटा समूह की विमानन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित की जाएगी और सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी। अभी तक इंदौर से अबुधाबी जाने के लिए यात्रियों को दिल्ली या मुंबई होकर जाना पड़ता था, जिसमें 7 से 8 घंटे लगते थे। नए उड़ान से यह सफर सिर्फ 3 घंटे 15 मिनट में पूरा हो सकेगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने आज दतिया कलेक्टर और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इसमें दतिया विधानसभा उपनिर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निष्पक्षता और गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। श्री झा ने स्वीप गतिविधियों के जरिए मतदाता जागरूकता बढ़ाने को भी कहा। उन्होंने क्रिटिकल मतदान केंद्रों, अवैध हथियारों की जब्ती और आचार संहिता उल्लंघन जैसे मुद्दों पर भी जानकारी ली। मंत्री विश्वास सारंग ने आज भोपाल के छोला स्थित श्री खेड़ापति हनुमान लोक कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और उन्होंने अधिकारियों के साथ कॉरिडोर की 3D डिजाइन का अवलोकन कर निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश के सहकारिता विभाग में पदोन्नति नियम 2025 के तहत बड़े पैमाने पर पदोन्नति की गई है। कुल 15 संवर्गों में 613 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है। इनमें प्रथम श्रेणी के 41, द्वितीय श्रेणी के 84 और तृतीय श्रेणी के 486 पद शामिल हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण के प्रयास तेज कर दिए हैं। ये काम अमृत 2.0 योजना के तहत हो रहा है। देश भर के 900 से अधिक शहरी निकाय इस अभियान में शामिल हैं। इसके तहत 1.25 लाख एकड़ से अधिक जल निकायों का पुनर्जीवन किया जा रहा है। 28 जुलाई से रीवा से कोलकाता के लिए एयर इंडिया की उड़ान शुरू होगी। ये उड़ान भोपाल होते हुए कोलकाता पहुंचेगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि इससे विंध्य क्षेत्र के यात्रियों को कोलकाता जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में कैबिनेट मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने हरसूद विधानसभा क्षेत्र में आज विधानसभा स्तरीय महिला सम्मेलन में शामिल होकर बहनों से संवाद किया। प्रदेशव्यापी नशे से दूरी है जरूरी अभियान का शुभारंभ आज शिवपुरी मंडला आगरमालवा जिलों में जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शहडोल जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026 के अधिसूचित फसलों का बीमा 31 जुलाई तक कराया जा सकता है। अशोकनगर में आज राजस्व विभाग ने कार्रवाई करते हुए लगभग 2,20,00,000 रूपये की शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त की गई है। छिंदवाड़ा की 11 वर्षीय अशिता देहरिया ने विशाखापट्टनम में आयोजित 37वीं अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। झाबुआ में 5 वर्ष तक के बच्चों को गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से दस्तक अभियान 14 जुलाई से 31 अगस्त तक पूरे जिले में चलाया जाएगा। सीहोर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 46B के बुतनी स्थित मिडघाट सेक्शन में आज भीषण सड़क हादसे में 8 साल के बच्चे समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबलपुर में पिछले 4-5 दिनों से उमस से बेहाल शहरवासियों को आज शाम करीब 4 बजे हुई तेज बारिश के बाद राहत मिली है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। ग्रामीण भाई सुने अपना कार्यक्रम ग्राम सभा।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुनवारे सभी किसान भैयन को प्रेमचंद भैया की राम राम। और सुनाओ भैया, कैसे हो आप? सभी कुशल मंगल हो करें। हम तो जो ही चाहता कि सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें, क्योंकि भैया इस समय मौसम तो आप देख ही रहे हो, क्योंकि भैया बारिश भी एकदम से हो तो रुक गई है, और जो गर्मी और जो उमस है वो भैया अपन को बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही है। मन तो ऐसा कर रहा था कि घर में अगर ठंडी हवा में बैठे हैं कूलर या पंखा या एसी की हवा के सामने, तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि घर में से बाहर निकल जाए। लेकिन करे कहाँ भैया, कि खेती किसानी से काम तो करना ही है और वो अपने घर में बैठ के होत नहीं है। ई के लाने भैया अपन को घर से बाहर तो निकलना ही पड़ते हैं। तो मौसम को देखा तो भाई थोड़े अपने खान पान और जो अपने पहने भी ओढ़े के कपड़े में अगर बदलाव कर लें तो भैया मौसम को आनंद भी ले सकते हैं और काम काज भी अपन सही समय पर पूरे भी कर सकते हैं। तो इस समय भैया पसीना बहुत आ रहा है, तो हम तो आपसे यही कहें कि पानी की कमी शरीर में ना हो जाए, ई के लाने भैया समय समय पर अपन पानी पियत रहें। और संगे संगे भैया संजय भैया हम आपसे यही कहें कि टहल में जाए, स्वास्थ्य को भी ध्यान रखें, सवेरे भी अपन को उठ के टहलने जावात को भी ध्यान रखें। और खेती किसानी के लाने तो भैया जाए कि जो आवश्यक बदलाव हैं अगर वो अपन कर लें तो वो भी अच्छे हैं। कुल मिला के जा है कि भैया बतकाओ तो हम आपसे और भी करें, पहले सुन लेते हैं जो संदेश।

भैया देखो, अभी आपने सुनो हरिराम पुरोहित के स्वर में जो उन्होंने सुन लोक गीत। भैया देखो, खेती किसानी तो अपन करते ही हैं, और खेती से अपन को लाभ मिले ये कहलाने अपन दिन रात मेहनत भी खूब करते हैं। लेकिन जो अपनी मुख्य फसल है भैया, जैसे अपनी धान, गेहूं और सरसों, तो भैया ई को करवे के बाद अपन को एक लाभ निश्चित समय में और निश्चित मात्रा में ही मिलते हैं। तो हम तो आपसे यही कहें कि भैया अपन को इन मुख्य फसल के अलावा अपनी खेती के थोड़े से हिस्सा में आधुनिकता से जो खेती हैं उनको अपन को उपयोग करने, हाइब्रिड जो बीज हैं उनको अगर उपयोग करने हैं, जैसे फूलन की खेती कर लें, अगर अपन फूलन की खेती के संगे संगे अगर टमाटर की खेती कर लें हाइब्रिड, और सब्जी अगर लगा लें, तो भैया एक तो अपन को वर्ष भर पैसा मिलत रहे, और ऊपर से भैया अपन को एक अनुभव भी मिल जाए।

0: है कि अपन को खेती में काम में अपन को लाभ ज़्यादा है, तो अपन को इको भी उपयोग जरूर करने हैं। और संगे संगे भैया अपनी माटी की उर्वरा शक्ति या जहाँ तरह की उनकी उत्पादक क्षमता बनी रहे, इसके लाने भैया अपन को रासायनिक दवा और रासायनिक खाद को कम से कम उपयोग भी करने हैं। जैविक तरीके अपन जितना ज़्यादा अपना सकें उससे भैया अपन को जो उत्पादन मिले वह भी बहुत अच्छो गुणवत्तापूर्ण मिले। और आजकल तो भैया सब भैया अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत भी हैं, सब चाहते हैं कि कम खाओ लेकिन अच्छो खाओ। इसके लाने भैया अगर जैविक तरीके से जो जो भी उत्पादन अपन उगाते हैं अपने खेतन में और वह अपन मंडी में ले जाके बेचें, तो जब मान लो कि भैया वो हाथों ही हाथ बिक जाते हैं, अपन को बिल्कुल भी परेशानी को सामना नहीं करना पड़ता है। तो जैविक तरीके से अपन को खेती करने हैं, जब पे अपन को विचार करने हैं। और पहले भी तो भैया अपन जैविक तरीके से ही खेती करते थे, वर्मी कंपोस्ट खाद हुई, केंचुआ खाद हुई, और गोबर की जो खाद है वो अपन अपने खेतन में उपयोग करते थे। उसके बाद जो उत्पादन अपन को मिलता हो उससे भैया गुणवत्ता भी अच्छी रहा है, अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहा है। तो अपने खेतन में अपन को जैविक खेती और टिकाऊ खेती पर ध्यान देने हैं, और जैविक उत्पादन जितना ज़्यादा हो सके अपन को स्वयं भी करने हैं और अपने आसपास के लोगों को भी इस बात के बारे में बताने हैं कि जैविक तरीके से अपन को खेती करने हैं। भैया देखो समय समय पर वार्ता और भेंट वार्ता के माध्यम से जो आवश्यक जानकारी होते हैं वो हम आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से देते रहते हैं। तो आज जो भेंट वार्ता हम आपको सुनवा रहे हैं जैव उर्वरकों की उपयोगता, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कुलदीप सिंह और इनसे चर्चा कर रहे हैं सोहन सिंह। तो भैया सुन लेते हैं जो भेंट वार्ता।
1: किसान भाइयों फसल उत्पादन करते हैं, फसल उत्पादन में बीजों के साथ साथ खादों का विशेष महत्व होता है। खाद किस तरह प्रयोग करें इसी फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। पहले गोबर की खादें प्रयोग करते थे, बाद में हमारे किसान भाई फसलों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग करने लगे और अब बायो फर्टिलाइज़र फसलों में प्रयोग किए जा रहे हैं। बायो फर्टिलाइज़र क्या हैं और इनका किस तरह उपयोग करके फसलों से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं सहायक संचालक कृषि श्री कुलदीप सिंह। सिंह साहब आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सिंह साहब सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि ये बायो फर्टिलाइज़र क्या है।
2: हरित क्रांति के सूत्रपात के समय ही सघन कृषि का प्रचलन प्रारंभ हुआ और कृषि रसायनों के उपयोग निरंतर वृद्धि होती गई। इस कारण भूमि में कार्बनिक पदार्थों का समायोजन कम होता चला गया और मृदा स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ा। कृषि उत्पादन में स्थिरता के साथ साथ गिरावट आनी प्रारंभ हो गई। सघन कृषि प्रणाली के अंतर्गत पोषक तत्वों का मृदा से दोहन अधिक हुआ और उसकी भरपाई कम हो पाई। इन्हीं कारणों से वर्तमान में जैविक कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। जैविक कृषि में जैव उर्वरक मेन स्तंभ है उसका मुख्य। जैव उर्वरक खेती में प्रयोग किए जाने वाला एक सस्ता प्राकृतिक उत्पाद है जो भूमि में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विशेष सूक्ष्म जीवों से तैयार किया जाता है। ये सूक्ष्म जीव वायुमंडल की निष्क्रिय नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं।
1: सिंह साहब फसलों के भरपूर उत्पादन के लिए तीन मुख्य पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। वायुमंडल की नाइट्रोजन है, इसको अवशोषित करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। फास्फोरस का भी विशेष महत्व होता है और ये पौधों की जड़ों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं।
2: तो जो एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरम के प्रकार के जो जैव उर्वरक हैं सर, ये भूमि में जो फास्फोरस अनुपलब्ध स्थिति में है उसको ये घोल कर उपलब्ध कराते हैं। पौधों को प्रयोग करने की अवस्था में उसको बदल देते हैं फास्फोरस को।
1: अगर हमारे किसान भाई जैव उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो इनके उपयोग से कितने प्रतिशत तक फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है?
2: ये सर अलग अलग फसल पे जैसे अनुमानते जो औसत है 10 से 15% 20% तक वृद्धि हुई है सर।
1: जैसे आप बता रहे हैं कि ये जो जैव उर्वरक हैं ये प्राकृतिक उत्पाद हैं, तो इनका हमारे किसान भाई फसल उत्पादन में किस तरह प्रयोग करें?
2: जैव उर्वरकों का प्रयोग सर धान और दलहनों में सामान्यतः बीज उपचार विधि से किया जा सकता है। जैव उर्वरक सामान्यतः 200 ग्राम के पैकेट में विक्रय हो रहे

0: मार्केट में, और 200 ग्राम की मात्रा 10 किलोग्राम बीजों को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होती है। जैसे बड़े आकार के बीज हुए सोयाबीन, चना, मक्का, उनमें थोड़ा मात्रा 300 से 400 ग्राम दोगुनी, दो पैकेट लगा दें सामान्यतः 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होते हैं। जैव उर्वरकों से उपचारित करने के लिए सर एक पाव 250 ग्राम गुड़ ले लें या चावल का मांड ले लें, जैव उर्वरकों को उसमें अच्छी प्रकार से मिला लें और उसके बाद बीजों को साफ फर्श या कपड़े या पॉलीथीन की कोई सीट के ऊपर रखकर जैव उर्वरकों के घोल को बीज के ऊपर डालकर उसका स्प्रे या हाथों से मिलाएं उसको, जिससे कि प्रत्येक बीज के ऊपर एक परत जम जाए जैव उर्वरक की। उपचारित बीजों को छाया में सुखाएं और जितना संभव हो सके, जितना जल्दी हो सके तुरंत ही बुआई करें, उसको ज़्यादा समय ना रखें उपचारित बीज को। अगर आज बुआई नहीं हो पा रही है तो फिर उसको उतना ही रोक दें, उपचारित अगले दिन करें। नाइट्रोजन एवं फास्फोरस जैव उर्वरकों को एक साथ मिलाकर अगर प्रयोग करें किसान भाई तो उससे और अधिक लाभ में प्राप्त होता है। या सब्जियों या धान रोपी जाने वाली जो अन्य फसलें हैं उनमें जैव उर्वरकों का उपयोग करने के लिए एक किलोग्राम जैव उर्वरकों को 3 से 4 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल में पौधे की जड़ों को 5 मिनट तक डुबोकर पौधे की जड़ों को उपचारित करें, उसके बाद रोपाई करें। और जैव उर्वरकों का उपयोग सर सीधे भूमि में भी किया जा सकता है। इसके लिए जैसे आवश्यकता अनुसार जैव उर्वरक को 30 से 50 किलोग्राम कंपोस्ट खाद अथवा भुरभुरी प्रकार की मिट्टी में मिलाकर बीजों के ऊपर खूड में या फिर अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। इस विधि में जैव उर्वरक की मात्रा दोगुनी कर देनी चाहिए।
1: सिंह साहब, जैव उर्वरक प्रयोग करने से नाइट्रोजन के रूप में जैसे यूरिया है, फास्फोरस के रूप में फास्फेट खाद हैं, पोटास खाद हैं, ये प्रयोग करते हैं तो इनमें कुछ बचत होती है?
0: जी सर, इनमें सर एक तो मिट्टी की मेन तो इसका है सर कि खेत की स्थिति, जो प्राकृतिक और रासायनिक स्थिति में सुधार आता है और ऊपर से इनके मुकाबले रासायनिक खादों के ये सस्ते पड़ते हैं सर, और इससे जो जैव उर्वरक का जो उत्पाद करेंगे उससे जो फसल की उपज आएगी उसमें उसकी क्वालिटी रासायनिक के मुकाबले अधिक अच्छी रहेगी, मार्केट वैल्यू बढ़ेगी।
1: सिंह साहब, हमारे किसान भाई अगर जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें प्रयोग करते समय, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीवाणु होते हैं और वो किसी कारण से तापमान की वजह से या दूसरे कारणों से नष्ट न हो, इसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
0: जैव उर्वरकों का उपयोग करते समय सर कुछ मुख्य सावधानियां हैं, जैसे सर विश्वसनीय स्रोत से ही खरीदें और अंतिम तिथि जो है प्रयोग के लिए निर्धारित उससे पहले ही उपयोग करें, अगर तिथि निकल गई है तो उसका उपयोग न करें। फिर जैव उर्वरकों से उपचारित बीजों को धूप में नहीं सुखाना चाहिए सर, जहाँ तक संभव हो तुरंत ही बुआई कर देनी चाहिए। जैव उर्वरकों का उपयोग पर्याप्त मात्रा में सही विधि में करना चाहिए सर, और जैसे कि सर जैव उर्वरकों को रासायनिक उर्वरकों या अन्य कृषि रसायन, कीटनाशक, खरपतवार नाशक इनके साथ नहीं मिलाना चाहिए सर। जैसे जैव उर्वरकों का बीजोपचारण भी सीमेंट या उर्वरकों के खाली बोरों पर नहीं करना चाहिए सर, उससे भी वो प्रभावित हो जाता है। और यदि बीज को कीटनाशक अथवा फफूंदी नाशक रसायनों से उपचारित किया जाना हो तो इनके उपचार के बाद ही जैव उर्वरकों का प्रयोग करें सर, बीजोपचार करें। और बुआई के समय सर मृदा में पर्याप्त नमी का होना भी आवश्यक है, और जैसे कि किसान भाई अम्लीय तथा क्षारीय भूमियों में प्रयोग करते समय भी मृदा सुधारकों का प्रयोग भी करें। ज़्यादातर सभी किसान एक ही तरह के जैव उर्वरकों को किसी भी फसल में इस्तेमाल करते हैं, ये भी गलत प्रणाली है। सभी दलहनों फसलों में एक ही प्रकार के राइजोबियम जैव उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्रत्येक फसल का अलग अलग प्रकार के राइजोबियम जैव उर्वरक और सूक्ष्म जीव होते हैं। सबसे आसान सर जो भी जैव उर्वरक के पैकेट पर जो सावधानियां और बातें लिखी हैं उनका कृषक भाई अवश्य पालन करें, और सबसे मुख्य है सर स्रोत जो है वो विश्वसनीय स्रोत से ही खरीदें।
1: सिंह साहब, अंत में चलते चलते हमारे किसान भाइयों को और क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे हमारे किसान भाई जैव उर्वरकों का उपयोग करके फसलों से अच्छा लाभ कमा सकते हैं?
0: कृषक भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उपज में बढ़ोतरी एकदम से जैव उर्वरकों द्वारा नहीं आंकी जा सकती, जैसा कि रासायनिक यूरिया, डी ए

0: रूपी से एकदम से वृद्धि होती है, लेकिन वो दीर्घकालीन प्रभाव उसके खेत पर भूमि पर पड़ते हैं और उसकी दशा सुधरती है और जो खेत की उपज है उसकी भी गुणवत्ता बढ़ती है। इसलिए जैव उर्वरकों का उपयोग अधिक से अधिक किसान भाई करें और भारतवर्ष में दक्षिण और पश्चिम क्षेत्रों में इसका ज़्यादा कृषक भाई प्रयोग कर रहे हैं और वहाँ उनको उनके उम्मीद उनकी अपेक्षाओं पर अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है।
1: सिंह साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों को फसलों में जैव उर्वरकों की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी और हमारे किसान भाई इस जानकारी से निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता जैव उर्वरकों की उपयोगिता और ई विषय पर जानकारी दे रहे थे कुलदीप सिंह और उनसे चर्चा कर रहे थे सोहन सिंह। भैया देखो, जो जो जानकारी अपन को मिली है, अगर अपन को ध्यान रखें तो जब मान लो कि अपन खेती की जो उपजाऊपन है वो अपन बरकरार रख सकते हैं और संगे संगे अधिक गुणवत्तापूर्ण उत्पादन भी ले सकते हैं। तो बताओ तो और भी सुने, पहले हम आपको सुनवा देते हैं अर्चना जाटव के स्वर में जो नौ सौ लोग।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

भैया भाई आपने सुनो अर्चना जाटव के स्वर में जो उन्होंने सुन लोकगीत। भैया देखो बसकाय को मौसम भी आने वाला है और बसकाय के मौसम में अपन को जो थोड़े बहुत ज़रूरी काम है वे अपन को जरूर करने हैं। एक तो जाहे कि अपन को बारिश के पानी को बिल्कुल व्यर्थ बह के नहीं जान दे रहे हैं, जब बात को अपन को अच्छे से ध्यान रखने हैं स्वयं भी और अपने आसपास के लोगों को भी बातें में अपन को जागरूक करने हैं। क्या कि देखो भैया पीवे को पानी तो अपने पास सीमित मात्रा में है, वैसे अपने पृथ्वी पर पानी बहुत है लेकिन जो पीवे को मीठा पानी है वो उसके स्रोत जो है भैया वो बिल्कुल नियमित हैं। और हम आपसे यही कहें कि बारिश की एक एक बूंद को अगर अपन सहेज के रख लें तो जब मान लो कि ना तो अपन को खेती किसानी के लाने परेशान होने पड़े और ना ही अपने पीवे के पानी के लाने अपन को एक एक मटका या एक एक बाल्टी पानी के लाने दूर तक ना जाने पड़े। बारिश के पानी के लाने भैया अपन को जा करने जा है कि अगर ये अभी थोड़ा समय भी है अपने आसपास अगर गांव में जो चेक डैम है जो अपनी तालाब पोखर या कुआं या बावड़ी हैं अगर उनमें भैया गाद या मिट्टी जम गई है तो थोड़ा सा श्रमदान करके अगर अपन उन गहरीकरण कर लें तो जब मान लो कि भैया उनमें बहुत अधिक मात्रा में अपन बारिश के पानी को रोक सकते हैं, सहेज सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। और आधुनिक जो तकनीकें हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर इको भी अपन उपयोग कर लें तो भैया छत के पानी को भी अपन पाइप के माध्यम से गड्ढे के द्वारा भैया ज़मीन में उतार सकते हैं। और इससे फ़ायदा जा हुई है कि अपने कुआं में और अपने जो बोरवेल हैं जो अपने हैंडपम्प हैं उनसे अपन को वर्ष भर पानी की उपलब्धता बनी रहे जिससे अपन को पीवे के पानी के लाने परेशान नहीं होने पड़े। और अगर अपने गाँव के आस पास अगर ऐसी कोई ढलान वाली जगह है जहाँ पानी अपन कोशिश करके रोक सकते हैं तो वहाँ अपन को चेक डैम को

निर्माण जरूर करने हैं। कुल मिला के जाए भैया के बारिश के एक एक बूंद को अपन को सहजने हैं, और कहो भी ज़्यादा ना कि भैया जल है तो कल है। जल के बिना भैया अपने ना तो खेती किसानी के काम काज हो सकते हैं, ना ही अपनी घर गृहस्थी के, और ना ही अपना भविष्य उज्जवल है। तो बारिश की एक एक बूंद को अपन को सहेजने हैं, एक लाने स्वयं भी जागरूक होने हैं और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करने हैं। अब भैया हम सुन लेते हैं बाबूलाल कुशवाहा और उनके संग साथी इनके स्वर में जुनून सुलोक गीत।

भैया अभी आप सुन रहे थे बाबूलाल कुशवाहा और उनके संगे साथी इनके सुर में जो उन्होंने सुर लोकगीत। भैया देखो आज कछु विशेष भी है, काहे कि भैया आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई को अपन मनाते हैं विश्व युवा कौशल दिवस। भैया देखो क्या को नाम ही है भैया कौशल दिवस, तो मतलब कौशल को भैया अपन को कला है अगर अपने पास हैं और अपन को सीखने की ललक है तो भैया अपन को आगे आने हैं। खेती किसानी के संगे संगे अपना जो युवा है जो अपनों उकिलाने अगर अपन शासन की ओर से जो प्रयास हो रहे हैं कि उनको कोनो न कोनो स्किल सिखाई जाए, उनको कोनो कला सिखाई जाए, जैसे कि अगर वो मोबाइल को काम सीखो चाह रहे हैं या फिर कंप्यूटर को काम सीखो चाह रहे हैं, तो उकिलाने भी देखो शासन ने भी प्रयास करो है कि वे आगे आए और अपनों जो स्किल है वो सीखें जिससे कि उनको रोज़गार मिल सकें। नौकरी के भरोसे अपन को नहीं करने हैं, अपन को स्वयं के कछु न कछु स्किल सीखने हैं, कछु न कछु अपन को ऐसा हुनर जरूर रखने हैं अपने पास जिससे कि अपने अपन को पैसे की आवक होत रहे और अपने परिवार को जो भरण पोषण है वो अपन आसानी से कर सकें। तो हम तो आपसे यही कहें कि अपना जो युवा पीढ़ी है उनको आगे आने हैं और कोनों को ना कोनो स्किल अगर अपन को सीखने की ललक है तो ज़रूर सीखें और उनको रोज़गार को माध्यम बनाएं जिससे कि पैसा भी आए और अपनों समाज में नाम भी हुई है और अपन आगे भी बढ़ सकें। तो भैया देखो स्टूडियो की घड़ी भी हमको अब इशारों कर रही कि हम अपने सभी श्रोता भैया से लेने आए पैदा, तो चलत हैं सभी श्रोता भैया को प्रेमचंद भैया की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुत ही अहम फैसले लिए हैं, जो पूरे देश के विकास के लिए, हमारे मूलभूत ढांचे के विस्तार के लिए अहम है। क्या हैं ये फैसले और किस तरह से ये हमारी अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करेंगे, इस सब पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं

0: वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन, आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: धन्यवाद
0: अदिति जी। आज कई तरह के अलग अलग फैसले लिए गए हैं, विभिन्न जो हमारे प्रमुख क्षेत्र हैं हमारी अर्थव्यवस्था के, उससे जुड़े हुए, सेमीकंडक्टर जो हमारा इकोसिस्टम है या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स, रेलवेज या एग्रीकल्चर से जुड़ा एक बहुत अहम फैसला है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से बहुत जुड़ा हुआ एक अहम फैसला लिया गया है। आइए सुनते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकॉन 2.0 मिशन से जुड़े कैबिनेट निर्णय के बारे में क्या कहा।
2: सेमीकॉन 2.0, 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। हम सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है जो कि आज जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, जो कैमरा है, घर में फ्रिज, टीवी, एसी, स्कूटी, कार, ट्रेन, चाहे मिसाइल्स हो, कुछ भी हो, सब में सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है और इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में बहुत ही एक बड़ा फैक्टर बन के उभरा है।
0: इसको आप कैसे देखती हैं इस परिदृश्य में कि सेमीकॉन 1.0 कुछ वर्ष पहले लाया गया था?
1: आपने जैसा कि कहा कि बहुत ही मूलभूत परिवर्तन के लिए बड़े बड़े आज डिसीजंस लिए गए हैं। अगर आप सारे डिसीजंस को एक तार में पिरोकर देखना चाहें तो आप जानेंगी कि ये मोस्टली आत्मनिर्भरता की तरफ देश को ले जाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रमों की घोषणा आज हुई है, जिसमें सेमीकॉन 2 जो आपने कहा, जो सबसे अहम आज का डिसीजन है, वो देखिए अहम इसलिए है क्योंकि पूरे विश्व का जो सबसे इम्पोर्टेंट सब सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। आप किसी भी बड़े देश को देख लीजिए, जो जो देश इकोनॉमिक तरक्की जल्दी कर पाए हैं वो देश हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। जैसे हमारा कॉम्पिटिटर है चाइना, तो उससे हम कम्पीट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। अब मोबाइल एक्सपोर्ट्स में भारत ऑलरेडी दूसरे नंबर का देश बन चुका है, हम चाइना से ही पीछे हैं और हम बहुत तेजी से प्रगति करने वाले हैं। और सेमीकॉन की इंडस्ट्री सोनू जी इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है जिसका सेमीकॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो पूरे स्ट्रेटेजिक सेक्टर को आज की डेट में ड्राइव कर रहा है। ना सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बल्कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो इंडिया की है, स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सेमीकंडक्टर को बढ़ावा दें और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इस इंडस्ट्री में यूज होते हैं वो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें। आप जानती हैं कि माइक्रोन का बहुत बड़ा एक प्लांट ऑलरेडी कमर्शियल प्रोडक्शन में जा चुका है। उसके बाद केन्स का प्लांट जो 46 एकर्स में फैला हुआ है उसका भी अब शुरुआत हो चुकी है, तो उसी को आगे ले जाने के लिए आज इसकी घोषणा की गई है।
0: सो ये जो एक इकोसिस्टम ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, जैसे आप कह रही हैं कि 12 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए थे सेमीकॉन 0.1 के अंदर और ऑलरेडी 3 ऑपरेशनल हो चुके हैं, बाकियों पे बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। सो आपको लगता है ये मोमेंटम जो बना रहे उसके लिए आज का जो ये अनाउंसमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका किस तरह से हमारे जो रोजगार सृजन पर भी जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो, उसके बारे में भी अगर आप हमें बता सकें।
1: देखिए कम से कम इससे 60,000 जॉब्स की जनरेशन का प्लान है। और आप ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में सेमीकंडक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज की डेट में करीब, अगर पूरे देश का लैंडस्केप आप देखिए, 105 स्टार्टअप्स हैं जो इसी सेक्टर में कार्यरत हैं इस टाइम, और जो फंडिंग सपोर्ट ले रही हैं वो ऑलरेडी जो मतलब कमर्शियल प्रोडक्शन की तरफ भी जा रही हैं अपने लेवल पर, वो करीब 24 हो चुकी हैं। और कम से कम ये जो प्लांट्स आज की डेट में काम कर रहे हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, जैसा कि आपने देखा कि आज अश्विनी वैष्णव जी ने जब अपनी प्रेजेंटेशन दी, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ बताई कि हमारे देश की दूर दराज गांवों की लड़कियाँ, उनको हम चिन्हित करके फिर सेमीकंडक्टर के ऑपरेशंस में उनको ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है, थाईलैंड जा रही हैं बच्चियाँ। झारखंड की एक लड़की का वहाँ पर वक्तव्य हुआ और उसने बताया कि वो कह रही है कि मैं कभी झारखंड से बाहर नहीं गई और सीधा थाईलैंड गई और सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लेके अब वो सेमीकंडक्टर प्लांट में कार्यरत है। तो ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि कैसे रूरल इंडिया की लड़कियों को ट्रेन करके, और 60% जो बच्चे और जो वर्कफोर्स इस वक्त सेमीकंडक्टर ऑपरेशंस में भारतवर्ष में है उसका 60% महिलाएं हैं। सो ये भी इम्पोर्टेंट है। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है वो ये है कि जो नया सेमीकंडक्टर का करिकुलम बन गया है, क्योंकि अब हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, तो करीब 500 कॉलेज भारत के ऐसे हैं जिन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया है और 8,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रतिवर्ष सेमीकंडक्टर करिकुलम को पढ़ रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ये सब कल को जाकर हमारे वर्कफोर्स को एनर्जाइज करने वाले हैं।
0: और इस सरकार ने हमेशा ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का उस पर बहुत बल दिया है, उसके विकास पर। और सड़कों को लेकर आज जो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी के आसपास एक 46 किलोमीटर का स्ट्रेच जो 6 लेन ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर है, और दूसरा प्रोजेक्ट है 43 किलोमीटर से ज्यादा 6x4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। इन दोनों में जो 25,400 करोड़ रुपए का खर्च बताया है सरकार ने किया जाएगा, इनके प्रमुख फायदे क्या होंगे इस जो एरिया में रहते हैं लोग, और अगर हम कारोबार की बात करें, टूरिज्म की बात करें, थोड़ा विस्तार से बता सकें तो।
1: देखिए, आजकल हमारे शहरों की सबसे बड़ी चैलेंज है कि हम अपने गंतव्य स्थान पर वक्त से पहुंच पाएं। उसी से हमारी प्रोडक्टिविटी डिपेंड होती है। हम जब सड़क पर बहुत सारा वक्त ज़ाया करते हैं या ड्राइव कर रहे हैं तो वक्त ज़ाया करते हैं, तो वो हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है, हमारी अर्बन मोबिलिटी को लो करता है और ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को डाउन करता है। बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हो चुकी हैं जो हमें ये बताती हैं कि मॉडर्न एक्सेस कंट्रोल्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स अगर हम बनाते हैं तो उससे ना सिर्फ अर्बन कनेक्टिविटी बढ़ती है सोनू जी, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हम बेहतर काम कर पाते हैं, हम इकोनॉमी में अपना बेहतर योगदान दे पाते हैं। तो ये एक साइक्लिकल इम्पैक्ट होता है पूरी इकोनॉमी पर। और जैसा कि कनेक्टिविटी से जाहिर सी बात है कि आसपास के जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको भी बहुत गति मिलेगी क्योंकि आसान हो जाएगा आवागमन। ये जो दो प्रोजेक्ट्स वाराणसी के लिए घोषित हुए हैं इनसे बहुत सारी अर्बन मोबिलिटी की जो आजकल की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ट्रैफिक चोकिंग की वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ना सिर्फ लोकल रेजिडेंट्स को इसका फायदा होने वाला है, वाराणसी एक बहुत ही बड़ा इस वक्त टूरिज्म डेस्टिनेशन बन गया है। रिलीजियस टूरिज्म की दृष्टि से देखें तो बहुत ही अहम डेस्टिनेशन बन गया,
0: इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए इंटरनेशनल आल्सो।
1: और आप देखिए इनक्रेडिबल इंडिया का जो ब्रांड है उसको भी गति मिलती है ना जब ग्लोबल टूरिस्ट आते हैं और कनेक्टिविटी इंप्रूव नजर आती है, सीमलेस ट्रांसपोर्ट नजर आता है, तो फिर वो एक अच्छा इंप्रेशन लेके भारत का बाहर जाते हैं, उससे फिर हमारी ग्लोबल और इंटरनेशनल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है।
0: और अगर हम वापस फिर एडवांस टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन्स के लिए जो अप्रूवल आया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का 62,500 करोड़ रुपीस का आउटले है 5 सालों के अंदर, और उसमें इंसेंटिव सपोर्ट की भी बात की गई है, और एक जो बड़ा उन्होंने कहा है कि लक्ष्य है कि भारतीय ब्रांड्स बिल्ड हों, इसको आप कैसे देखती हैं? अभी तक जो मोबाइल फोन में हमने प्रगति देखी है पिछले 11 वर्षों में, उसको देखते हुए ये आपको और कितना एक आगे ले जाने वाला स्टेप दिखाई देता है?
1: देखिए, जो मोबाइल फोन्स हैं इस वक्त भारत की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में टॉप का प्रोडक्ट है, और हम अगर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें और हम पिछले दशक के कंपैरिजन में देखें तो 2014 में हमारा जो स्थान था इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में वो हम 9th स्पॉट पर थे पूरे विश्व में, और आज की डेट में हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 3rd नंबर पर आ गए हैं। तो ये 10 साल का हमारा प्रोग्रेस है। वहीं अगर हम विद इन द सेक्टर किसी प्रोडक्ट की बात करें तो मोबाइल्स एक ऐसा प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का जो इस वक्त टॉप एक्सपोर्टेड कमोडिटी है इंडिया से। मतलब आप समझिए कि डीजल से भी आगे हम डीजल का एक्सपोर्ट करते हैं, फ्यूल का भी कुछ एक्सपोर्ट हम करते हैं, और आज ही अश्विनी वैष्णव जी ने भी बताया कि ये टॉप एक्सपोर्टेड कमोडिटी बन चुका है, और आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि 10 साल पहले टॉप 100 में भी नहीं था। टॉप 100 एक्सपोर्टेड आइटम जो इंडिया से हैं उसमें मोबाइल फोन का जिक्र नहीं था, और आज वो टॉप एक्सपोर्टेड कमोडिटी बन गई है। तो ये जताता है और दर्शाता है कि देश में इनहेरेंट कैपेसिटी और इनहेरेंट पोटेंशियल कितना था। आपको याद है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आई
0: जी,
1: आई थिंक 2021 में आई, और उसको कितना बड़ा उसका लाभ हुआ है इकोनॉमी को कि आज की डेट में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इतनी बढ़ गई है कि एक्सपोर्ट में कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है
0: जी।
1: और सेकेंडली जो और भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो ये है कि इस वक्त भारत में 98% जो फोन यूज हो रहे हैं वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड फोन्स हैं। तो हम ना सिर्फ एक्सपोर्ट सेगमेंट में बढ़ चढ़ के निकल रहे हैं मोबाइल सेक्टर में, हम इवन डोमेस्टिकली इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और अब यूज भी कर रहे हैं। और जैसा कि सरकार का अनाउंसमेंट है कि इंडिया के मोबाइल ब्रांड्स को पूरे विश्व में एक्सेप्टेबिलिटी दिलानी
0: जी,
1: तो ये एक चैलेंज है। आई थिंक उसी चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए आज ये स्कीम लाई गई है।
0: अदिति, एक और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यूरिया में आत्मनिर्भरता हम अचीव कर सकें उसके लिए जो पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई है नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई निवेश नीति यूरिया क्षेत्र से संबंधित एक कैबिनेट निर्णय के बारे में भी बात की। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
2: नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया। हम सब जानते हैं कि यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। ईच वन ऑफ देम वुड बी प्रोड्यूसिंग अबाउट 12.7 लाख मेट्रिक टन्स। उससे करीब 1 करोड़ मेट्रिक टन्स के प्रोडक्शन की तरफ हम जाएंगे। इस पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इंपोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से भारत की कंप्लीट रिक्वायरमेंट, जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की, वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा।
0: इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं?
1: देखिए, ये तो एक बहुत ही बड़ी स्कीम है जो आज अनाउंस हुई है, और मेरे हिसाब से इसका महत्व बहुत दूर और देर तक हम देखते रहेंगे। फॉर इंस्टेंस, आपने अभी जब देखा वेस्ट एशिया का क्राइसिस हुआ, तो जो सप्लाई चेन्स चरमराई, उसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पर हुआ? उन्हीं कमोडिटीज पर जिस पर हमारी इम्पोर्ट निर्भरता है
0: जी।
1: जिसमें हम क्रूड को मानते हैं, हम पहले क्रूड लेकर आते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, फिर हम उससे फ्यूल बनाते हैं, पेट्रोल डीजल बनाते हैं। हमें कितना बड़ा हिट हुआ, हालांकि हमारी इकोनॉमी ने उसको बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब किया, देश ने फटाफट डाइवर्सिफाई किया सोर्सेज ऑफ क्रूड को। सिमिलरली यूरिया का इम्पोर्ट एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। और देखिए, हमारा एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी है, हम ये ना भूलें सोनू जी कि हम जितने मर्जी एडवांस्ड हो जाएं, हमारे देश में जो रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की, वो किसान है, और किसान के माध्यम से फार्मिंग है और एग्रीकल्चर है। तो उसकी तरफ जो ध्यान सरकार ने आज दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे होने क्या वाला है, इससे हर प्लांट जब ये बन जाएगा, 8 प्लांट्स की घोषणा हुई है, 6 ऑलरेडी बन चुके हैं पिछले 10 साल में, 8 और बनेंगे। जब एक एक ये प्लांट कायम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, 250 करोड़ प्रति प्लांट इंपोर्ट पे जो जा रहा है, 250 करोड़ प्रति प्लांट जो जा रहा है, वो हम सेव करने वाले हैं, और 1 करोड़ मेट्रिक टन का प्रोडक्शन हम बढ़ाने वाले हैं। तो आप सोचिए कि आपने देखा है कि ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड होता है यूरिया, तो इसके लिए हेल्प होगी फार्मर्स की।
0: सो बहुत ही दूरगामी प्रभाव वाले सारे आज डिसीजंस थे, जिसमें 2 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स रेलवेज के भी शामिल हैं उड़ीसा और झारखंड में, जिनसे जो रोड पर भार है वो कम होगा, रेलवेज की तरफ डाइवर्ट होगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होंगे, एनवायरमेंट को फायदा होगा। बहुत धन्यवाद आपका आदित्य जी, आप आई और आपने इन अहम फैसलों पर, उनकी बारीकियों पर हमें जानकारी दी।
1: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थीं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर केंद्रित पूर्वावलोकन कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है महाप्रभु जगन्नाथ जी धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में कल यानी गुरुवार 16 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर पूर्वावलोकन।
1: करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का जीवन स्वरूप एक अनुपम महापर्व है पूरी की विश्व विख्यात रथ यात्रा। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उड़ीसा के समुद्र तट पर बसे पवित्र नगर पुरी में श्रद्धा का ऐसा महासागर उमड़ पड़ता है जिसकी भव्यता शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। वर्ष भर भगवान मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को दर्शन देते हैं, परंतु

0: तीनों रथों के निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। प्रतिवर्ष नए रथ बनाए जाते हैं। सदियों से चली आ रही विधियों के अनुसार परंपरागत शिल्प कला में निपुण सैकड़ों कारीगर दिन रात परिश्रम करते हैं और आधुनिक मशीनों के युग में भी इन विशाल रथों का निर्माण परंपरागत तकनीकों से ही किया जाता है। तीनों में सबसे बड़े भगवान श्री जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदीघोष। ये रथ 16 विशाल पहियों वाला है। पीले और लाल रंग के रेशमी कपड़े जरी आदि से सुंदर रूप से सजे इस रथ को गरुड़ ध्वज तथा कपित ध्वज भी कहा जाता है। भगवान बलभद्र का रथ है ताल ध्वज, जो 14 पहियों का है और हरे व लाल रंग के कपड़ों से सजाया जाता है। जबकि देवी सुभद्रा के रथ का नाम है देवदलन या दर्पदलन, जो 12 पहियों वाला सौम्य और आकर्षक रथ है। काले एवं लाल रंग के कपड़े इस रथ पर शोभायमान होते हैं। ये तीनों रथ केवल लकड़ी के बने ढांचे नहीं बल्कि चलते फिरते देवालय हैं। तीनों ठाकुरों को रथ यात्रा के दिन रथारूढ़ कराने से पहले श्री मंदिर के पुरोहित तीनों रथों की प्रतिष्ठा पूजा करते हैं। श्री बलभद्र जी, चक्रराज सुदर्शन, माता सुभद्रा और श्री जगन्नाथ जी को एक विशेष प्रक्रिया से श्री मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है, जिसे पोहंडी विजय कहा जाता है। और जब शंखनाद, घंट ध्वनि और लाखों श्रद्धालुओं के कंठों से एक साथ जय जगन्नाथ की गूंज उठती है तो पूरा वातावरण भक्ति से सराबोर हो उठता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं ईश्वर अपने भक्तों के बीच उतर आने को आतुर हो। रथ यात्रा के विषय में मूल तथ्य की जानकारी लेते हैं जगन्नाथ संस्कृति के जानकार डॉक्टर शांतनु कुमार रथ से।
1: महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सारे विश्व में अनन्य है। ये इसीलिए अनन्य है कि यहाँ भक्त भगवान को नहीं स्वयं भगवान भक्तों को दर्शन करने के लिए अपना मंदिर छोड़कर बाहर आ रहे हैं। इसको कहा जाता है पतित पावन यात्रा। इसका मतलब ये है कि संसार में आकर माया और संस्कार बस मनुष्य जो पतित हो जाता है, इन पतितों मनुष्यों को पावन करने के लिए महाप्रभु स्वयं ये यात्रा रचते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रथे तो वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ ये हुआ कि रथ पर आरूढ़ महाप्रभु को दर्शन करने से मनुष्य को अपने अंदर विराजमान आत्मा का अनुभव हो जाता है। ये अनुभव ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराता है। रथ यात्रा के सारे क्षण ऐसा हो जाता है कि यह भक्त और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रहता। ये ऐसे एक बिंदु है जहाँ दोनों समाहित हो जाते हैं। धर्म, जात, वर्ण, संप्रदाय, विचार से ऊपर उठकर महाप्रभु जगन्नाथ सारे विश्व मानव को प्रेम करने का जो संदेश देते हैं, यही इस यात्रा का महत्व है। महाप्रभु कहते हैं कि मैं सभी को प्रेम करता हूँ, तुम भी करो। महाप्रभु का यह संदेश शत्रु भाव से सड़ता हुआ सारे विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक भी है।
0: अपने अपने रथों पर जब तीनों ठाकुर विराजमान हो जाते हैं तब होता है रथ यात्रा का एक अत्यंत प्रेरणादायक अनुष्ठान, जिसे छेरा पोहरा कहते हैं। छेरा पोहरा विधि के पीछे के संदेश के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं रथ यात्रा के भाष्यकार श्री मोहन मजीठिया से।
2: दो शब्दों को मिलाकर छेरा पोहरा नामकरण हुआ है। छेरा का अर्थ है चंदन का गाढ़ा घोल और पोहरा का अर्थ है झाड़ू से साफ करना। ये एक विशेष नीति है जिसके लिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के आद्य सेवक माने जाने वाले पुरी के गजपति महाराजा को सौभाग्य प्राप्त है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ सुदर्शन और सभी पार्श्व देवी देवता जब रथों पर विराजमान हो जाते हैं तब गजपति महाराजा के पास संदेशा भेजा जाता है। महाराजा राजकीय वेशभूषा में एक स्वतंत्र रूप से बनी पालकी में बैठकर प्रभु की सेवा में उपस्थित होते हैं। रथारूढ़ ठाकुरों के दर्शन, पूजा, आरती के साथ साथ सोने की मुठ वाली झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। उसके बाद चंदन मिश्रित जल का सिंचन कर महाराजा अपनी छेरा पोहरा की नीति संपन्न करते हैं। राजा और प्रजा के बीच के संबंध तथा धर्म के प्रति राज परिवार के समर्पण भाव को दर्शाती ये परंपरा प्रतीक है भक्ति का, विनम्रता का, समानता का। जहाँ राजा अपने पद प्रतिष्ठा के अहंकार को त्याग कर सेवक बन जाते हैं, क्योंकि जो जगत के नाथ हैं, जो जगत के सम्राट हैं, उनके आगे राजा हो या सामान्य व्यक्ति, सभी एक बराबर हैं, सभी उन्हीं के सेवक हैं।

0: जगन्नाथ संस्कृति में गोवर्धन मठ की विशेष भूमिका के बारे में बता रहे हैं गोवर्धन पीठ की आदित्य वाहिनी के प्रमुख श्री मातृ प्रसाद मिश्र।
1: आदि शंकराचार्य भगवान को ब्रह्मोद्धारक माना जाता है, क्योंकि जगन्नाथ आदि चतुर्धा विग्रह 164 साल भूमिगत थे। आदि शंकराचार्य भगवान शंकर दिग्विजय यात्रा में बृहद भारत को परिभ्राजक रूप में परिक्रमा करते हुए श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंचने के बाद उनको सपा बल के मालूम हुआ कि जगन्नाथ आदि चतुर्धा विग्रह मंदिर के रत्न सिंहासन पर विराजमान नहीं है। उस समय आदि शंकराचार्य जी भगवान ने तत्कालिक राजा को आदेश देकर वनजाग पद्धति ने ब्रह्म को उद्धार किया। केवल ब्रह्म ही था, क्योंकि दारू विग्रह भूमिगत होते हुए क्षय हो गए थे। उसी वजह से आदि शंकराचार्य भगवान पुनः जगन्नाथ आदि चतुर्धा विग्रह को रूप प्रदान किया। वही जगत गुरु जी जो मंदिर के सारी रीति नीति परंपरा पूजा व्यवस्थावली सब कुछ तय किए, भारत से कोने कोने से ब्राह्मणों को बुला के 16 शासन प्रतिष्ठा किए, मुक्ति मंडप प्रतिष्ठा किए। पहले महाप्रसाद भक्तों के लिए उपलब्ध नहीं था, केवल सेवायत वर्गों के लिए उपलब्ध था। सारी आने वाले भक्तों के लिए भी इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ महाप्रसाद प्राप्त होना चाहिए, इसीलिए प्रसाद बढ़ाया, भोग मंडप प्रतिष्ठा किया। इतने कृत्या आप देख रहे श्री जगन्नाथ मंदिर की व्यवस्था में, सारी कृतियों का नियामक आदि शंकराचार्य भगवान है। उस समय से 2005 साल से वही स्वर्णिम इतिहास आज भी श्री मंदिर व्यवस्था में प्रचलित है। वर्तमान में वही गोवर्धन मठ पूरी पीठ के जो आचार्य पद में वर्ण होते हैं, वही श्री मंदिर का सारी रीति नीति परंपरा धार्मिक कृतियों का नेतृत्व लेते हैं।
0: पूरी की रथ यात्रा प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को देश विदेश से अपनी ओर आकर्षित करती। तीनों देवता गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं और वहां वे 7 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद प्रारंभ होती है वापस घर लौटने की यात्रा, जिसे बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। वापसी के मार्ग में भगवान अपनी मौसी माँ के मंदिर के आगे रुकते हैं, जहाँ उन्हें भोग के रूप में उड़ीसा का प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन पोड़ो पिठा अर्पित किया जाता है। यह परंपरा भगवान और उनके भक्तों के बीच पारिवारिक स्नेह का सुंदर उदाहरण है। फिर श्री मंदिर के बाहर रथों पर ही पारंपरिक रूप से ठाकुरों को स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है। सोना वेश में भगवान के दर्शन करने के लिए भी देर रात तक भक्तों की लंबी कतार लगती है। श्री मंदिर में माता लक्ष्मी जी को छोड़कर अपने भाई बहन के साथ यात्रा पर निकले महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी जब वापस आकर मुख्य मंदिर में प्रवेश करने को होते हैं, तब देवी लक्ष्मी क्रोध और अभिमान के कारण मंदिर के द्वार बंद कर देती हैं। इस अनोखी परंपरा के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं रथयात्रा भाष्यकार श्री प्रताप चंद्र त्रिपाठी।
2: जिस लीला में भगवान श्री जगन्नाथ अपनी मां के पास भेंट करने के लिए 9 दिन की यात्रा करते हैं, यात्रा उपरांत श्री मंदिर को पुनः लौटने वाली लीला की अंतिम लीला लीलाद्री विजय लीला रूप में जाना जाता है। इस लीला में सबसे पहले चक्रराज सुदर्शन, दाऊ बलदेव जी, बहन सुभद्रा माता जी एक एक होकर रथ से उतरकर सिंहासन की ओर यात्रा करते हैं, उसको गुटी पहंडी कहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी जब जब मंदिर की सिंहासन से बाहर आते हैं, तब भक्तों के साथ भेंट होने के लिए मन में उत्सुकता की भाव रहता है, जिस कारण प्रभु जी धाड़ी पहंडी में आते हैं। अर्थात भाव यह है कि भक्तों को छोड़कर उनसे दूर हटने के लिए प्रभु जी मन नहीं करते हैं, इसलिए धीरे धीरे एक बाद एक अंदर जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नीलाद्री विजय की यात्रा में बलदाऊ और सुभद्रा जी अंदर जाने उपरांत जब जगन्नाथ जी सिंहासन की ओर यात्रा शुरू करते हैं, तो माँ महालक्ष्मी क्रोध अभिमान आदि भाव से मंदिर के द्वार को बंद कर देते हैं। माँ महालक्ष्मी जी को अपनी रथ यात्रा में साथ न लेने के कारण क्रोध में आकर ऐसी मनुष्यचित लीला करते हैं। दूसरी भगवान जगन्नाथ जी भी माँ महालक्ष्मी जी की गुस्सा को शांत करने के लिए अपने साथ वस्त्र अलंकार तथा रसगुल्ला भी लेकर जाते हैं और महालक्ष्मी जी को मनाते हैं और सिंहासन की ओर जाते हैं। परम ब्रह्म को यह मनुष्य लीला वास्तव में बड़ी अनोखी है, आनंदमय शास्त्रीय होने साथ साथ संसार कल्याण का कारण भी है।
0: रथ यात्रा में श्रद्धालुओं की निरापत्ता एवं श्रृंखलित रथ यात्रा के लिए की गई विधि व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं पुरी जिला के पुलिस अधीक्षक श्री प्रतीक सिंह।
3: सारे डिपार्टमेंट सबकी तरफ से मिलके एक मिलित प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है। इस वर्ष अगर हम देखेंगे तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने इवैक्यूएशन प्लान को सुदृढ़ किया है, पार्किंग व्यवस्था को बढ़ाया गया है, इन्फॉर्मेशन चैनल्स बढ़ाए हैं, पब्लिक के साथ हम जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं टाइमली शेयर करना चाह रहे हैं। एम्बुलेंस मूवमेंट, फर्स्ट एड सेंटर्स का इफेक्टिवनेस, इस सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन इम्प्रूवमेंट करने के लिए सारी एजेंसी सारे डिपार्टमेंट मीटिंग करते हैं रेगुलरली, सब लोग मिलके एज अ टीम काम कर रहे हैं।
0: श्री मंदिर के मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी रथ यात्रा के सुचारू संचालन के विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं।
4: स्पेशल एम्फेसिस इज बीइंग लेड ऑन एंश्योरिंग द स्मूथ कंडक्ट ऑफ रिचुअल्स, द नीति एज वी कॉल्ड, एफिशिएंट क्राउड मैनेजमेंट, क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर सर्विसेज, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड इफेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड ऑल द कंसर्न डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो मेनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर वर्किंग इन क्लोज कोऑर्डिनेशन टू फैसिलिटेट ए वेरी सेफ, ऑर्डरली एंड स्पिरिचुअली फुलफिलिंग रथ यात्रा फॉर द डिवोटीज कमिंग फ्रॉम फार अक्रॉस द वर्ल्ड। The Sri Jagannath Temple Administration expresses its gratitude to all the Sabbaths of the Sri Mandira, the officials, the volunteers, and all the stakeholders for their wholehearted cooperation and dedication. With the divine blessings of Mahaprabhu Sri Jagannath, every effort is being made to ensure the successful and peaceful conduct of this year's chariot festival. We request all the devotees coming for this grand spectacle to kindly follow the instructions and the procedures laid out for them. There would be few traffic restrictions in the city, and also there would be few specific guidelines relating to the movement of devotees in the Badadanda and the adjoining areas. So we request everyone to kindly follow the SOP issued by the administration.
0: पूरी की रथ यात्रा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं, यह हमें सिखाती है कि ईश्वर स्वयं अपने भक्तों तक पहुंचते हैं। वे किसी एक वर्ग, किसी एक जाति, किसी एक समुदाय के नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के भगवान हैं। और इसीलिए भगवान जगन्नाथ को जगत का नाथ कहा जाता है। इसी शाश्वत संदेश के साथ हम महाप्रभु श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय श्री जगन्नाथ।
5: अभी आप महाप्रभु जगन्नाथ जी धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में कल यानी गुरुवार 16 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर पूर्वावलोकन सुन रहे थे। आलेख एवं वाचन स्वर निशांत मजीठिया, प्रस्तुति सहयोग दिलीप कुमार नायक और राजीव कुमार महुंता, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
6: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत बैड न्यूज फिल्म से है। करण औजला की आवाज है। करण औजला का गीत और संगीत दोनों ही है।

एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। लीजिए इस फिल्म का गीत सुनिए पलक मुछाल की आवाज़ों में, मनोज मुंतशिर की शब्द रचना, संगीत अमाल मलिक का।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं रईस फिल्म का गाना, जिसे लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, आवाजें अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की।

0: रईस फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के एटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्री

0: मंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमिकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था, दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 40 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एनुइटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
1: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है, और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
3: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है, जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक
4: हैं।
2: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
5: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
2: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे, साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे CSR के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
6: जो CSR है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है, क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है, तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय